0: बहुत ही मधुर और भक्तिमय प्रस्तुति मोनिका जी, लवलेश जी, शोमा जी और तनुजा जी। मित्रों, इसी के साथ हमारा आज का कार्यक्रम यही समाप्त होता है। हम आशा करते हैं कि आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। जाते जाते मैं लक्ष्मी बालचंद्रन आओ झूमे गाय समूह की ओर से आप सभी श्रोताओं का और जयपुर रेडियो का धन्यवाद करती हूँ। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।
1: नमस्ते।

0: दी।
1: जय माता दी। आपने सुना संवेद स्वर में महिषासुर मर्दिनी पाठ, इसे स्वर दिया स्वर परिवार के इन सदस्यों ने। आदेश शर्मा शामली यूपी से, अंजू गौड़ मुंबई से, योगेंद्र गौतम यूएसए से, शुभी श्रीवास्तव रायबरेली से, तरुण खोटियान, अमृता, अनीता जी, कविता, सचिन अरोड़ा, निश्चल श्रीवास्तव और उनके सभी साथियों ने। और अब समीर और वीना चौधरी की आवाजों में ये स्तुति।

आपने सुना समीर और वीना चौधरी की आवाजों में ये भक्तिमय प्रस्तुति देवी माता की स्तुति के रूप में, और अब समीर सुना रहे हैं ये भजन।

शेरवाली भजन को आवाज दे रहे थे समीर मुंबई से। ये डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, जहां मिलती है आपकी आवाज को पहचान, यानी आपकी आवाज आपकी पहचान। डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का ये जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, आपकी आवाज आपकी पहचान। गणेश जो प्रथम पति है, गणेश जो गणनायक है, गणों के नायक गणेश सिद्धि और बुद्धिदायक हैं, उनको हम प्रणाम करते हैं। उनकी

रक्त वसन जाकोविश गोरी पुत्र प्रिय गणेश का वंदन कर रही थी डॉक्टर गाथा। आपकी आवाज आपकी पहचान। आप सुन रहे हैं गणपति भजन। शुभकामनाओं के साथ आइए सुनते हैं डॉक्टर गाथा का अगला मराठी गणेश।

डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ल्ड सुन रहे हैं आप। प्रोग्राम गणेश वंदना में अभी आपने सुना हिंदी और मराठी में डॉक्टर गाथा को, आपकी आवाज आपकी पहचान। और आइए अब सुनते हैं मंजू रैना की आवाज में गणपति भजन। एनसीआर दिल्ली से हमारे साथ मंजू रैना अपने गणपति भजन के साथ आपका साथ दे रही हैं।

अष्ट विनायक श्री सिद्धि विनायक को नमो नमः से वंदन कर रही थी मंजू रैना और रेनू कॉल। आपकी आवाज, आपकी पहचान, आप सुन रहे हैं डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ल्ड। गणपति वंदन में आइए सुनते हैं बिंदु व्यास के भजन। जी हाँ, गणपति भजन बिंदु व्यास अहमदाबाद गुजरात से हमारे साथ।

तेरी छवि अति सुंदर सुखदायक, तेरी छवि अति सुंदर फलदायक। अहमदाबाद गुजरात से बिंदु व्यास का ये गणपति भजन सुनने के बाद आइए सुनते हैं इन्हीं की आवाज में एक और खूबसूरत गणपति वंदना। आपकी आवाज, आपकी पहचान। जयपुर रेडियो पर सुन रहे हैं।

हे गणपति, हे गणनायक, हर एक ने अपने अपने स्वर में, अपने अपने अंदाज में आपकी वंदना की है। हे गणनाथ, हे चिंतामणि, आपकी सदा जय हो, विजय हो। आपने सुना अहमदाबाद गुजरात से बिंदु व्यास की ये गणेश वंदना। आइए अब सुनते हैं वडोदरा गुजरात से विजया भट्ट अपनी गणेश वंदना के साथ। आपकी आवाज, आपकी पहचान।

0: हैप्पी गणपति चतुर्थी।
1: जय गणपति। वंदन गणनायक, तेरी छवि अति सुंदर सुखदायक। जय गणपति। वंदन गणनायक, तेरे नाम को जिसने ध्याया उस पर रहती सुख की छाया। आपने सुना विजया भट्ट अपने खूबसूरत गणपति वंदन के साथ, वडोदरा गुजरात से हमारे साथ रही। और आइए आप सुनते हैं बेंगलोर की ललिता गोयनका का लिखा ये गणपति भजन।

माथे पे है तिलक, मूसे की है सवारी। जी हाँ, यही है गणेश की सवारी। आपने सुना संजू को इस खूबसूरत गणेश भजन में, और इसको लिखा ललिता गोयनका जी ने। आपकी आवाज, आपकी पहचान, आप सुन रहे हैं डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ल्ड गणेश भजन का ये विशेष प्रोग्राम। और अब अर्चना अग्रवाल और उनकी सखियां बाल गणेश की वंदना कर रही हैं।

बाल गणेश पिता महेश घर मेरे आइयो रे, रंग बरसाइयो रे और रंग जमाइयो रे। और रंग जमा दिया अर्चना अग्रवाल मुंबई से अपनी सखियों के साथ। इस खूबसूरत समूह भजन में हमारे साथ रही, बहुत धन्यवाद। आपकी आवाज, आपकी पहचान। आप सुन रहे हैं डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ल्ड। आइए सुनते हैं। प्रनील पोकरणा की आवाज में ये गणेश वंदना।

एक दंत की वंदना सुन रहे थे आप प्रनील पोकरना की आवाज में। आपकी आवाज आपकी पहचान। आप सुन रहे हैं गणपति विशेष भजन जयपुर रेडियो वर्ल्ड से। आपकी आवाज आपकी पहचान। आइए सुनते हैं चोयता और कीनल त्रिपाठी की आवाज में गणेश आरती। आपकी आवाज आपकी पहचान।

0: बोल गणपति महाराज की
1: जय।
2: जय। और ये जयकारा लगा रही थी अपनी आरती के साथ केनल त्रिपाठी और जोयता चक्रवर्ती। आपकी आवाज आपकी पहचान, आपने सुना
3: यानी आपकी आवाज आपकी पहचान।

0: मुझसे बिछुड़कर खुश रहती हो, मेरी तरह तुम भी झूठी हो। ये तो श्रोता तय करेंगे कि हमारा प्रोग्राम सच्चा है कि नहीं। बहुत ही खूबसूरत गजल हमें सुनाई डॉक्टर गाथा ने इस प्रोग्राम में, जिसका नाम है गाथाए गजल। और चलते चलते क्या कहेंगी डॉक्टर गाथा हमारे लिसनर्स को, कुछ संदेश अपने बारे में कुछ बताएं।
1: लिसनर्स, तो मैं क्या कह सकती हूँ, वही आपने जो कहा ना, सच्चा है या झूठा है वो लिसनर्स ही बताएंगे। और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप सुनते हैं। और
2: ये डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, जहां मिलती है आपकी आवाज को पहचान, यानी आपकी आवाज आपकी पहचान।
0: डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का ये जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, आपकी आवाज आपकी पहचान। गणेश जो प्रथम पति है, गणेश जो गणनायक है, गणों के नायक गणेश सिद्धि और बुद्धिदायक हैं, उनको हम प्रणाम करते हैं, उनकी गाथा गाते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं। और गणों में सबसे पहले डॉक्टर गाथा।

रक्त वसन जाकोवेश गोरी पुत्र प्रिय गणेश का वंदन कर रही थी डॉक्टर गाथा। आपकी आवाज आपकी पहचान। आप सुन रहे हैं गणपति भजन। शुभकामनाओं के साथ आइए सुनते हैं डॉक्टर गाथा का अगला मराठी गणेश।

डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ल्ड सुन रहे हैं आप। प्रोग्राम गणेश वंदना में अभी आपने सुना हिंदी और मराठी में डॉक्टर गाथा को, आपकी आवाज आपकी पहचान। और आइए अब सुनते हैं मंजू रैना की आवाज में गणपति भजन। एनसीआर दिल्ली से हमारे साथ मंजू रैना अपने गणपति भजन के साथ आपका साथ दे रही हूँ।

पति वंदन करता है, तेरी छवि अति सुंदर सुखदायक, तेरी छवि अति सुंदर फलदायक। अहमदाबाद गुजरात से बिंदु व्यास का ये गणपति भजन सुनने के बाद आइए सुनते हैं इन्हीं की आवाज में एक और खूबसूरत गणपति वंदना। आपकी आवाज, आपकी पहचान, जयपुर रेडियो पर सुन रहे हैं।

हे गणपति, हे गणनायक, हरेक ने अपने अपने स्वर में, अपने अपने अंदाज में आपकी वंदना की है। हे गणनाथ, हे चिंतामणि, आपकी सदा जय हो, विजय हो। आपने सुना अहमदाबाद गुजरात से बिंदु व्यास की ये गणेश वंदना। आइए अब सुनते हैं वडोदरा गुजरात से विजया भट्ट अपनी गणेश वंदना के साथ। आपकी आवाज, आपकी पहचान।

0: हैप्पी गणपति चतुर्थी।
1: जय गणपति। वंदन गणनायक, तेरी छवि अति सुंदर सुखदायक। जय गणपति वंदन गणनायक, तेरे नाम को जिसने ध्याया उस पर रहती सुख की छाया। आपने सुना विजया भट्ट अपने खूबसूरत गणपति वंदन के साथ, वडोदरा गुजरात से हमारे साथ रही। और आइए आप सुनते हैं बेंगलोर की ललिता गोयनका का लिखा ये गणपति भजन।

माथे पे है तिलक, मूसे की है सवारी। जी हाँ, यही है गणेश की सवारी। आपने सुना संजू को इस खूबसूरत गणेश भजन में, और इसको लिखा ललिता गोयनका जी ने। आपकी आवाज, आपकी पहचान, आप सुन रहे हैं डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का, जयपुर रेडियो वर्ल्ड, गणेश भजन का ये विशेष प्रोग्राम। और अब अर्चना अग्रवाल और उनकी सखियां बाल गणेश की वंदना कर रही हैं।

बाल गणेश पिता महेश घर मेरे आइयो रे, रंग बरसाइयो रे और रंग जमाइयो रे। और रंग जमा दिया अर्चना अग्रवाल मुंबई से अपनी सखियों के साथ इस खूबसूरत समूह भजन में हमारे साथ रही हैं। बहुत धन्यवाद। आपकी आवाज आपकी पहचान। आप सुन रहे हैं डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ल्ड। आइए सुनते हैं प्रनील पोकरणा की आवाज में ये गणेश वंदना।

एक दंत की वंदना सुन रहे थे आप प्रनील पोकरना की आवाज में। आपकी आवाज, आपकी पहचान, आप सुन रहे हैं गणपति विशेष भजन जयपुर रेडियो वर्ल्ड से। आपकी आवाज, आपकी पहचान। आइए सुनते हैं चोयता और कीनल त्रिपाठी की आवाज में गणेश आरती। आपकी आवाज, आपकी पहचान।

0: बोल गणपति महाराज की। बोल गणपति महाराज की
1: जय। और ये जयकारा लगा रही थी अपनी आरती के साथ केनल त्रिपाठी और जोयता चक्रवर्ती। आपकी आवाज आपकी पहचान, आपने सुना
2: यानी आपकी आवाज आपकी पहचान।

0: मुझसे बिछुड़कर खुश रहती हो, मेरी तरह तुम भी झूठी हो। ये तो श्रोता तय करेंगे कि हमारा प्रोग्राम सच्चा है कि नहीं। बहुत ही खूबसूरत गजल हमें सुनाई डॉक्टर गाथा ने इस प्रोग्राम में, जिसका नाम है गाथाए गजल। और चलते चलते क्या कहेंगे डॉक्टर गाथा हमारे लिसनर्स को, कुछ संदेश अपने बारे में कुछ बताएं।
1: लिसनर्स, तो मैं क्या कह सकती हूँ, वही आपने जो कहा ना, सच्चा है या झूठा है वो लिसनर्स ही बताएंगे। और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप सुनते हैं। और
0: डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का ये जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, प्रस्तुत है प्रोग्राम सुपर सिंगर। और सुपर सिंगर प्रोग्राम में आज की सुपर सिंगर आई है पुणे महाराष्ट्र से, श्वेता नायर त्रिवेदी। वेलकम, स्वागत, अभिनंदन आपका। आपकी आवाज आपकी पहचान।

लेकिन हम जानते हैं, आप सुन रहे हैं श्वेता नायर त्रिवेदी की आवाज और जयपुर रेडियो की जानी पहचानी आवाज। आपकी आवाज, आपकी पहचान, बैरी पिया, बड़ा बेदर्दी, दिल का दर्द न जाने कैसे कहूं, कैसे कहूं। और ये कह रही थी अपनी सिंगिंग के माध्यम से श्वेता नायर त्रिवेदी। आप सुन रहे हैं डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ल्ड, और आज इस मंच पर जिसका नाम है सुपर सिंगर्स, और आज की सुपर सिंगर मेहमान है श्वेता नायर त्रिवेदी, पुणे महाराष्ट्र से। आपकी आवाज, आपकी पहचान।

समय का ये पल थम सा गया है। सच में श्वेता, आपके गीतों को सुनने के लिए शायद समय भी कुछ देर के लिए रुक गया है। कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो, और हमने तो गीत से पहले कुछ भी नहीं कहा था, लेकिन हमारे जो लिसनर्स हैं वो अपने फीडबैक दे रहे हैं और कह रहे हैं आप बहुत ही शानदार गा रही हैं, आपकी आवाज, आपकी पहचान आप सुन रहे हैं डिजिटल।

अपनी आवाज के नूर की रोशनी लेके इस मंच पर आज उपस्थित है श्वेता नायर त्रिवेदी। आपकी आवाज, आपकी पहचान। पुणे महाराष्ट्र से हमारे संग

डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ल्ड सुन रहे हैं आप। प्रोग्राम सुपर सिंगर में हमारे संग हमारे साथ इस मंच पर श्वेता नायर त्रिवेदी अपने सुरीले गीतों के साथ। आपकी आवाज, आपकी पहचान।

अभी तो हम ये कहेंगे कि अभी आप गाओ और अभी हम सुने, हमारे श्रोता सुने कि आपके गीतों ने हमारा दिल जीत लिया। आपकी आवाज, आपकी पहचान सुपर सिंगर जयपुर रेडियो की श्वेता नायर त्रिवेदी अपने खूबसूरत गीतों के साथ। आप सुन रहे हैं डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ल्ड। अगले गीत में फिर एक बार श्वेता नायर।

ये दिल सुन रहा है तेरे दिल की जुबान, और हम ये कहेंगे कि ये दिल सुन रहा है आपके सुरीले गीतों की जुबान। हमारे संग हमारे साथ श्वेता नायर त्रिवेदी, आपकी आवाज आपकी पहचान अपने सुरीले सॉन्ग्स के साथ। अगले गीत में फिर एक बार श्वेता नायर।

बहुत सच कहा आपने, आपकी आवाज में जादू भी है और नशा भी है, और ये चीज हमारे श्रोता महसूस भी कर रहे हैं। सुरीली आवाज की धनी हमारी आज की सुपर सिंगर श्वेता नायर त्रिवेदी को सुन रहे हैं आप। आपकी आवाज आपकी पहचान।

0: और हमारे श्रोता और हम कहेंगे कि श्वेता तू थोड़ी देर और ठहर जा, तो आप ठहर जाएंगी। और यदि समय होता तो सच में आप ठहर जाती और हमें और गीत सुनाती। आपने सुना जयपुर रेडियो का प्रोग्राम सुपर सिंगर, और आज की सुपर सिंगर रही श्वेता नायर त्रिवेदी। डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का ये जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, आपकी आवाज आपकी पहचान। आइए आप सुनते हैं एक कहानी, सुगिया फुलवा। कहानीकार हैं विद्या सिंह।
1: कहानी का शीर्षक है सुगिया फुलवा। ध्यान नहीं आता पहले पहल उसे कब और कहां देखा था, किंतु जब से होश संभाला कभी इसके कभी उसके और अपने घर नियमित रूप से देखा। उसके चेहरे के वर्णन के लिए कुरूप शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहती, लेकिन मेरे सीमित शब्दकोश में दूसरा शब्द है भी नहीं। मोटी मोटी झुर्रियों से भरा लंबोतरा चेहरा, दांत इक्के दुक्के, मिचमिचाती आंखें, थोड़ी थोड़ी देर में वह निचले होंठ को अंदर खींचती जैसे मुंह से गिरती लार को रोकने की कोशिश करती हो। गोद के बच्चों को डराने के लिए माएं कहती, सो जाओ नहीं तो अभी सुगिया से पकड़वा दूंगी। इस तरह सुगिया दिन रात सेवा में हाजिर रहती, दिन में साकार और रात में निराकार रूप में। 2 जून की रोटी जुगाड़ने में उसे न जाने कितने दरवाजे अगोरने पड़ते। उसकी रिरियाती हुई आवाज न मालूम प्राकृतिक थी या निरीहता वश वैसी हो गई थी, अनुमान से परे है। कुछ भी बोलने में वह अत्यंत संकुचित हो जाती। संभवतः उसे कोई बीमारी जरूर रही होगी, उसकी लार उसके वश में नहीं थी। एक बार तो उसकी इस आदत ने एक बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया था। हुआ यों कि वह पीतल के गगरे में पानी लेकर मेरे ओसारे में गोबर डाल रही थी। गोबर को गगरे के पानी से पतला करती और ओसारा लीपती हुई पीछे ही पीछे खिसकती जाती। अचानक लार गगरे में टपक पड़ी। चश्मदीद गवाह बने राघव भैया, उन्होंने गगरा भुसौरे में छिपा दिया। शाम को पानी भरने के लिए जब मनई कहार ने गगरा ढूंढना शुरू किया तो हड़कंप मचा। अड़ोस पड़ोस में पूछने पर भी कुछ पता नहीं चला। अंततः भैया ने गगरा भुसौरे से निकाल कर प्रत्यक्ष कर दिया, साथ ही एक विस्फोट भी किया कि अब यह गगरा कुएं में डालने लायक नहीं है, इसमें सुगिया का लार गिर गया। मैंने अपनी आंखों से देखा। स्थिति भांपते हुए माँ ने भैया को आंखें तरेरी, ये तुम्हें धोखा भयल हो, इतना छोट मुंह के गगरा में लार कैसे गिर जाई। भैया अपनी बात पर अड़े रहे कि उन्होंने अपनी आंखों से देखा। खैर, दुनिया में ऐसी कौन सी समस्या है जिसका समाधान नहीं है। माँ रसोई से उपली के ऊपर रखकर जलते हुए अंगारे ले आई और उन अंगारों को गगरे में डाल दिया। आग सब कुछ के पवित्र कह दे ले, मने लिया एके माज के भरा पानी, अब गगरा फेंक थोड़े जाइए। अति की हद तक छुआछूत मानने वाली माँ का सहज समाधान उसकी प्रत्युत्पन्न मति की गवाही दे रहा था। दोबारा वह प्रसंग किसी की जवान पर नहीं आया, सुगिया का आना पूर्ववत बना रहा। उसकी आदत थी या तो वह कहीं काम कर रही होती या मेरे घर के ओसारे में उकड़ू बैठी आदेशित होने का इंतजार करती रहती। गांव में सभी जानते थे सुगिया कहाँ मिलेगी, जिसे जब जरूरत होती आकर बुला ले जाता। उसका बेटा फुलवा भी उसके साथ आता और ठाकुरों के घर के छोटे मोटे काम कर देता। किसी के पशु को चारा डाल देता या गोबर साफ कर देता। स्कूल का मुंह तो उसने शायद ही कभी देखा हो। दोपहर में माँ बेटे मढ़ई में चारा काटने की मशीन के बगल में बची थोड़ी सी जगह में कपड़े में बंधी रूखी सूखी रोटी पानी से निगलते। माँ दयावश अक्सर उसे कभी अचार कभी गुड़ दे देती, लेकिन वसूली करना भी न भूलती, ले रोटी खाए के उसरसों पीट दे। मौसम के अनुसार काम लेने में माँ माहिर थी। आबनूसी रंग की सुगिया का गोरा चिट्टा बेटा देखकर यकीन नहीं होता था यह सुगिया के कोख में पला होगा। सुगिया कभी ससुराल भी गई होगी, नहीं तो उसका बेटा कहाँ से आता। वह इतनी समर्थ तो थी नहीं कि जमाने को ठेंगा दिखाकर कुंवारी माँ बन जाती। वह बहुत पहले की बात होगी, मेरे होश संभालने से बहुत पहले की बात। मैंने कई बार देखा फुलवा अरंडी के पत्ते पर रखकर बासी रोटी को नमक प्याज से खा रहा होता। सुगिया टुकुर टुकुर उसे खाते हुए निहारती रहती, जैसे निवाला फुलवा के मुंह में नहीं खुद सुगिया के मुंह में जा रहा हो। उस समय सुगिया और उस गौरैया में कोई फर्क न लगता जो चोंच में दाना भरकर अपने चूजे को खिलाती है। माँ के ही मुंह से कभी सुना था, फुलवा 2-3 साल का था जब सुगिया के पति ने उसे अपने घर से निकाल दिया था। विवाह के इतने दिनों बाद क्यों निकाला आज सोचती हूँ। एक कोठरी उसके माँ बाप ने उसे दे दी थी जिसमें दोनों महतारी पूत रहते थे। जब तक माँ बाप रहे तब तक तो ठीक था, उनके आंख मूंदते ही भाई भौजाई तरह तरह से तंग करने लगे कि किसी तरह कोठरी खाली कर दे। यह भी पक्की जान, कितनी बार उसके बर्तन चोरी गए, पकती दाल में भौजाई नमक झोंक देती, पर कोठरी नहीं छोड़ी तो नहीं छोड़ी। हार कर भाई ने घर के पिछवाड़े की खाली जमीन पर एक छप्पर डलवा दिया और सुगिया ने मिट्टी खोद खोद कर 4 कच्ची दीवारें भी खड़ी कर ली। इस तरह बन गया था माँ बेटे का आशियाना। भौजाई को फिर भी चैन कहाँ था, वह सुगिया को निकालने के नए नए तरीके आजमाती, लेकिन सुगिया मोर्चे पर डटी रही, उसने हार नहीं मानी। अब फुलवा भी कुछ बड़ा हो गया था, काम भी उसे मिलने लगा था। कभी पहलवान मामा की हलवाही करता, कभी चिरकुट नाना के खेतों में हल के पीछे पीछे बीज डालता, कभी मोटक भैया की भैंस नहलाने नदी ले जाता। गरज यह कि साल भर उसके काम की जुगत भीड़ ही जाती, पूरा गांव उसका ननिहाल था। उम्र के हिसाब से मामा नाना भैया नानी मामी भौजी बहन का संबोधन वह स्वयं चुन लेता। फुलवा जैसे जैसे बड़ा होता गया उसका रंग रूप और निखरता गया। ठाकुर टोले का शायद ही कोई लड़का इतना हृष्ट पुष्ट हो जितना फुलवा। नहीं बदली तो उसकी आवाज, उसकी उम्र के लड़कों की आवाज में भारीपन आ गया था, लेकिन उसकी आवाज अभी भी बारीक लड़कियों सी थी। बच्चे उसका खूब मजाक बनाते और बात बेबात तरह तरह से छेड़ते। कई बार तो सुगिया चिढ़कर उन्हें गालियां तक दे देती, लेकिन बच्चे मुफ्त का मनोरंजन कहाँ छोड़ने वाले थे। अब फुलवा की उम्र शादी लायक हो गई थी, जहाँ उसके हम उम्र ठाकुरों के सौदे लड़कों के लिए देखुए मोटी रकम के साथ कन्या देने को उतावले रहते, फुलवा की उसकी बिरादरी का कोई लड़की देने को राजी नहीं था। सुगिया आए दिन गांव में नई नई बहुओं को देखती तो उसके दिल में अरमान मचलने लगते। अरमान बेटे के सिर पर सेहरा देखने का, अरमान आंगन में बहू के पैरों की रुनझुन सुनने का। कई साल इंतजार करने पर भी जब देखुए उसके दरवाजे पर नहीं आए तो वह निराश होने लगी। अब गांव के शरारती तत्वों की बन आई, वे सुगिया से कहने लगे, हम तोरे सुगवा का ब्याह कराए दे, लड़की वालन के 1500 देवे की पड़ी। माँ बेटे अपना पेट काट काट कर बचाते, इधर उधर से कुछ उधार बाढ़ी करते और रकम बड़ी उम्मीद से ब्याह कराने का भरोसा देने वाले हाथों को सौंप देते। इंतजार में सुगिया की आंखें पथरा जाती, रकम लेने वाले कोई न कोई बहाना बना देते और अंत में हजम कर जाते। एक बार तो गांव के दुधुआ नाई ने, जो खुद 40 की उम्र में कुंवारा बैठा था, उसे वचन दिया कि वह फुलवा का ब्याह कराएगा। दुधुआ अपने अजीबो गरीब कारनामों से हमेशा गांव की चर्चा में बना रहता। एक बार तो जिद पर अड़ गया कि गांव की पोखरी के किनारे किनारे जो बिजली के खंभे गड़े हैं, जिनसे होकर कई तार जा रहे हैं, वह उन्हीं में से किसी एक खंभे पर बैठकर सुतली काटेगा। उन दिनों गांव में बिजली नहीं थी। समझदार लोगों ने रोका कि इन तारों से बिजली का करंट पास होता है, यह उसी की लाइन जा रही है, लेकिन वह कहाँ मानने वाला, करंट होता तो दिखता नहीं, मैं नहीं मानता करंट वरंट। और उसने लोगों की बात अनसुनी कर दी। एक दिन उसने घोषणा की, आज हम सुतली काते जाओ, जेके देखे के होए चले हमरे संगे। फिर क्या था, देखते देखते बच्चों की टोली दुधुआ के पीछे। वह बच्चों का हीरो बना, सन बगल में दबाए, सुतली कातने की चरखी हाथ में लटकाए चल पड़ा। औरतों ने सुना तो उसकी किस्मत पर तरस खाकर रह गईं। आज कोई आगे पीछे होता तो जरूर रोकता। विधवा बड़ी सावधानी से खंभे पर चढ़ रहा था। नीचे से सांस रोके बच्चे उसे ऊपर और ऊपर चढ़ता देख रहे थे। उसने ज्यों ही ऊपर पहुंचने के लिए एक हाथ से तार पकड़ना चाहा, उंगलियां तार से चिपक कर रह गईं। थोड़ी देर में उसे ऐसा जोर का झटका लगा कि वह धड़ाम से नीचे जमीन पर आ पड़ा। बच्चे सहम गए। पास ही जुलाहों के घर थे। हल्ला सुनकर बहुत से वहाँ इकट्ठा हो गए और चारपाई पर लाद कर उसे उसके घर पहुँचाया। पड़ोसियों ने गर्म राख से न जाने कितनी देर तक उसके तलवे हथेलियाँ मली, तब जाकर उसके अचेत शरीर में चेतना लौटी। तब से उसकी एक हथेली हमेशा हमेशा के लिए मुट्ठी की शक्ल में बदल गई। फुलवा का विवाह कराने का वचन देकर एक बार फिर वह चर्चा में आ गया था। सुगुआ ने दुधुआ नाई की राय से साड़ी, पेटीकोट, जम्पर, चप्पल, क्रीम, पाउडर और तमाम बहुओं के इस्तेमाल में आने लायक सामान खरीद कर उसे दे दिया। उसे नकद पैसे भी दिए। एक दिन अचानक लोगों ने देखा दुधुआ की कोठरी में ताला लटक रहा था। अकेले आदमी का क्या, जहाँ चाहे वहाँ चल दे। लेकिन जब महीना भर हो गया और ताला नहीं खुला, तब गाँव वालों को खटका हुआ। सुगिया के मन में उम्मीद जगी कि इस बार तो वह जरूर फुलवा के लिए लड़की ढूंढ कर लौटेगा। दुधुआ लौटा, लेकिन अकेला नहीं, उसके साथ उससे कम से कम 20 साल छोटी लड़की थी, जिसे वह न मालूम कहां से भगाकर लाया था। एक दिन उसने गांव भर में न्योता भिजवाया कि वह अपनी रिश्तेदारी की एक अनाथ लड़की से शादी कर रहा है और गाँव के लोग मुँह जुठारने जरूर आए। गांव में यह बात फैलते देर नहीं लगी कि जो साड़ी उसने सुगिया से हथियाई थी, वही साड़ी उसकी होने वाली बीवी ने शादी की रात पहनी थी। असल में वह साड़ी सुगिया ने रवि पंडित से मंगाई थी और उन्होंने ही दुधुआ की शादी के मंत्र पढ़े थे। सुगिया ने जब यह सुना तो वह कट कर रह गई। उसने रवि पंडित को भी जी भर कर सरापा, जिन्होंने दुधुआ का सहयोग किया था। गांव के शरारती लड़के उसे अलग छेड़ते, फिल्मी हीरोइनों की तस्वीरें दिखाकर पूछते, इस लड़की से करोगी सुगवा का ब्याह? धीरे धीरे सुगिया सबकी मंशा भाप गई। वह समझ गई कि बेटे के सिर पर सेहरा देखना उस जैसी माँ के नसीब में नहीं होता। इस बीच फुलवा को न जाने कौन सी बीमारी लगी कि उसकी कुंदन सी चमकती रंगत नीली पड़ने लगी। शरीर भी दिनों दिन गिरने लगा। देखते देखते वह सूख कर कांटा मात्र रह गया। सिर के घने काले काले बाल इस तेजी से झड़ने लगे कि उसकी खोपड़ी जगह जगह से गंजी हो गई। सुगिया ने उसके बाल घुटवा दिए। अब तो वह एकदम पहचान में नहीं आता था। बच्चे अब दूसरी तरह से सुगिया को छेड़ने लगे थे। एक बार मेरी सहेली ने कहा, ए सुगिया, तोर फुलवा मर गया, हम अपने आँख से देख ली है। तू मर जा, तुहार महतारी बाप भाई बहन मर जाएं, हमार फुलवा कहे कि मरी? फिर मेरी ओर देखकर अत्यंत कातर स्वर में उसने कहा, देखत हो बहनी, हमरे फुलवा के का कहत आई, ओकरे मरले ई का पई है। ऐसे न जाने कितने क्रूर मजाक उसे सहन करने पड़ते। गांव में यारू साई ने, जिसकी अपनी कोई आस औलाद नहीं थी और बीवी भी वर्षों पहले गुजर गई थी, चंदा मांग कर अपनी कब्र बनवा ली थी। कब्र के चारों ओर उन्होंने पक्की दीवारें चिनवा दी थी। बाकी पैसा गांव के प्रधान के पास जमा कर दिया था कि जब वे मरे उनका शरीर उसी में दफनाया जाए और उनकी कब्र पक्की करा दी जाए। बिगड़ाए लड़के सुगिया को चिढ़ाते, जब यारूसाई मरी हैं, तब का तब देख जायी, अब ही चल तू दोनों महतारी पुत के दफनाए दिहल जाए। दोनों के लायक काफी जगह हुई। सुगिया की बड़बड़ाहट चालू, तू जा कबर में, तुहार महतारी बाप जाए, हम फुलवा कहे के जाए। आखिरी बार मैंने जब उन्हें देखा, फुलवा आगे आगे मटमैली अंगोछी से सिर ढके, अपने नाप से दुगनी ढीली ढाली कमीज पहने, लाठी पर अपना भार संभाले, धीरे धीरे अपनी बस्ती की ओर जाने वाली पगडंडी पर चला जा रहा था। उसके पीछे पीछे सुगिया चल रही थी। न मालूम कब बेटे को उसकी जरूरत पड़ जाए। दोनों खुसर पुसर करते जा रहे थे। मेरी जिज्ञासा ने सिर उठाया और मैं अपने को पूरी तरह कान में परिवर्तित हुई, कब उसके पीछे पीछे चलने लगी मैं खुद नहीं समझ पाई। फुलवा, तू पहले मर जाते बचवा, तो तुर तेरे ही कह के हम आराम से मरित, कम से कम तू भगवान के पास शांति से रहते। जवाब में फुलवा का स्वर उभरा, नहीं माई, महतारी बाप को तेरे ही करे का फर्ज लड़का का होला, पहले तू मर जाती तो तोर तेरे ही हम खूब धूमधाम से करी। जिस सहजता से माँ बेटे मौत की बातें कर रहे थे सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। जिस दशा को माँ बेटे पहुँचे थे क्या उसमें सिर्फ उन्हीं का दोष था? यह प्रश्न मुझे आज भी कचोकता है। फुलवा की हंसी और उसकी बातें मेरे कान में आज भी कैद हैं। और इतु मौत की बात कहाँ से ले आईली, अभी तो हम 100 वर्ष जियब, और फुलवा चेष्टा पूर्वक हंसने लगा था। सुगिया फुलवा जब न तब मेरी चेतना के चौखट पर दस्तक देते हैं, इसे उनके प्रति मेरी श्रद्धांजलि समझी जाए। धन्यवाद।
0: आपने सुनी कहानी सुगिया फुलवा। कहानीकारा रही विद्या सिंह। डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का ये जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, आपकी आवाज आपकी पहचान।
2: अपना शहर अपनी शान, जयपुर रेडियो मेरी जान।
3: अरे ये लाहौर लाखो, इस कमबख्त को क्या हो गया, ये बजता क्यों नहीं है?
4: क्या हुआ चचा, ये रेडियो पे इतना जुल्म क्यों ढा रहे हैं आज?
3: अरे जुल्म किस बात का बेटा, अब आधे घंटे से लगे हुए, अब हमारा पसंदीदा प्रोग्राम आने वाले थे, हमारे गीत आने वाले थे, लेकिन ये कमबख्त है कि बजने का नाम ही नहीं लेता।
4: तो मोबाइल पे ही सुन लीजिए ना रेडियो।
3: अरे बेटा कौन वो लीड लगाए और फिर वो दो फुलटू कान में डाल के वो लंबी सी रस्सी लेकर यहाँ वहाँ घूम।
4: अरे नहीं चाचा, अब उस रस्सी की जरूरत नहीं पड़ेगी।
3: अच्छा,
4: अब आ गया है एक नया ऐप जिसपे आप इंटरनेट के सहारे रेडियो सुन सकते हैं कहीं भी कभी भी।
3: अच्छा कौन सा ऐप है वो?
4: हाँ चाचा, जयपुर रेडियो।
3: जयपुर रेडियो? पर बेटा हम तो लखनऊ में रहते हैं और जयपुर।
4: चचा देश के नहीं बल्कि दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर आप अपने पसंद के गाने सुन सकते हैं।
3: अरे वाह, ये लो बेटा फोन, क्या नाम बताया उस ऐप
4: का? लाइए मुझे दीजिए आपका फोन, मैं अभी डाउनलोड कर देती हूँ जयपुर रेडियो।
5: भक्ति प्रभा, भजनों की सरिता, आप सुन रहे हैं जयपुर रेडियो, आपकी आवाज आपकी पहचान।
6: नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम भजनों की सरिता में। लक्ष्मी का सादर प्रणाम। मित्रों, भक्ति गीत प्रार्थना की एक विशेष अंश है, भगवान के साथ एक मिलाप का समय है। प्रार्थना में हम अपने आप को एक ऐसी शक्ति के सामने आत्मसमर्पण करते हैं

वाह संजीव जी, बहुत खूब। मित्रों, भारतीय परंपरा के कई महान संत थे, जैसे रामानुजाचार्य, संत रविदास, कबीर आदि, जिन्होंने हमें धार्मिकता का सही मार्ग दर्शाया। इनमें से एक थे गुरु अर्जन, जिन्होंने सिखों के आदि ग्रंथ को संकलित किया, जिसमें पिछले कई गुरुओं के गुरुवाणी शामिल थे। गुरु ग्रंथ साहिब में आधे से अधिक शब्द गुरु अर्जन द्वारा रचित हैं। चलिए एक शब्द सुनते हैं ललिता कृष्णमूर्ति की मधुर वाणी में।

वाह ललिता जी, अति मधुर प्रस्तुति। मित्रों, भक्ति संगीत में ऐसी शक्ति है कि वह सभी को अपनी ओर आकृष्ट कर लेती है। संगीत ऐसा सात्विक आनंद है जो जाति, धर्म, लिंग, आयु, वर्ग सभी से परे है। संगीत सबके लिए है। संगीत को न सीमाओं से बांधा जा सकता है, न नष्ट किया जा सकता है। ये आबाद धारा सबके लिए सर्वत्र सुलभ है। हमारा अगला गीत फिल्म जॉनी मेरा नाम के लिए इंदी वर्जी ने लिखा था और इसे संगीत से सजाया है कल्याण जी आनंद जी ने। इसे मूल रूप से लता मंगेशकर जी ने गाया है और जयपुर रेडियो के लिए प्रस्तुत करने आ रही हैं विद्या शंकर जी।

वाह विद्या जी, इस सुमधुर प्रस्तुति से मन प्रफुल्ल हुआ। मित्रों, हमारे देश के संतों ने समय समय पर यह शिक्षा दी है कि वास्तव में भगवान और उनके नाम के बीच कोई अंतर नहीं है। ऐसा भी कहा जाता है कि भगवान का नाम स्वयं भगवान से भी श्रेष्ठ है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, राम का नाम भगवान राम से भी श्रेष्ठ है। श्रीमद् भागवत में ये कथा है कि कलयुग में श्री हरि के नाम के जाप से ही जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्ति प्राप्त हो सकती है, क्योंकि सब में राम और

राम में है सब। तुलसी का प्रभु भी वही, नानक का रब भी वही। नाम भजन में ज्योति असीमित, पेश है एक राम धुन जो मूल रूप से लता मंगेशकर जी ने गाया है प्रसिद्ध एल्बम राम श्याम गुणगान में। इसे जयपुर रेडियो के लिए प्रस्तुत कर रहे हैं स्वागता पॉल और संजय हर।

और संजय जी हम मन विभोर हुए। मित्रों, भगवान राम एक अवतार पुरुष थे, असाधारण पुरुष थे, करुणा मूर्ति थे। ये सभी के प्रति स्नेह और अपनापन का सामान्य भाव रखते थे, चाहे वह सज्जन हो या दुर्जन हो। वह तो ऐसे करुणा मूर्ति थे जो उनके शत्रु के प्रति भी स्नेही और दयालु थे। चलिए सुनते हैं एक भजन जो श्री अरबिंदो सोसाइटी के मेंबर्स द्वारा रचाया गया है। इस भजन को स्वरबद्ध किया था जगजीत सिंह जी ने। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं संजय फड़के जी और मैं लक्ष्मी बालचंद्र।

0: बेहद खूबसूरत संजय जी, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारा साथ दिया। मित्रों, सुविचार, सत्संग और निरंतर भगवान के जाप से सकारात्मक ऊर्जा निर्मित होती है। हम आशा करते हैं आपका जीवन सकारात्मक ऊर्जा से प्रकाशित हो।
1: आप सुन रहे हैं जयपुर रेडियो, आपकी आवाज, आपकी पहचान।
0: मित्रों, ये एक सामान्य बात है कि संकट के समय हम भगवान की ओर रुख करते हैं। हम घोर विनम्रता और प्रत्याशा दोनों के दोहरे रवैया के साथ आते हैं। हम परमेश्वर को आदेश तो नहीं देते, लेकिन हम साहसपूर्वक, श्रद्धापूर्वक उनके सिंहासन के सामने आते हैं, ये कहते हुए कि मैं तो कब से तेरी शरण में हूँ, मेरी ओर तू भी तो ध्यान दे। नक्शलयालपुरी की ये पंक्तियां फिल्म राम नगरी के लिए लिखा गया था। इसे संगीत से सजाया था जयदेव जी ने। इस गीत को मूल रूप से हरिहरन जी और नीलम सानी जी ने गाया है। आपके लिए इस गीत को प्रस्तुत करने आ रहे हैं संजय फड़के जी।

वासंजय जी, हम तो भाव गदगद हुए। मित्रों, एक व्यक्ति का आंतरिक जीवन और बाहरी ब्रह्मांड के बीच कोई अलगाव नहीं है। मन एक दर्पण की तरह है, जो कुछ भी सामने आता है वह उसमें प्रतिबिंबित होता है। आप जिस किसी के बारे में सोचते हैं, उसकी भावनाएं और उसकी मनस्थिति आप पर टिकी रहती है। अगर आप खुश लोगों के बारे में सोचते रहते हैं तो आप खुश हो जाते हैं। दुखी चीजों के बारे में सोचकर आप दुखी महसूस करते हैं। इसलिए साहिर लुधियानवी जी ने लिखा है, तोरा मन दर्पण कहलाए। इस गीत को काजल फिल्म के लिए संगीतकार रवि ने स्वरबद्ध किया था और आशा भोसले जी ने अपने मधुर वाणी से इसे सजाया है। जयपुर रेडियो के लिए प्रस्तुत करने आ रही हैं मोनिका दश और अनुराधा वैद्यनाथन।

वाह मोनिका जी और अनुराधा जी, अति मधुर प्रस्तुति। हमारे अगले भक्ति गीत में कौशल्या मैया कागज से पूछती है, तुम सच बोलो और मुझे बताओ कि मेरे प्राणों से प्यारे वे लोग कब आएंगे। तुलसीदास जी की गीतावली से ये रचना बैठी सगुन मनावती माता। आइए सुनते हैं संजय हरने जी की आवाज में।

अति सुंदर प्रस्तुति संजय जी, आइए स्वागत करते हैं इस खूबसूरत शिव धुन के साथ। इस पारंपरिक धुन को प्रस्तुत करने आ रहे हैं संजय हरने जी, संजय फड़के जी, अनूप शर्मा जी, जय कृष्णन जी, ललिता कृष्णमूर्ति, श्वेता, शोमा सी रॉय, प्रेरणा जकादार, मधुलिका शर्मा और स्वयं मैं लक्ष्मी बालचंद्रन।

0: बेहद खूबसूरत प्रस्तुति, हम सचमुच मन विभोर हुए। इसी के साथ हमारा आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है।
1: आप सुन रहे थे प्रोग्राम भजनों की सरिता। इस भक्तिमय संगीतमय साधना को प्रस्तुत कर रही थी लक्ष्मी बालाचंद्रन। डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का ये जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, आपकी आवाज आपकी पहचान।

0: आप सुन रहे थे बिंदु व्यास की आवाज में डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का, ये जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, आपकी आवाज आपकी पहचान।
1: जयपुर से निकली गाड़ी दिल्ली चले हल्ले हल्ले दिदिन तिनक दिन दिदिन तिनक दिन। अरे हल्ले हल्ले क्यों, जल्दी जल्दी डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से जयपुर रेडियो ऐप अभी इसी वक्त और आनंद लीजिए अपने मन पसंद गीतों का कहीं भी कभी भी। जयपुर रेडियो आपका अपना रेडियो,
2: अपना शहर अपनी शान, जयपुर रेडियो मेरी जान।
3: अरे ये लाहौर लाखों और इस कमबख्त को क्या हो गया, ये बजता क्यों नहीं है?
4: क्या हुआ चचा, ये रेडियो पे इतना जुल्म क्यों ढा रहे हैं आज?
3: अरे जुल्म किस बात का बेटा, अब आधे घंटे से लगे हुए हैं, अब हमारा पसंदीदा प्रोग्राम आने वाले थे, हमारे गीत आने वाले थे, लेकिन ये कमबख्त है कि बजने का नाम ही नहीं लेता।
4: तो मोबाइल पे ही सुन लीजिए ना रेडियो।
3: अरे बेटा कौन वो लीड लगाए और फिर वो दो फुलटरू कान में डाल के वो लंबी सी रस्सी लेकर यहाँ वहाँ घूम।
4: अरे नहीं चाचा, अब उस रस्सी की जरूरत नहीं पड़ेगी।
3: अच्छा?
4: अब आ गया है एक नया ऐप जिसपे आप इंटरनेट के सहारे रेडियो सुन सकते हैं कहीं भी कभी भी।
3: अच्छा कौन सा ऐप है वो?
4: हाँ चाचा, जयपुर रेडियो।
3: जयपुर रेडियो? पर बेटा हम तो लखनऊ में रहते हैं और जयपुर।
4: चचा देश के नहीं बल्कि दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर आप अपने पसंद के गाने सुन सकते हैं।
3: अरे वाह, ये लो बेटा फोन, और क्या नाम बताया उस ऐप का?
4: लाइए मुझे दीजिए आपका फोन, मैं अभी डाउनलोड कर देती हूँ जयपुर रेडियो।
5: भक्ति प्रभा भजनों की सरिता, आप सुन रहे हैं जयपुर रेडियो आपकी आवाज आपकी पहचान।
6: नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम भजनों की सरिता में। लक्ष्मी का सादर प्रणाम। मित्रों भक्ति गीत प्रार्थना की एक विशेष अंश है, भगवान के साथ एक मिलाप का समय है। प्रार्थना में हम अपने आप को एक ऐसी शक्ति के सामने आत्मसमर्पण करते हैं जो

वाह संजीव जी, बहुत खूब। मित्रों, भारतीय परंपरा के कई महान संत थे, जैसे रामानुजाचार्य, संत रविदास, कबीर आदि, जिन्होंने हमें धार्मिकता का सही मार्ग दर्शाया। इनमें से एक थे गुरु अर्जन, जिन्होंने सिखों के आदि ग्रंथ को संकलित किया, जिसमें पिछले कई गुरुओं के गुरुवाणी शामिल थे। गुरु ग्रंथ साहिब में आधे से अधिक शब्द गुरु अर्जन द्वारा रचित हैं। चलिए एक शब्द सुनते हैं ललिता कृष्णमूर्ति की मधुर वाणी में।

वाह ललिता जी, अति मधुर प्रस्तुति। मित्रों, भक्ति संगीत में ऐसी शक्ति है कि वह सभी को अपनी ओर आकृष्ट कर लेती है। संगीत ऐसा सात्विक आनंद है जो जाति, धर्म, लिंग, आयु, वर्ग सभी से परे है। संगीत सबके लिए है। संगीत को न सीमाओं से बांधा जा सकता है, न नष्ट किया जा सकता है। ये आबाद धारा सबके लिए सर्वत्र सुलभ है। हमारा अगला गीत फिल्म जॉनी मेरा नाम के लिए इंदी वर्जी ने लिखा था और इसे संगीत से सजाया है कल्याण जी आनंद जी ने। इसे मूल रूप से लता मंगेशकर जी ने गाया है और जयपुर रेडियो के लिए प्रस्तुत करने आ रही हैं विद्या शंकर जी।

वाह विद्या जी, इस सुमधुर प्रस्तुति से मन प्रफुल्ल हुआ। मित्रों, हमारे देश के संतों ने समय समय पर यह शिक्षा दी है कि वास्तव में भगवान और उनके नाम के बीच कोई अंतर नहीं है। ऐसा भी कहा जाता है कि भगवान का नाम स्वयं भगवान से भी श्रेष्ठ है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, राम का नाम भगवान राम से भी श्रेष्ठ है। श्रीमद् भागवत में ये कथा है कि कलयुग में श्री हरि के नाम के जाप से ही जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्ति प्राप्त हो सकती है, क्योंकि सब में राम और राम में है सब। तुलसी का प्रभु भी वही, नानक का रब भी वही। नाम भजन में ज्योति असीमित। पेश है एक राम धुन जो मूल रूप से लता मंगेशकर जी ने गाया है प्रसिद्ध एल्बम राम श्याम गुण गान में। इसे जयपुर रेडियो के लिए प्रस्तुत कर रहे हैं स्वागता पॉल और संजय हरने जी।

और संजय जी हम मन विभोर हुए। मित्रों, भगवान राम एक अवतार पुरुष थे, असाधारण पुरुष थे, करुणा मूर्ति थे। ये सभी के प्रति स्नेह और अपनापन का सामान्य भाव रखते थे, चाहे वह सज्जन हो या दुर्जन हो। वह तो ऐसे करुणा मूर्ति थे जो उनके शत्रु के प्रति भी स्नेही और दयालु थे। चलिए सुनते हैं एक भजन जो श्री अरबिंदो सोसाइटी के मेंबर्स द्वारा रचाया गया है। इस भजन को स्वरबद्ध किया था जगजीत सिंह जी ने। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं संजय फड़के जी और मैं लक्ष्मी बालचंद्र।

0: बेहद खूबसूरत संजय जी, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारा साथ दिया। मित्रों, सुविचार, सत्संग और निरंतर भगवान के जाप से सकारात्मक ऊर्जा निर्मित होती है। हम आशा करते हैं आपका जीवन सकारात्मक ऊर्जा से प्रकाशित हो।
1: आप सुन रहे हैं जयपुर रेडियो, आपकी आवाज, आपकी पहचान।
0: मित्रों, ये एक सामान्य बात है कि संकट के समय हम भगवान की ओर रुख करते हैं। हम घोर विनम्रता और प्रत्याशा दोनों के दोहरे रवैया के साथ आते हैं। हम परमेश्वर को आदेश तो नहीं देते, लेकिन हम साहसपूर्वक, श्रद्धापूर्वक उनके सिंहासन के सामने आते हैं, ये कहते हुए कि मैं तो कब से तेरी शरण में हूँ, मेरी ओर तू भी तो ध्यान दे। नक्शलयालपुरी की ये पंक्तियाँ फिल्म राम नगरी के लिए लिखा गया था। इसे संगीत से सजाया था जयदेव जी ने। इस गीत को मूल रूप से हरिहरन जी और नीलम सानी जी ने गाया है। आपके लिए इस गीत को प्रस्तुत करने आ रहे हैं संजय फड़के जी।

वासंजय जी, हम तो भाव गदगद हुए। मित्रों, एक व्यक्ति का आंतरिक जीवन और बाहरी ब्रह्मांड के बीच कोई अलगाव नहीं है। मन एक दर्पण की तरह है, जो कुछ भी सामने आता है वह उसमें प्रतिबिंबित होता है। आप जिस किसी के बारे में सोचते हैं, उसकी भावनाएं और उसकी मनस्थिति आप पर टिकी रहती है। अगर आप खुश लोगों के बारे में सोचते रहते हैं तो आप खुश हो जाते हैं। दुखी चीजों के बारे में सोचकर आप दुखी महसूस करते हैं। इसलिए साहिर लुधियानवी जी ने लिखा है, तोरा मन दर्पण कहलाए। इस गीत को काजल फिल्म के लिए संगीतकार रवि ने स्वरबद्ध किया था और आशा भोसले जी ने अपने मधुर वाणी से इसे सजाया है। जयपुर रेडियो के लिए प्रस्तुत करने आ रही हैं मोनिका दश और अनुराधा वैद्यनाथन।

माँ मोनिका जी और अनुराधा जी, अति मधुर प्रस्तुति। हमारे अगले भक्ति गीत में कौशल्या मैया कागज से पूछती है, तुम सच बोलो और मुझे बताओ कि मेरे प्राणों से प्यारे वे लोग कब आएंगे। तुलसीदास जी की गीतावली से ये रचना बैठी सगुन मनावती माता, आइए सुनते हैं संजय हरने जी की आवाज में।

बहुत ही सुंदर प्रस्तुति संजय जी, आइए स्वागत करते हैं इस खूबसूरत शिव धुन के साथ। इस पारंपरिक धुन को प्रस्तुत करने आ रहे हैं संजय हरने जी, संजय फड़के जी, अनूप शर्मा जी, जय कृष्णन जी, ललिता कृष्णमूर्ति, श्वेता, शोमा सी रॉय, प्रेरणा जकादार, मधुलिका शर्मा और स्वयं मैं लक्ष्मी बालचंद्रन।

0: बेहद खूबसूरत प्रस्तुति, हम सचमुच मन विभोर हुए। इसी के साथ हमारा आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है।
1: आप सुन रहे थे प्रोग्राम भजनों की सरिता। इस भक्तिमयी संगीतमयी साधना को प्रस्तुत कर रही थीं लक्ष्मी बालाचंद्रन। डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का ये जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, आपकी आवाज आपकी पहचान।

0: आप सुन रहे थे बिंदु व्यास की आवाज में डिजिटल वॉइस वर्ड का, ये जयपुर रेडियो वर्ड है, आपकी आवाज आपकी पहचान।
1: जयपुर से निकली गाड़ी दिल्ली चले हल्ले हल्ले दिदिन तिनक दिन दिदिन तिनक दिन। अरे हल्ले हल्ले क्यों, जल्दी जल्दी डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से जयपुर रेडियो ऐप अभी इसी वक्त और आनंद लीजिए अपने मन पसंद गीतों का कहीं भी कभी भी। जयपुर रेडियो आपका अपना रेडियो,
2: अपना शहर अपनी शान, जयपुर रेडियो मेरी जान।
3: अरे ये लाहौर लाखों और इस कमबख्त को क्या हो गया, ये बजता क्यों नहीं है?
4: क्या हुआ चचा, ये रेडियो पे इतना जुल्म क्यों ढा रहे हैं आज?
3: अरे जुल्म किस बात का बेटा, अब आधे घंटे से लगे हुए हैं, अब हमारा पसंदीदा प्रोग्राम आने वाले थे, हमारे गीत आने वाले थे, लेकिन ये कमबख्त है कि बजने का नाम ही नहीं लेता।
4: तो मोबाइल पे ही सुन लीजिए ना रेडियो।
3: अरे बेटा कौन वो लीड लगाए और फिर वो दो फुलटरू कान में डाल के वो लंबी सी रस्सी लेकर यहाँ वहाँ घूम।
4: अरे नहीं चाचा, अब उस रस्सी की जरूरत नहीं पड़ेगी।
3: अच्छा,
4: अब आ गया है एक नया ऐप जिसपे आप इंटरनेट के सहारे रेडियो सुन सकते हैं कहीं भी कभी भी।
3: अच्छा कौन सा ऐप है वो?
4: हाँ चाचा, जयपुर रेडियो।
3: जयपुर रेडियो? पर बेटा हम तो लखनऊ में रहते हैं और जयपुर।
4: चचा देश के नहीं बल्कि दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर आप अपने पसंद के गाने सुन सकते हैं।
3: अरे वाह, ये लो बेटा फोन, और क्या नाम बताया उस ऐप का?
4: लाइए मुझे दीजिए आपका फोन, मैं अभी डाउनलोड कर देती हूँ जयपुर रेडियो।

ये डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, जहां मिलती है आपकी आवाज को पहचान, यानी आपकी आवाज आपकी पहचान।

0: डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का ये जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, आपकी आवाज आपकी पहचान। प्रस्तुत है प्रोग्राम गीत गाथा। जी हां, आज इस प्रोग्राम में हमारे साथ हैं अपनी गजलों को लेके, अपनी गजलों के साथ भुवनेश्वर उड़ीसा से डॉक्टर गाथा मोहंती। वेलकम है डॉक्टर गाथा आपका आज के
1: बहुत शुक्रिया
0: आज के इस खास प्रोग्राम में, और आपको आज के दिन की ढेरों शुभकामनाएं। आज होली भी है,
1: थैंक यू सो मच,
0: और महिला दिवस भी है। इन दोनों दिवस की शुभकामनाएं एक साथ आपको। और हमने सुना था या आपने कहा था कि हम रंग नहीं खेलते, और जब हमने आपके घर में झांक के देखा तो आप से रंग खेल रहे थे। तो रंगों की इस दुनिया के बारे में आप क्या कहेंगी, आप कौन सा कलर पसंद करती हैं, और रंग जीवन में कितने जरूरी हैं?
1: नमस्ते व्यास जी, और सारे श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कार। आज वुमेन्स डे है, इसलिए सारी महिलाओं को बहुत बहुत बधाई वुमेन्स डे के इस अवसर पर, और होली की शुभकामनाएं सबके लिए। मुझे सबसे प्यारा कलर तो कॉपर सल्फेट ब्लू लगता है, और जब रंगों की बात हो तो लाइफ कलरफुल होनी चाहिए, तो मेरी भी लाइफ, मैं चाहती हूँ कि कलरफुल ही रहे, सारे रंग हो उसमें, खुशी के भी रंग हो, दुख के थोड़े से रंग तो हैं ही सबके लाइफ में, और बाकी बेटे के साथ थोड़ा सा खेला, बहुत ज्यादा नहीं।
0: बिल्कुल, खेला तो ना, और बहुत
1: जी
0: थोड़ा ही बहुत होता है। यदि हमारे मन में बहुत है कलर तो फिर सारी दुनिया रंगीन नजर आती है। तो
1: जी
0: बहुत ही खूबसूरत आप गाती हैं, और जब आप गाती हैं तो उसके बाद किसी और को सुनने का मन नहीं होता, इतना मन से कैसे गा लेती हैं आप? जब गजल गाती हैं खासकर बहुत दिल से गाती हैं, और पेशे से आप अपना परिचय दें और हम श्रोताओं को बताएं तो आप डॉक्टर हैं, और उसके बाद जब गजल गाता है तो गजल की एक दुनिया होती है और गजल गाने वाले की एक दिल की दुनिया अलग होती है। उस दुनिया में और आज के यथार्थ की दुनिया में आप कैसे फर्क करती हैं, और उस फर्क के बाद उसमें कैसे मेल कर सकती हैं, उसमें कैसे कोऑर्डिनेशन बैठाती हैं, कैसे उसके साथ चलती हैं लाइफ में?
1: जी, बहुत सही कहा आपने, एक रियलिस्टिक दुनिया है, और गजल जब आप गाते हो तो एक अलग ही दुनिया चली जाती है, आपको लेके जाती है गजल। और बचपन से मैं सुनती आ रही हूँ बहुत सारे गजल्स, और गाती भी थी, लेकिन हमेशा यही सोचती थी कि जब गजल गा रहे हो गाना तो अच्छे से आना चाहिए, लेकिन उसके साथ वो फील भी आनी चाहिए, एक दुख जो दर्द है वो गजलों में, कि सुन के वो दर्द आ जाए पूरा, तो वो होना चाहिए आपकी आवाज में। सो उसको लाते लाते थोड़ा समय तो लगता है, पता नहीं अब श्रोता ही बता पाएंगे कि किस तरह से मैं गाती हूँ और वो फील मैं ला पाती हूँ या नहीं, तो आई जस्ट ट्राई टू डू इट। और हाँ, जब गाती हूँ वो तो अलग ही दुनिया में लेके जाता है, एंड इफ यू डोंट गो टू दैट लेवल यू कांट गेट द फील ऑफ द गजल। सो ट्राई करती रहती हूँ कि अच्छे से गा पाऊं, और गजल के लिए डिक्शन जो है उर्दू वो अभी तक बहुत अच्छे से नहीं हो पाया है, लेकिन मैं ट्राई करती हूँ कि थोड़ा थोड़ा हो जाए उर्दू उसके लिए।
0: जी, कई बार सुनते सुनते आपको ऐसा लगता है कि आप गजल को गा रही हैं या गजल आपको गा रही हैं, दोनों में एक रस हो जाता है, ऐसा सामने होता है। बहुत ही मन से, जब दिल से किसी चीज को हम पुकारते हैं गाते हैं तो ऐसा ही होता होगा, अक्सर हमारा ऐसा मानना है। तो पहली कौन सी गजल आप हमारे श्रोताओं को आज सुनाने वाली हैं?
1: आज श्रोताओं के लिए पहला गजल जो है फेस टू फेस एल्बम है जगजीत सिंह जी का, और जिसको खामोश गजीपुरी जी ने लिखा हुआ है, देरो हरम में बसने वालों
0: महखानों में फूट न डालो। तो आइए सुनते हैं ये खूबसूरत गजल।

0: वाह बहुत ही खूबसूरत गजल। दैरो हरम में बसने वालों, महखानों में फूट न डालो। आप सुन रहे हैं डिजिटल वॉइस बर्ड का लाइव शो गाथा गजल, और हमारे साथ हैं भुवनेश्वर उड़ीसा की गजल गायिका डॉक्टर गाथा महंती। एक बार फिर वेलकम है इस लाइव शो में डॉक्टर गाथा आपका।
1: बहुत ही
0: खूबसूरत गजल हमने सुनी आपकी, और गजल यूं ही नहीं गाई जाती, गजल यूं ही नहीं गाई जाती, गजल के लिए पसीने को लहू किया जाता होगा, तब गजल दिल तक पहुंचती है। और आप ऐसी कौन सी कोशिश करती हैं, कौन सा प्रयास करती हैं कि गजल अपने रूप में हमें स्वरूप दिखाई देती हैं?
1: जी, कोशिश तो नहीं रहती है, लेकिन यही रहती है कि जब जो लिरिक्स है गजल की, जिसने लिखा हुआ है, उसने क्या सोच के किस तरह से हकीकत को अपने पेन से लिखा हुआ है, वो सोचती हूँ। जैसे एक गजल है, उसका मतलब एक पैरा अगर सुना जाए, जैसे गांठ अगर लग जाए तो फिर रिश्ते हो या डोरी, लाख करे कोशिश खुलने में वक्त तो लगता है। ये तो सच्ची है ना, कोई भी रिश्ता हो या डोरी हो, अगर उसमें गांठ लगे तो एक रिश्ता बनाने में जितना टाइम लगता है, उसको अगर टूट जाए तो उसको फिर से जोड़ने में जो डेडिकेशन चाहिए या तो जितना टाइम लगता है, वो बहुत ज्यादा होता है। सो वो उसको फील करना होता है कि अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है तो आप वही फील ला सकते हो, अगर नहीं भी हुआ है तो अगर किसी के साथ होते हुए देखा है तो वही फील लानी चाहिए। मैं तो वही सोचती हूँ। बाकी गजल जो गाते हैं उनका सोच भी मेरे से और अलग होगा।
0: बहुत ही खूबसूरत बात कही आपने। और ऐसी कौन सी गजल है जिसमें गांठ लग जाए अगर रिश्ते, तो वैसी ही गजल सुना दीजिए ना।
1: जी जी, प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है, ये वही एल्बम से है फेस टू फेस, और उसी को जगजीत जी ने गाया हुआ है।
0: लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है।
1: जी जी जी जी, एकदम सही है ना, एकदम सही लिखा है।
0: बहुत ही खूबसूरत गजल, और पूरे जीवन की फिलॉसफी उसमें छुपी है,
1: पूरी फिलॉसफी है। जी जी,
0: तो आइए सुनते हैं और लुफ्त लेते हैं इस खूबसूरत गजल का आपकी आवाज में, आपकी आवाज, आपकी पहचान, डॉक्टर गाथा महंती।

0: प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। जिस्म की बात नहीं थी, उनके दिल तक जाना था। लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है। प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गाथा ए गजल और हमारे साथ हैं डॉक्टर गाथा महंती भुवनेश्वर उड़ीसा से। वेलकम है एक बार फिर इस प्रोग्राम में, इस खास प्रोग्राम में डॉक्टर गाथा आपका।
1: जी शुक्रिया।

0: ही एक खूबसूरत गजल हमें सुनने को मिली, हमारे लिसनर्स को सुनने को मिली। और आपने कभी खत लिखा? क्योंकि आजकल तो खत का जमाना नहीं है, लेकिन
1: नहीं लिखा हुआ है।
0: लिखा हुआ तो उसमें वक्त भी लगाया आपने?
1: हाँ, वक्त तो लगा था।
0: पूरी तरह से लिख पाई थी या कुछ रह गया था?
1: नहीं, शायद लिख लिया था।
0: लिख लिया, चलिए, बहुत शुभकामनाएं। बहुत शुभकामनाएं, अच्छी बात।
1: थैंक यू।
0: तो इतना खूबसूरत जो है आपने अपने स्वर में आपने इस गजल को गाया है और महसूस करके गाया है, उसको सुन के बहुत अच्छा लगा। हम चाहेंगे कि उस खत के बारे में, क्योंकि उस खत को जब आपने पहली बार कोई आदमी करता है कोई काम तो उसको भूलता नहीं है, तो आप भी
1: हाँ जी
0: बिल्कुल नहीं भूल पाएंगी, भूल पाई होंगी हमारी जैसी सोच है, यदि आप ऐसा ही करती हैं या सोचती हैं तो आप भी नहीं भूल पाई होंगी। तो कौन सी गजल हमारे श्रोताओं को?
1: जो नेक्स्ट गजल है वो इसी के बारे में ही है। आपको भूल जाए हम इतने तो बेवफा नहीं, चित्रा जी ने गाया हुआ है। एक लाइव कॉन्सर्ट हुई थी 1988 में।
0: आपसे गिला है, आपसे क्या गिला करें, आपसे कुछ गिला नहीं।
1: जी जी
0: कितना
1: बहुत ही खूबसूरत,
0: कितना सेक्रीफाइस है इसमें है कि जो गजलों में विरोधाभास होता है वो दोनों चीजें इसमें आ रही हैं। आपको भूल जाएं हम इतने तो बेवफा नहीं, आपसे क्या गिला करें, आपसे कुछ गिला नहीं। तो आइए सुनते हैं आपकी आवाज में, यानी डॉक्टर गाथा मोहंती की गाई इस खूबसूरत गजल को, आपकी आवाज, आपकी पहचान। आप सुन रहे हैं डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ल्ड।

0: वाह,
1: बहुत खूबसूरत गजल। शीशाए दिल को तोड़ना उनका तो एक खेल है, हमसे ही भूल हो गई उनकी कोई कथा नहीं। वो कितना बदनसीब है गम ही जिसे मिला नहीं, आपको भूल जाएं हम इतनी तो बेवफा नहीं। आप सुन रहे हैं डॉक्टर गाथा को ओडिशा भुवनेश्वर से। हमारे साथ प्रोग्राम गाथाए गजल में डॉक्टर गाथा मोहंती इस प्रोग्राम में लाइव जुड़ी हैं। बहुत ही खूबसूरत गजल गाथा हमने सुनी और
2: जी शुक्रिया।
1: क्या कहेंगी आप इस गजल को सुनने के बाद? हमारे श्रोता तो कहेंगे ही कहेंगे, आप क्या कहेंगी?
2: नहीं, ये गजल इतनी इजी भी नहीं है, क्योंकि जब मैंने पहली बार सुना, किसी ने बोला कि आप ये सुनिए और इसको सीख के गाइए, तो क्योंकि इतनी बारीकियां हैं और चित्रा जी ने इतनी छोटी छोटी चीजों में हरकतें की हुई हैं, सो खाली गा लेना मेरे लिए वो सीख के एकदम हूबहू उसको फिर से प्रोड्यूस करना वाज लिटिल ट्रिकी, बट टाइम लगा, लेकिन फिर हुआ। लेकिन उसके बाद क्या होता है, फील भी आनी होती है। सो एक बार गाना, फिर उसके बाद उसकी जो फाइनल डिटेल्स एंड उसके बाद द फील, एवरीथिंग मेक्स अ गजल कंप्लीट। सो शायद श्रोता ही बता पाएंगे कि वेदर दे लाइक्ड इट और नॉट, और वो कंप्लीट हुआ है या नहीं।
1: हमारी दृष्टि में तो पूरी तरह से कंप्लीट हुआ है, और भूलने की बात हो और तन्हा होने की बात हो, अकेलेपन की जब बात हो तो भी गजल होती है। और हिंदी कविता में तो कहा जाता है, वियोगी होगा पहला कवि आह से उपजा होगा गान, निकल चुपचाप आंखों से बही होगी कविता अनजान। तो पहले कवि के बारे में ऐसे कहा जाता है, तो आप ही बताएं कि जब तन्हा होता है आदमी तो कौन सी गजल गाता है? और
2: ये कोई ये कैसे बताए कि वो तन्हा क्यों है?
1: जी वही,
2: तो ये गजल है जगजीत जी का, जी कैफी आजमी जी ने लिखा हुआ है, और ये मूवी में आई थी ये जो गजल है, ये इसको शबना आजमी जी के ऊपर फिल्माया गया था, अर्थ मूवी में
1: जी।
2: ये गजल आए थे और मुझे बहुत पसंद है ये, सो वो सुनाते हैं श्रोताओं को।
1: बिल्कुल, आपके साथ हम भी सुनते हैं श्रोताओं के साथ आपकी ये गजल डॉक्टर गाथा अपनी अगली गजल में।
3: रिश्ते तो नहीं

0: है जन्म का ये रिश्ता तो बदलता क्यों है, कोई ये कैसे बता दे कि वो तन्हा क्यों है। खूबसूरत गजल हमने सुनी डॉक्टर गाथा की आवाज में। आपकी आवाज आपकी पहचान, आप सुन रहे हैं डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ल्ड। और हमारे साथ हैं भुवनेश्वर गुहा, भुवनेश्वर उड़ीसा से, डॉक्टर गाथा, प्रोग्राम गाथा ही गजल। फिर से वेलकम है, स्वागत है डॉक्टर गाथा इस लाइव शो में। खूबसूरत गजल आपने सुनाई और इसको सुन के हमें यूं लगा, एक प्रश्न हमारे जहन में आया कि अधिकतर गजलें गम जुदाई इनको लेके होती है, जिंदगी के फलसफे को लेके होती है, और वही गजलें हमारे दिल को और सुनने वाले जो लिसनर्स हैं उनके दिल को छूती है। तो ऐसी क्या बात होती है इसमें, कौन सा आकर्षण होता है गजल में कि वो हमारे सीधे दिल में असर करती है, नॉक करती है।
1: वो सच बताती है गजल,
0: कभी झूठ नहीं बोलती।
1: फिलॉसफी जी, कभी झूठ नहीं बोलती। जो फिलॉसफी है लाइफ की, चाहे मैं कितना बता दूं कि नहीं ऐसा नहीं होता है, लेकिन यही होता है। और इसको एक्सेप्ट करना, जितनी जल्दी आप एक्सेप्ट कर लो वही आपके लिए अच्छा रहता है। सो किसको गम नहीं है इस जमाने में, सबको गम है, आपका आपको भी है, हमारा भी है, लेकिन उस गम के पीछे भी एक लाइफ चलती रहती है और उसी गम के साथ लोग चलते रहते हैं। द चेंज इज कॉन्स्टेंट, सो वही चेंज को एक्सेप्ट करना और आगे बढ़ते जाना, वही तो जिंदगी है।
0: तो सुन ले वो गजल, अपने गम को गीत बनाकर गा लेना, अपने गम को गीत बनाकर गा लेना, राग पुराना तेरा भी है,
1: तेरा भी है मेरा भी।
0: आइए सुनते हैं, बहुत ही खूबसूरत उम्दा गजल।

0: शहर की गलियों में चर्चा है जिसका, वो अफसाना तेरा भी है मेरा भी है। जी हाँ, चर्चा है आज प्रोग्राम गाथा है गजल की जयपुर रेडियो पर। हमारे साथ हैं डॉक्टर गाथा महंती भुवनेश्वर उड़ीसा से। आपकी आवाज आपकी पहचान, डिजिटल वॉइस वर्ड का जयपुर रेडियो वर्ड सुन रहे हैं आप। डॉक्टर गाथा, हमने सुनी गम का अफसाना
1: जी।
0: और क्या कहेंगी, गम के बगैर जिंदगी अधूरी है या जिंदगी के बगैर गम?
1: जी, दोनों ही सही है। अपनी अपनी जगह पे दोनों लाइंस एकदम सही बैठती हैं। गम के बगैर जिंदगी और जिंदगी के बगैर गम।
0: बहुत खूब बात कही आपने। और अगली गजल की ओर चलते हैं। और बहुत देर के बाद जिस चीज को आपने नहीं देखा है, जिस गजल को आपने नहीं सुना है, वो गजल हमारे श्रोताओं की नजर कर दीजिए आप। तो कौन सी गजल
1: जी
0: की ओर रुख कर रही हैं?
1: ये है नियते शौक भर ना जाए कहीं, तू भी दिल से उतर ना जाए कहीं। नासिर काजमी जी ने लिखा हुआ है और नूर जहां जी ने पहली बार गाया था इसे।
0: आज देखा है तुझको देर के बाद, आज का दिन गुजर ना जाए कहीं।
1: जी, तो बहुत खूबसूरत लिखा हुआ है जी।
0: तो बिल्कुल सुनाइए आप ये गीत गजल। आइए सुनते हैं डॉक्टर गाथा को इसको।

0: न मिलाकर उदास लोगों से हुस्न तेरा बिखर न जाए कहीं, तू भी दिल से उतर न जाए कहीं। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गाथाए गजल और हमारे साथ हैं डॉक्टर गाथा महंती उड़ीसा भुवनेश्वर से। एक बार फिर इस लाइव शो में वेलकम है डॉक्टर गाथा आपका, क्या कहें?
1: जी शुक्रिया
0: जी।
1: जी एक डॉक्टर होते हुए भी पैशन जो है मेरी सिंगिंग है और हर तरह के गाने गाती हूँ, और इस बार गजल जो कलेक्शंस थी मेरी, मैंने सोचा कि श्रोताओं को सुनवाऊं क्योंकि उनकी फीडबैक भी बहुत जरूरी है। अगर कोई प्रोग्राम हम उनको सुनवा रहे हैं सो वो हम अपनी खुशी से जो हमें पसंद है वो उनके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। सो आई वुड एक्सपेक्ट कि लोग अपने कमेंट्स दिए व्यास जी को और बताएं कि ये जो मेरी प्रयास है गजलों की ये जारी रखूं या और थोड़ा बेहतरीन हो सकता है, या आई वुड लाइक एन ऑनेस्ट फीडबैक।
0: बिल्कुल, ये आपका मैसेज बराबर इसी वक्त श्रोताओं के पास पहुंच रहा है। और इस गजल में एक चीज थी कि तू भी दिल से उतर न जाए कहीं। तो कई बार ऐसा होता है हमारे साथ लाइफ में कि कोई चीज, कोई गीत भी होता है तो हम बहुत सुनते हैं या बहुत उसके करीब होते हैं तो फिर वो सुनने का मन नहीं करता, या ऐसा कोई व्यक्ति भी हो सकता है, कोई चीज भी हो सकती है। तो दिल से उतरना और दिल के अंदर आना, इसका जो प्रोसेस है उसके बारे में कुछ बताएंगे आप?
1: जी कुछ तो बहुत प्यारे लोग हैं और कुछ प्यारे गाने भी हैं जो हमने बहुत बार सुना हुआ है, लेकिन इतना सुना हुआ है और ये जो जिंदगी की भीड़ है या जिंदगी की जो कश्मकश है उसमें खो जाते हैं, लेकिन वो दिल से उतर नहीं जाते। इट्स जस्ट दैट इट हैज टू कम बैक अगेन। तो दिल से उतर जाए, कैसे उतर जाते हैं वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ हमेशा कुछ कुछ जैसे गुमसा रह गया हो और अचानक से वो सामने आ जाए तो वो जो खुशी मिलती है वो क्या कहने। वैसे गाने बहुत सारे हैं जो कि बचपन में सुना करते थे हम लोग और फिर कहीं गायब हो गए वो गाने, और जब अभी YouTube हुआ या बहुत सारे चैनल्स हुए, Spotify हुआ या बहुत सारे जैसे आपके रेडियो में भी आप बताएं डिजिटल वॉइस वर्ल्ड में वो गाने सुनने को मिलते हैं, तो अचानक से वो मेमोरीज जाग उठती हैं और वो जो खुशी मिलती है उन गानों को सुनने के लिए और फिर से उन गानों को गाने के लिए वो जो प्रेरणा मिलती है उसको आई कांट एक्सप्लेन इन वर्ड्स।
0: बिल्कुल अनिवर्चनीय है जिसको कहा जाता है, उसका शब्दों में बयान नहीं कर सकते हम, निःशब्द हो जाते हैं पर वो खुशी
1: जी जी
0: दिल को महसूस होती है। जैसे गूंगे गूंगे को गुड़ का स्वाद तो मालूम होता है पर बता नहीं सकता, तो इसी तरह से होता है कई बार, कई एक बार। तो अगली गजल के लिए हम आग्रह करेंगे आपसे, कौन सी गजल रहेंगी आपकी?
1: अगली गजल एक प्राइवेट एल्बम जी वहां से लिया गया है, मोहम्मद रफी जी का ये गजल है और बहुत कम लोगों ने इसको सुना हुआ होगा या तो गाया हुआ होगा। सो व्हेन आई वाज सजेस्टेड दिस गजल सो मैंने सुना तो एक ही बार में जो होता है ना वो चुंबकीय शक्ति होता है ना वो होता, वो मिला मुझे। अल्लाह मेरे अल्लाह, दुनिया में मेरी आबरू रखना मेरे अल्लाह, एंड द फील ऑफ द गजल इज सच दैट इट टेक्स यू इनटू अ ट्रांस, इनटू अनदर वर्ल्ड। वो तो सुनने में ऐसा होता है, तो गाते समय मुझे क्या फील हुआ होगा मैं नहीं बयां कर सकती, और इसको स्ट्रेट अवे आप प्ले कर दीजिए श्रोताओं के लिए।
0: बिल्कुल, हम सुन के और महसूस करने की कोशिश करते हैं। आप सुन रहे हैं डॉक्टर गाथा।

0: आप सुन रहे हैं डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ल्ड प्रोग्राम गाथा ए गजल पे। हमारे साथ हैं डॉक्टर गाथा महंती भुवनेश्वर ओडिशा से। एक बार फिर वेलकम है इस लाइव शो में डॉक्टर गाथा। इस खूबसूरत अरदास के बाद आबरू और इज्जत की बात अल्लाह से निवेदन करने के बाद अब कौन सी गजल इस प्रोग्राम के अंत में आप सुनाना चाहेंगे?
1: जी, ये बशीर बदर उन्होंने लिखा हुआ है। सहर एल्बम आई थी 2000 में, जगजीत सिंह जी ने इसको गाया हुआ है। मुझसे बिछड़ के खुश रहते हो, मेरी तरह तुम भी झूठे हो। ये पहली लाइन ही इतनी खूबसूरत है और इसमें जो लिखा है, मतलब जो पैराज है, एक एक पैरा के जो मीनिंग्स हैं वो इतनी खूबसूरत हैं। मुझको शाम बता देते हैं तुम कैसे कपड़े पहने हो, एंड इट्स जस्ट माइंड ब्लोइंग लिरिक्स। सो
0: एक टहनी पे चांद टिका है।
1: जी, चांद टिका था।
0: मैं ये समझी
1: तुम बैठे हो। हाँ, ये एक्चुअली मेल वर्जन था, सो आई हैव जस्ट चेंज इट टू अ फीमेल वर्जन। सो
0: मुझसे गाते गाते खुश रहते हो, मेरी तरह तुम भी झूठे हो।
1: झूठे
0: तो बिछड़ने की बात आई गई और सुनते हैं आपकी ये खूबसूरत गजल
1: जी
0: डॉक्टर गाथा। इस खूबसूरत गजल में आपके साथ

0: मुझसे बिछुड़कर खुश रहती हो, मेरी तरह तुम भी झूठी हो। ये तो श्रोता तय करेंगे कि हमारा प्रोग्राम सच्चा है कि नहीं। बहुत ही खूबसूरत गजल हमें सुनाई डॉक्टर गाथा ने इस प्रोग्राम में, जिसका नाम है गाथाए गजल। और चलते चलते क्या कहेंगी डॉक्टर गाथा हमारे लिसनर्स को, कुछ संदेश अपने बारे में कुछ बताएं।
1: लिसनर्स, तो मैं क्या कह सकती हूँ, वही आपने जो कहा ना, सच्चा है या झूठा है वो लिसनर्स ही बताएंगे। और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप सुनते हैं और अप्रिशिएट करते हैं। सो आगे भी सुनते रहेंगे तो मुझे भी बहुत ज्यादा
0: शुक्रिया। बहुत ही कीमती समय आपने अपना दिया, इसके लिए बहुत धन्यवाद, आभार। सुनते रहें जयपुर रेडियो बार बार, आपकी आवाज आपकी पहचान। आज का ये सुरीला सफर यहीं तक, अनुमति दी, नमस्कार
1: जी, नमस्ते।

0: अरे ये लाहौर लाखों और इस कमबख्त को क्या हो गया, ये बजता क्यों नहीं है?
1: क्या हुआ चचा, ये रेडियो पे इतना जुल्म क्यों ढा रहे हैं आज?
0: अरे जुल्म किस बात का बेटा, अब आधे घंटे से लगे हुए हैं, अब हमारा पसंदीदा प्रोग्राम आने वाले थे, हमारे गीत आने वाले थे, लेकिन ये कमबख्त है कि बजने का नाम ही नहीं लेता।
1: तो मोबाइल पे ही सुन लीजिए ना रेडियो।
0: अरे बेटा कौन वो लीड लगाए और फिर वो दो फुलटू कान में डाल के वो लंबी सी रस्सी लेकर यहाँ वहाँ घूम।
1: अरे नहीं चाचा, अब उस रस्सी की जरूरत नहीं पड़ेगी।
0: अच्छा,
1: अब आ गया है एक नया ऐप जिसपे आप इंटरनेट के सहारे रेडियो सुन सकते हैं कहीं भी कभी भी।
0: अच्छा कौन सा ऐप है वो?
1: हाँ चाचा, जयपुर रेडियो।
0: जयपुर रेडियो? पर बेटा हम तो लखनऊ में रहते हैं और जयपुर।
1: चाचा देश के नहीं बल्कि दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर आप अपने पसंद के गाने सुन सकते हैं।
0: अरे वाह, ये लो बेटा फोन, और क्या नाम बताया उस ऐप का?
1: लाइए मुझे दीजिए आपका फोन, मैं अभी डाउनलोड कर देती हूँ जयपुर रेडियो।
2: तुमने दी आवाज, हो जाए अब तो आगाज, जयपुर रेडियो आपकी पहचान।
3: आवाज की पहचान, जयपुर रेडियो मेरी जान।
4: जयपुर रेडियो अपनार आवाज अपनार परिचय, सुनते थाकुन बंधुगण। जयपुर रेडियो
3: आपकी आवाज का जादू, कैसे रहे खुद पर काबू। जयपुर रेडियो आपकी पहचान।
5: तवा बुधिराया जयपुर रेडियो ते भक्ति आराधना।

0: डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का ये जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, आपकी आवाज आपकी पहचान। आज से हम एक नया सेगमेंट शुरू कर रहे हैं और उसका टाइटल है, उसका शीर्षक है सोच की दुनिया। जितना हम सोचते हैं, जैसा हम सोचते हैं, हमारे आसपास, हमारे चारों तरफ वही दुनिया बच जाती है, यानी हमारे सोच का प्रतिरूप होती है हमारे आसपास की दुनिया। और ऐसा क्यों होता है, किस लिए होता है, इसके पीछे कौन से घटक होते हैं, कौन से कारण होते हैं, इन सब के लिए हमारे साथ एक स्पेशलिस्ट हैं। अहमदाबाद गुजरात की कृति मेहता हमारे साथ हैं इस खास प्रोग्राम में। कृति, वेलकम है आपका इस खास प्रोग्राम में जिसका नाम है सोच की दुनिया। क्या कहेंगी, क्या सोचती हैं आप इस बारे में, पहले तो प्रोग्राम के बारे में क्या कॉन्सेप्ट है, आप हमारे लिसनर्स को इस कॉन्सेप्ट का जो डिस्क्रिप्शन है उसे अपने शब्दों में बयान करेंगी?
1: यस ऑफ कोर्स सर, सबसे पहले नमस्ते, सारे जो भी मेरे श्रोतागण हैं उनको सबको भी नमस्ते। सोच की दुनिया यही मेरा मेन सब्जेक्ट है और नॉर्मली मैं सभी के माइंडसेट, बिलीफ सिस्टम, पर्सनालिटी और जो भी वाइब्रेशन वाली जो दुनिया है उसी के ऊपर मैं वर्क कर रही हूँ। तो सोच की दुनिया में मैं ऐसा मानती हूँ कि अभी की जो दुनिया है ना, वो हमारी ही बनाई गई एक दुनिया है और हमारा ही ये जो विश्व है, हमारे पास जो भी हमें जीवन मिला है, हमें जिन लोगों के साथ अभी रह रहे हैं, जिस तरह से रह रहे हैं, पैसा कितना है, हमारे आजू बाजू एटमोस्फियर कितना है, किस तरह के लोग हैं कि और किस तरह से हमें उनकी ओर से भी बिहेवियर मिलता है, किस तरह से हमारे रिश्ते हैं, ये सब हमारी सोच के ऊपर निर्भर होता है।
0: बिल्कुल, आपने बहुत सही कहा कि जो हमारा सोच है, वो सोच जिसको हम यदि धार्मिक दृष्टि से कहेंगे तो कहा जाता है कि पहले हमने इच्छा की किसी चीज की, इच्छा के बाद में जो है कल्पना की, कल्पना के बाद में उसके लिए हमने क्रिया की और क्रिया से हमें ज्ञान का बोध हुआ। तो इसी तरह से सोच की जो दुनिया है कि आपने रात को सोचा कि कल सुबह मुझे क्या पहनना है, जीन्स पहननी है या टी शर्ट पहनना है या किस तरह का लिबास पहनना है, आज तो मैंने साड़ी पहनी थी, तो उस सोच को जब आप दूसरे दिन परिणति में, यथार्थ में ढालती हैं तो और उसको उसी रूप से यदि वो सब कुछ हो जाता है तो हमें एक आत्मिक खुशी मिलती है, मन को एक शांति मिलती है कि जैसा मैंने सोचा वैसा किया। तो इस चीज को हम और व्यापक तरीके से, यानी जितना हमारा सोच होगा उसी तक उसकी सीमाएं होंगी, सरहदें होंगी, तो उस सोच को हम व्यापक कैसे बना सकते हैं?
1: ऑफ कोर्स, बहुत अच्छा टॉपिक आपने कहा और यही टॉपिक मैं सबके लिए ही लाई हूँ। तो सबसे पहले हमें ये मान लेना चाहिए कि ये जो विश्व है ना, तो वो विश्व के पास अनंत शक्तियाँ पड़ी हुई है, अनंत शक्तियाँ। मैंने बहुत बार देखा हुआ है और काफी सारे धार्मिक ग्रंथ, सबसे ज्यादा मेरा फेवरेट जो है भगवद गीता, तो उसी में जो कहते हैं कृष्णा यही कहते हैं कि ना ही मुझे जला सकता है, ना ही मुझे कोई डुबा सकता है, ना ही मुझे कोई काट सकता है, ना ही मेरे को कोई, मतलब किसी तरह से मुझे परेशान नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे मन का स्वामी मैं खुद हूँ, मैं खुद एक पावरफुल सोल हूँ। ठीक है, तो अगर कोई भी इंसान या कोई भी व्यक्ति मतलब इस तरह से मान ले कि मुझे पहले, सबसे पहले उसको पर्पस नक्की करना है कि मुझे क्या करना है अपनी जिंदगी में और मैं किस हद तक जाने वाला हूँ। जैसे नॉर्मल कोई भी बच्चा है, हम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को, सर जी को ले ले, तो उनको देखिए कि कहाँ मामूली इंसान से वो इतने बड़े साइंटिस्ट, फिर हमारे राष्ट्रपति बन गए और आज भी उनका नाम एक रिस्पेक्ट के साथ हम लेते हैं कि उन्होंने अपनी सोच, जैसे स्वामी विवेकानंद है, गांधी जी है, तो उन लोगों ने डिसाइड किया था कि मुझे कहाँ तक जाना है। तो जो मन हमारा होता है ना, तो जब ये सब मैं बहुत बार पढ़ती हूँ ना, तो मुझे एक बात बहुत गौर की है तो जो हमारा मन है ना वो हमारा पिता है और जो हमारा बॉडी है वो हमारी माता है।
0: जी नॉर्मली तो मतलब ये है कि मन की ऊर्जा जो है वो तन की ऊर्जा के साथ मिले, उनका सामंजस्य हो और तालमेल रहे, यानी ऐसा नहीं हो कि हमारा तन तो कहीं और देख रहा है और मन कहीं और घूम रहा है, तो उन दोनों में संतुलन होने की जरूरत है। बहुत अच्छी बात कही कि मन हमारा पिता है और बॉडी जो है हमारी मदर है।
1: तो नॉर्मली हम बचपन से हमारी प्रोग्रामिंग जिस तरह से हम माहौल में रहते हैं इस तरह से तो मानते हैं, मैं इतना श्योरली मानती हूँ, मैं क्योंकि सब सबके पर्सनालिटी पे मैं काम करती हूँ तो बहुत ऐसा देखती हूँ कि मैक्सिमम 7 इयर्स तक सारी प्रोग्रामिंग हो चुकी होती है। 7 इयर्स के बाद तो जो सोसाइटी होती है, जो हमारा एटमोस्फियर, जो हमारा परिवार और हमारे दोस्त, टीचर्स, कॉलेज फ्रेंड्स सभी हमको ड्राइव करते रहते। एक्चुअली हम फिर डेटा ही कैरी करते रहते, हमारा डेटा हम इनपुट ही करते रहते हैं, आउटवर्ड हमारा कुछ होता ही नहीं है। तो इस तरह से हमारी पूरी दुनिया हमारी
0: हम इस बात को एक बार फिर और स्पष्ट करना चाहेंगे और आप ये कहना चाह रही हैं या ये कह रही हैं कि जो बच्चा होता है तो उसकी 7 वर्ष की उम्र तक ही जो है दिमाग की जो प्रोग्रामिंग होती है वो सेट हो चुकी होती है, उसके बाद हम जो है उसको यूज करते हैं, मतलब
1: तो नॉर्मली जब बच्चा छोटा होता है तो उसको ऐसा हम बार बार ना शब्द का यूज बहुत करते कि ऐसा मत कर, ऐसा मत कर, ऐसा मत कर। आगे जाके वो लड़का या लड़की कुछ भी करने से उसको कॉन्फिडेंस नहीं आता है। कभी कोई बच्चा छोटा है उसको बोल दिया गया कि तू छोटा है रहने दे हम कर लेंगे, वो बच्चा 80 साल का भी हो जाएगा, मतलब वो खुद भी दादा बन जाएगा या दादी बन जाएगी, वो ऐसा ही मानता रहेगा, वो जिम्मेदारी से भागता रहेगा।
0: क्योंकि हमने कई बार ऐसा देखा है कि जब ना ना उसको कहा जाता है तो किसी यश चीज के लिए कि आपको ये चीज खानी है या पीनी है, तब वो पहले ना कहेगा और फिर कहेगा यस जी मैं ये काम करूंगा, तो उसमें जो नेगेटिविटी है वो पहले ही हम आरोपित कर देते हैं। आपके कहने का तात्पर्य मेरे ख्याल में यही है। जी
1: यस तो वो नेगेटिविटी इतनी होती है ना कि फिर वो जो जब रियल लाइफ में आता है ना, क्योंकि हम क्या करते हैं बहुत सारा पैम्परिंग वाला एटमोस्फियर दे देते हैं, या तो इतना वो मतलब इस तरह से एटमोस्फियर दे देते हैं जैसे तू कुछ वैलिड ही नहीं है, मतलब दो देते हैं, मतलब पैम्परिंग ही चाहिए और इस तरह से उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दे, तो उस तरह से हम नहीं देते हैं। हम या तो पैम्परिंग ही बहुत ज्यादा दे देते हैं या उसको कम्प्लीटली रिस्पॉन्सिबल छोटी उम्र से भी बना देते हैं। अभी यहाँ पे दो स्टेज आएंगे, सोच की दुनिया में मैं बहुत ज्यादा देती हूँ प्रोग्रामिंग के ऊपर पार, क्योंकि मुझे इतना पता है कि ऐसा भी नहीं है। यहाँ पे कलयुग में एक गिफ्ट बहुत अच्छी दी है और ये गिफ्ट ये है कि अगर हम प्रोग्रामिंग हुआ है ना तो रीप्रोग्रामिंग भी हो सकता है, ये मैं बहुत अच्छी तरह से मानती हूँ। और मैंने
0: वो किस तरह से हो सकता है, वो किस तरह से हो सकता है, क्योंकि ये सारी चीजें डिपेंड करते हैं जब जिस एटमोसफेयर में हम रहते हैं, जिस परिवेश में हम पलते बढ़ते हैं, तो रीप्रोग्रामिंग आप किस तरह से करेंगी। जैसे कंप्यूटर है तो उसमें कंप्यूटर की सारी चीजें जो थी वो हमारे मस्तिष्क में थी वो हमने निकाल के बाहर डाल दी, जैसे अपना मोबाइल है वो सारी चीजें हमने हमारे दिमाग में थी पर हमने उसको इस तरह से उसके सॉफ्टवेयर को डेवलप किया और वो सारी चीजें ना उस कागज पे उतारने की जगह हमने इस तरह से उसको इम्प्लीमेंट किया कि वो हमारे लिए उपयोगी हो सके। तो आपने रीप्रोग्रामिंग की बात की, वो कैसे हो सकता है, क्योंकि उसको करने से तो बड़ी क्रांति आ सकती है और बहुत सारी चीजें जो है वो हम जैसा चाहें वैसा हो सकती है, तो किस तरह से हो सकती है?
1: क्योंकि ये जो रीप्रोग्रामिंग जो होगा ना, इससे सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि अभी तक जो इमोशनल फूल बनकर हम लोग जी रहे हैं ना, इसके ज्यादा हम प्रैक्टिकल कूल बनकर जी सकते हैं और लाइफ बहुत ईजी बन जाए, बहुत ईजी। और जितना पैसा चाहो, जितने रिलेशनशिप इश्यू है वो सोल्व हो सकते हैं, बॉडी एकदम से हेल्दी हो सकती है, पूरा रिग्रेट चला जाता है इंसान को। मतलब मेरे पास इतनी वो कहते हैं ना संजीवनी जड़ी बूटी है कि इंसान हर एक मोमेंट पे, मतलब हर एक मोमेंट पे वो खुश रह सकता है और जितना भी आयुष्य लेना चाहे इतना आयुष्य एकदम हेल्दी लाइफ जी सकता है,
0: यानी दुखी रहने का कोई कारण बचता ही नहीं।
1: यस, दुख का कोई कारण नहीं रहेगा, क्योंकि यही एक चीज है। और मैं बहुत अच्छे तरीके से ये मानती हूँ कि लाइव इन प्रेजेंस, अभी अभी का जो इरा चल रहा है या अभी कोई भी लोग होंगे ना, तो उनको आप गौर से देखिएगा, वो हो गए 24-25 साल के, लेकिन 15 साल का वक्त जो डेटा है या पिछले 2 साल का भी जो डेटा है ना, वो और अभी के प्रेजेंट सिचुएशन को मर्ज करके चलते हैं। पिछला जो डेटा, रॉन्ग एक्सपीरियंस, रॉन्ग डेटा, रॉन्ग पर्सन मिल गए ना, तो अभी कोई भी एक्सपीरियंस नया करने से सबसे पहले डरते हैं। अगर किसी ने धोखा दे दिया तो नए इंसानों पर विश्वास नहीं करते हैं। अगर कहीं पे मनी इश्यू आ गए तो वो ज्यादा मनी लेने से भी डरते हैं, देने से भी डरते हैं कि कहीं फंस गए तो। अपने को तो जो भी सही है बिजनेस,
0: बिल्कुल सही, इसी में जीते हैं, इसी जीवन में, हाँ, इसी वह पोह जिसको कहें, असमंजस की स्थिति हो जाती है ऐसे में। बहुत सही कह रही हैं आप।
1: दूसरा क्या होता है कि समाज में ऐसी बता दी गई है कि देखो इतने इतने फैक्टर है, इतने इतने में, जैसे बच्चा बड़ा हुआ, जॉब लगी, शादी की, उनके बच्चे आए, अच्छी तरह से कर रहे हैं, साल में 2-4 बार ट्रिप लेके आते हैं, अच्छी होटल में खाना खाते हैं, बस यही इनकी लाइफ। समाज को कुछ नहीं देते, और समाज को अगर दे भी देते हैं तो इस तरह से देते हैं कि जैसे कि मेरे पास एक्सेस था इसीलिए मैंने दिया, ये मेरा पार्ट है, मुझे करना चाहिए, मैं समाज से इतना ले रहा हूँ और यही समाज में मैं जीने वाला हूँ, मेरी शायद पीढ़ियां भी यहाँ पे आने वाली है। तो इस तरह से नहीं होता है। जैसे दान पुण्य हमेशा फियर में होता है, जिसका फियर सबसे ज्यादा होगा उसका डोनेशन सबसे ज्यादा है, ये चीज मैंने बहुत अच्छे तरीके से देख ली है।
0: बहुत सही कहा आपने। हम उस बात को और स्पष्ट करना चाहेंगे, जैसे इमोशनल फूल और कूल वाली बात आपने कही, उसको आप जरा और व्यापक विस्तार से कहेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, समझाने वाली बात में, यानी हर आदमी उसको समझ सके।
1: यस, इमोशनली फूल में कैसा होता है कि नॉर्मली हम कोई भी काम करते हैं ना, तो उसके बेनिफिट्स और ड्रॉबैक्स देखते हैं, ठीक है। दूसरा है कि कहाँ पे हाँ बोलना है, कहाँ पे ना बोलना है, वो हमें नहीं पता है होता है। तो कहीं पे हम ऐसे फंस जाते हैं ना, तो वो सिचुएशन ले तो लेते हैं लेकिन उसको न्यायपूर्वक अच्छी तरीके से निभा नहीं सकते। तीसरी बात होती है कि कोई भी आकर हमारे बारे में कोई भी स्टेटमेंट बोल के जाता है, वो चीज अपन मतलब इतना गांठ बांध के रख लेते हैं ना, अरे ये कैसे बोल गया, उन्होंने, मेरे कोई गलती नहीं थी, मेरा कसूर नहीं था, मैंने तो अच्छा करने गया, ये सब कुछ।
0: अगर उस वक्त इसने इस तरह से कहा या ये बात कही, उस चीज को प्रिजर्व करके अपने दिमाग में प्रिजर्व करके उसको जो है वो रख लेते हैं, सेव कर लेते हैं, जैसे कंप्यूटर में हम सेव करते हैं, उसी तरह उस बात को सेव कर लेते हैं। तो वो
1: वो होते नहीं है, जैसे बोलते हैं कि अरे यार तेरे के ऊपर ये शर्ट अच्छी नहीं लग रही है, अरे ये तेरे बाल कितने बेकार है। अगर वो इंसान प्रैक्टिकल कूल होगा, वो अपना सेल्फ लव करता होगा ना, उसके बाल कैसे भी है, उसने किसने भी वो शर्ट पे, वो इतना अपने आजू बाजू है ना एक प्रोटेक्टिव शील्ड रखेगा, तुमको जो बोलना है, तुमको जो एक्शन लेना है, मेरे मन की स्थिति मेरे काबू में है, मुझे कितना सुखी होना है, कितना दुखी होना है, वो सिर्फ मैं ही तैयार करूंगा।
0: बहुत अच्छी बात, बहुत ही बेहतरीन बात, बहुत बेहतरीन बात। कई बार बहुत अच्छा लग रहा होता है तो लोग जलते हुए भी ऐसे कह देते हैं कि अरे तुम कैसे लग रहे हो, अजीब से कपड़े पहने हैं, क्या है, जबकि वो बहुत अच्छा लग रहा होता है। और वो कहने वाले को अच्छा नहीं लग रहा होता है, जो कह रहा है उसको अच्छा नहीं लग रहा है, और वो जो है वो संवेदना ट्रांसफर करता है, अपनी जो नेगेटिविटी है वो उसको सामने वाले को ट्रांसफर करता है, और ऐसी स्थिति में
1: इंसान का
0: बिल्कुल
1: इंसान का एक स्वभाव ऐसा है, अगर मैं आपके बारे में 2 शब्द अच्छा बोलूंगी ना तो आप जल्दी बिलीव नहीं करोगे, लेकिन मैं कहूंगी अरे भैया वो जो शर्मा जी थे ना, उन्होंने आपके बारे में ये बोला, शर्मा जी ने बोला होगा या नहीं बोला होगा,
0: आप किस वे में बोला होगा, किस वे में बोला होगा, किस परिस्थिति में बोला होगा, उन सब चीजों को नकार दिया जाएगा और उस बात को कि अरे मेरे बारे में ये बोला उसने और हमने उसके साथ दूरी बना ली, डिस्टेंस बना ली, तो ये इमोशनल बिल्कुल बहुत ही अच्छी बात।
1: दूसरा एक साइंटिफिक वे में आपको बता देती हूँ, साइंटिफिक वे में ये आप बहुत अच्छे तरीके से डीपली समझ पाओगे। आप कोई भी विचार आता है आपका, 17 सेकंड तक आप होल्ड करो, कि जैसे मुझे विचार आया कि आज मैं है ना, तो आज मैं खुश रहूंगा, ठीक है। तो खुश रहने के लिए आपको कोई भी मटेरियलिस्टिक चीज की जरूरत नहीं है, खुशी हमारे अंदर होती है। जैसे आज आप और मैं ऐसी ऑफिस में बैठे हुए हैं, मेरे नीचे मैं देख रही हूँ बालकनों में कुछ बच्चे खेल रहे हैं इतनी धूप में भी, तो वो भी आराम से खेल रहे हैं। तो सुकून जो होता है ना, सुकून होता है या जो शांति होती है या जो ओरिजिनल पी, मतलब किस तरह से कहे कि जो हमारा
0: ओरिजिनल पीस, मन की शांति जो,
1: ओरिजिनल, यस यस, तो वो जो होता है वो डिपेंड हमारे मन के ऊपर करता है। तो कोई भी थॉट को आपने पकड़ लिया, अभी वो 17 सेकंड तक होल्ड कर लेते हैं ना, तो वो ही थॉट हमारा 100% आगे बढ़ता है, और फिर 1000% बढ़ता है, फिर 10000% बढ़ता है। तो इस तरह से हमारे आजू बाजू एक मैग्नेटिक फील्ड हो जाता है। अभी आप कभी भी देखना कि आप बहुत ही अच्छे कोई साधु संत है, भगवंत है, उनके पास जाओगे, या कभी मंदिर मस्जिद कहीं पे भी गुरुद्वारे में आप जाओगे, तो वहां का ओरा कैसा होता है कि वहां पे सब एकदम पॉजिटिव पॉजिटिव। जैसे हम कहते हैं ना कि घर में तो मंदिर में पूजा करके मजा नहीं आता है, मैं इस मंदिर में जाती हूँ या जाता हूँ ना तो मुझे सुकून लगता है
0: जी।
1: तो वहां पे क्या होता है, बहुत सारे लोग एक साथ, मतलब अभी आप है, आप अपने बेटे को ऐसा बोल दो कि बेटा तू बहुत अच्छा बेटा है, आपके घर वाले बोल दे, 3, 4, 5, 10 लोग बोल दे, तो समझो कि ये विचारों का समूह बन जाएगा। और जो समूह बनेगा तो आपको पता ही है कि ये बच्चा अगर नॉटी बॉय भी है ना, वो भी गुड बॉय में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। ये वाइब्रेशन और ये थॉट प्रोसेस जो होती है ना, उसका एक जादू होता है।
0: बहुत ही जादू मंत्र आपने बताया है, बेहतरीन मंत्र है। और हम श्रोताओं को बता दें कि हमारे साथ हैं माइंड थेरेपिस्ट और विशेषज्ञ स्पेशलिस्ट, मन के विज्ञान की स्पेशलिस्ट कृति मेहता, अहमदाबाद गुजरात से वेलकम कर रहे हैं आपकी बातों का और जीवन के दर्शन का प्रोग्राम सोच की दुनिया में। जी कृति, वेलकम है फिर से।
1: यस, नमस्ते। सोच की दुनिया, सोच की दुनिया एक ऐसी दुनिया है कि जहाँ पे हम लिमिटलेस हैप्पीनेस, लिमिटलेस पीस, लिमिटलेस गुड हेल्थ, सब कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ हमें इतना सोचना है कि हम कहाँ तक सोच सकते हैं, हमारी जिंदगी हम कितनी व्यापक बनाकर उनको रियल लाइफ, मतलब हमारे पास एक ही जीवन अगर मिला हुआ है मनुष्य योनि में, तो उनको किस अच्छी तरीके से जिए कि लास्ट में हम भी अगर जब जाए ना इस दुनिया से, तो इतना पता चले कि यार मजा आ गया, सच में मैंने एक अच्छी हीरो या अच्छी हीरोइन की तरह मैंने जिंदगी जी। तो ये है हमारी सोच की दुनिया।
0: बिल्कुल, जैसा सोचोगे वैसा पाओगे। और हमने हमने उड़ने का मन बनाया तभी जो है हवाई जहाज बने, एरोप्लेन्स बने, रॉकेट्स बने। और जिसने इस लोक से दूसरे लोक चंद्रलोक जाने का सोचा तो वो चंद्रलोक पहुंचे, मंगल लोक पहुंचे, और न जाने किन किन लोगों में जाने की अभी भी अपनी सोच को जारी रखे हुए, अपनी इच्छा को, अपनी क्रिया को, अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए। तो हमारा कहने का मतलब है कि हमारा सोच जो है, हमारा जो सोचने का दृष्टिकोण है वो व्यापक होना चाहिए, और उसी से हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। क्या हम सही कह रहे हैं?
1: यस यस, एब्सोल्युटली। सोच की जो हमारी व्यापकता है, जो यहाँ पे मैं साइंटिफिकली, क्योंकि मैं बेसिकली जो माइंड थेरापिस्ट हूँ, तो मैं लोगों की पर्सनालिटी, लोगों की बिलीफ सिस्टम और उन लोगों की जो भी अभी तक की जर्नी रही है, तो उसमें मैं लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग का काम करती हूँ। और जो भी अभी तक आप लोगों ने जितनी भी जिंदगी जी, चलो सही बात है, अच्छी जी बुरी जी जो भी है, लेकिन आगे अगर आप अच्छी और पीसफुल लाइफ चाहते हो, तो मैं इतना ही कहूंगी कि ऑलवेज अपने विचारों पे काबू रखो, और अपने विचारों को, अपनी जो भी सोच है ना, उसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल बने। कभी भी कोई भी सोच आ जाए और हम उसको स्वीकार कर ले, और वही स्वीकार करके, वही अगर वो नेगेटिव सोच है, तो नेगेटिव सोच को हम बार बार रिपीट रिपीट रिपीट करते रहेंगे, तो ऑफकोर्स हमारी लाइफ भी नेगेटिव हो जाएगी। लेकिन हमारे कंफर्ट जोन से आगे निकलकर हम सोचते हैं कि नहीं, आज तो मैं पक्का वादा करता हूँ कि मैं आज अपने बारे में या किसी और के बारे में मैं एक भी सोच नेगेटिव नहीं लाऊंगा। अगर कोई आता है तो उनको मैं कहूंगा कि यस, आज मैंने अपने आप से ये वादा किया हुआ है, तो मैं आज कुछ भी गलत नहीं बोलूंगा या गलत सोचूंगा नहीं, तो आज के दिन के लिए मुझे माफ करें।
0: बहुत सही बात है कि खुद से प्रॉमिस करना एक ये एक बहुत बड़ी चीज yes. है जो आपने बताई है, इस बात से निकल के आई कि आप अपने आप से प्रॉमिस करिए कि मैं आज ये कुछ भी नेगेटिव सोचूंगा नहीं ना करूंगा। करने की तो बात ही दूर है, सोचूंगा ही नहीं, तो सोचूंगा नहीं तो मैं करूंगा नहीं। बट क्योंकि yes. हमने ऐसा भी व्यावहारिक दृष्टि में हम देखते हैं, देखने को मिलता है कि कुछ लोगों की सोच बहुत लिमिटेड होती है और कुछ की बहुत व्यापक होती है। तो अधिकतर लोगों की जो लिमिटेड सोच होती है वही क्यों होती है घर में, परिवार में, अपने आसपास के जो लोग हैं, अपने बच्चों में, या उससे आगे बढ़ के कुछ नहीं होता। बहुत सारे कम लोग होते हैं जो पूरे विश्व के लिए, पूरी दुनिया के लिए जो भी बोलते हैं वो सबके लिए बोलते हैं कि ये सबके लिए यूनिवर्सल बात है। तो इस तरह की जो ये चीज क्यों नहीं है, ये हमें कई बार हमारे दिमाग में आती है कि ऐसा क्यों नहीं है कि जैसा मैं सोच रहा हूं वैसा ही ये क्यों नहीं सोच रहा। ये सिर्फ अपने तक सीमित है, कुछ लोग सिर्फ अपने तक है, कुछ अपने माँ बाप तक है, कुछ अपने बच्चों तक है, कुछ अपने परिवार तक है, कुछ अपने समाज तक है, कुछ जो है वो अपनी कम्युनिटी जिसको कहें या समुदाय कहें उसके सराउंडिंग सोचते हैं। यानी एक इंसानी सोच और एक ऐसी सोच जो पूरे दुनिया के लिए, यूनिवर्स के लिए सच हो, अच्छी हो, पॉजिटिव हो, ऐसी सोच डेवलप करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा जो हम बुद्धिवादी हैं, मानवतावादी हैं या यथार्थवादी हैं, उनको क्या करना होगा?
1: यस, ये बहुत अच्छा है। देखिए, मैं सबसे पहला इतना कहना चाहूंगी कि हम जो है ना, हम क्या कहते हैं कि हमारे यहाँ ऐसा कहा जाता है कि मतलब गुजरातियों में एक कहावत है कि जात परिवर्तन द्वारा जगत परिवर्तन, मतलब कि खुद के ऊपर काम करना शुरू कर दो, जगत पूरा तुम्हारा सराउंडिंग जो वर्ल्ड होगा ना वो अपने आप ही चेंज होता जाएगा।
0: वाह, बहुत खूबसूरत तो, बात, यानी अपने से शुरुआत करनी होगी।
1: यस यस, क्योंकि देखो मैंने जो भी मैनिफेस्ट किया है, मेरे आसपास अच्छे बुरे, मेरे अनुभव अच्छे बुरे है या मेरी लाइफ अच्छी बुरी है, तो वो मेरी सोच के ऊपर आता रहते हैं। और रही बात आपने जिन्होंने बोला कि कुछ समुदाय तक है, अभी तो कम्युनिटी वाला तो बहुत चल रहा है, तो जो सोचते हैं ये कितना करते हैं, उनको एक ही बात याद रखनी चाहिए कि वसुधैव कुटुंबकम की हम भावना रखते हैं, और जो भी ये चीला चालू जो देशवादी और इस तरह से सोच रखते हैं उनको मैं एक ही उदाहरण देना चाहती हूँ कि आप कितने भी मतलब पीसेस कर लो, कितने भी कुछ कर लो, लेकिन हम सबके बीच में जो आत्मा है वो तो हमारे सबके बीच में एक ही है, उसको कैसे अलग कर पाओगे?
0: यूनिवर्स तो एक, बहुत ही खूबसूरत बात, हमारे बीच, हमारे ऊपर जो आत्मा है वो तो एक ही, जो जिसकी छाया है, जिसका जिसकी जिसका साया है हमारे ऊपर, वो तो एक ही है। बहुत ही खूबसूरत बात।
1: तो यूनिवर्स है, तो यूनिवर्स कभी भी देखता नहीं है कि ये मेरा बच्चा छोटा है या बड़ा है, मोटा है या पतला है, गोरा है काला है, कौन सी कम्युनिटी से है, कौन से देश से है। यूनिवर्स एक ही भाषा जानता है, और वो यूनिवर्स यही एक भाषा जानता है, वो है प्यार की भाषा, वो है पॉजिटिविटी की भाषा। और जो लोग बोलते हैं ना कि इस दुनिया में पॉजिटिव और नेगेटिव वाइब्स है, हाँ मैं मानती हूँ पॉजिटिव नेगेटिव्स होते हैं, लेकिन पॉजिटिविटी के पास इतनी ताकत है कि जहां जहां पे पॉजिटिविटी नहीं होती है ना वहां ही नेगेटिविटी होती है। बाकी पूरा सर्वत्र जो राज्य है ना वो तो पॉजिटिविटी का ही है, क्योंकि ऐसे ही राम कृष्ण भगवान बुद्ध और इतने सारे देवी देवता हमारे यहाँ नहीं हो गए हैं, और इतनी सारी आज भी इतनी सारी एनजीओ चलती है, आज भी इतने सारे धर्म भी चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पे आपको मुझे कहीं ना कहीं पे वो डिवाइन पावर चला रहा है। हमारी धड़कने देखो, हमारा पूरा बॉडी देखो, तो किस तरह से चला रहा है, ये तो रोबोट भी बना लिया है, लेकिन किस तरह से हार्ट बीट किस तरह से वर्क करती है वो आज दिन तक साइंटिस्ट नहीं कर पाए किस तरह से। तो ये जो ब्रीदिंग सिस्टम है, तो वो ब्रीदिंग सिस्टम किसकी देन है? यूनिवर्स की देन है, और ये यूनिवर्स चलता है हमारी पॉजिटिव सोच के ऊपर। हम जैसा मांगेंगे ना, हम सबके पास एक अलादीन का चिराग है, और ये अलादीन का चिराग है हमारा यूनिवर्स। और हम मांगेंगे ना कि अरे भाई आज तो मैं दुखी हूँ, चल एक काम कर मैं तो आज दुखी हूँ, तो यूनिवर्स बोलेगा तथास्तु। मैं आज बोलूंगी कि नहीं आज तो मुझे बहुत रॉक करना है, आज तो मुझे बहुत अच्छा अच्छा पार्टी करना है, बहुत अच्छा खाना खाना है, मैं आज बहुत खुश हूँ, यूनिवर्स बोल देगा तथास्तु। आप जिस तरह से सोच बिलीव करोगे कि वो अल्लाह दिन का चिराग है, वो तुरंत ही बोलेगा हुकुम करो मेरे आका। और हम जिस तरह से हुकुम करते हैं कि चलो आज मेरे को दुखी रहना है, चलो हो गया आका, नहीं हुआ आज मुझे खुश होना है, हो गया आका, तो यही बोलेंगे। तो अल्लाह दिन का चिराग है तो उसको किस तरह से यूज करो वो तो फिर हमारे ही हाथ में होना चाहिए ना। हम क्यों किसी को अपना स्टीयरिंग देकर, जिस तरह से मिस्टर खान बोलते हैं, तो हमारे लाइफ के ऊपर कोई भी बैठ जाएगा तो फिर वो अपने हिसाब से गाड़ी चलाने लगेगा और हम पूरी जिंदगी ऐसे ही चलते रहेंगे किसी के कहने पे।
0: तो जैसा सोच वैसी दुनिया, बहुत ही खूबसूरत बात कही आपने। और हमारे साथ इस खास प्रोग्राम में रही कृतिका मेहता, माइंड थेरेपिस्ट और रेकी विशेषज्ञ भी हैं आप, तो बहुत सारी बातें हमने इस एपिसोड में की। कंक्लूड कैसे करेंगी आप इसको, सोच की दुनिया को, अपने शब्दों में?
1: बस सोच की दुनिया में मैं इतना ही छोटे से वाक्य में कहना चाहूंगी कि जिस तरह से आप सोच लेते हो उसी तरह से आपकी दुनिया बन जाती है। और जो विचार आपके अंदर पड़ा हुआ है एक बार उनको ढूंढो और एक बार सच में एक बार मिरर के सामने खड़े होकर बोलो कि क्या यही लाइफ या यही सब कुछ मैं डिजर्व करता हूँ या करती हूँ। अगर सच में अंदर से एक आवाज आए ना नहीं, तो तुरंत अपनी सोच बदल डालो और ये सोच अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखो। जो भी हुआ है किसी और के कारण या परिवार के कारण या सोसाइटी या किसी और के कारण नहीं हुआ है, सिर्फ मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ और अभी मैं इसको मैजिकली चेंज करूंगा या करूंगी। ये चीज अगर आपने ठान ली ना, तो अपने अंदर भी वही राम कृष्ण बुद्ध महावीर बैठे हुए हैं, वो तुरंत उन सबको काम पे लग जाना पड़ेगा क्योंकि बॉस यहाँ पे इसने ठान लिया है कि अभी तो ये हमारे जैसा बनकर रहेगा, ये बंदा या बंदी, तो उसको तो फिर काम पे लग जाना पड़ेगा।
0: बहुत ही खूब बात कही आपने कि दूसरे पे दोषारोपण करना छोड़ के खुद पे आ जाएं और जैसा आप सोचेंगे आपके आसपास की दुनिया आपकी दुनिया वैसी ही होगी। बहुत बहुत बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। बहुत सारी बातें, बहुत सारे प्रश्न फिर भी रह जाते हैं, अगले एपिसोड में हम इन सबको शामिल करेंगे और इस प्रोग्राम को हम क्रमशः जारी रखेंगे। और हमारे साथ रहेंगी माइंड थेरेपिस्ट और खास विशेषज्ञ कृतिका मेहता अहमदाबाद से। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, बहुत आभार कृतिका, आपने इतना अच्छा व्याख्यान दिया इस प्रोग्राम के लिए, हमारे श्रोताओं के लिए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस प्रोग्राम के बहुत सारे एपिसोड होंगे और आप सुनेंगे तो सच में आपको मजा आएगा। पूरी दुनिया से हटके जिस तकनीकी युग में हम जी रहे हैं, उन सबको हमने समेटा है, पूरे यूनिवर्स को इस प्रोग्राम में हमने लिया है। और आप भी सुनेंगे तो फिर सुनना बंद नहीं करेंगे, रुकेंगे नहीं, आप सुनते ही जाएंगे क्योंकि इसमें इतने इंटरेस्टिंग पहलू आने वाले हैं। तो आज का पहला एपिसोड सोच की दुनिया का हमारे साथ हमारे संग इस प्रोग्राम में हम दोनों आपके लिए लेके आए कुछ खास बातें जो हमारे जीवन शैली से संबद्ध है और हमारे जीवन दर्शन को दर्शाती हैं।

आओ झूमें गाएं। आप सुन रहे हैं जयपुर रेडियो, आपकी आवाज आपकी पहचान। आओ झूमें गाएं ग्रुप की ओर से जयपुर रेडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर संजय धवन। कुलभूषण पंडित का जन्म 8 अक्टूबर 1926 में बलूचिस्तान में एक कश्मीरी पंडित परिवार में हुआ। 1940 के दशक में वे वहां से चलकर मुंबई पहुंचे और मुंबई पुलिस में एक सब इंस्पेक्टर के तौर पे नौकरी करी। उनके जूनियर्स ने उनकी शख्सियत को और रुतबे को देखते हुए कहा कि सर, आप तो देखने में एक फिल्म स्टार लगते हैं। ये बात उनके मन को भा गई और उन्होंने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में राजकुमार के रूप में अपना कदम रखा। जी हाँ दोस्तों, आज का कार्यक्रम समर्पित है एक यादगार के तौर पे श्री राजकुमार को। राजकुमार की पहली फिल्म थी रंगीली, लेकिन 1957 में नौशेरवा ने आदिल और मदर इंडिया के रोल्स में उन्हें बहुत ही सराहा गया। तो आइए आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं मदर इंडिया के इस गीत से, जिसे कि गा रहे हैं मनु मृदुल और आभा माथुर।

बहुत खूबी से निभाया आप दोनों ने इस गीत को। चिनाई सेठ जिनके अपने घर शीशे के हों, वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। जी हां, डायलॉग डिलीवरी में राजकुमार ने अपनी एक अद्भुत पहचान बना ली। आज तक लोग उनके डायलॉग्स को याद करते हैं और दोहराते हैं। राजा के गम को किराए के रोने वालों की जरूरत नहीं पड़ेगी चिनाई साहब। 1965 की फिल्म वक्त के ये संवाद बहुत ही लोकप्रिय हुए, तो आइए सुनते हैं इसी फिल्म का एक गीत, आगे भी जाने न तू, पीछे भी जाने न तू, जो भी है बस यही पल है। इसे गा रही हैं जूही सिन्हा।

कोयल सी मधुर आवाज जूही सिन्हा की। ना तलवार की धार से, ना गोलियों की बौछार से, बंदा डरता है तो सिर्फ परवरदिगार से। जहां राजकुमार ने तिरंगा और हिंदुस्तान की कसम जैसी फिल्मों में मैचो रोल्स निभाए, वहां पर 1965 की फिल्म काजल में बहुत ही रोमांटिक रूप में पेश आए। तो आइए सुनते हैं फिल्म काजल का ये गीत, जिसे कि गा रहे हैं सज्जाद खान।

वाह सजाद जी, बहुत ही खूबी से गाया आपने इस गीत को। हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, हमसे जमाना खुद है जमाने से हम नहीं। राजकुमार का ये फेमस डायलॉग दरअसल जिगर मुरादाबादी का एक शेर है। तो आगे बढ़ते हैं काजल फिल्म से ही एक और गीत के साथ, जिसे कि ला रहे हैं डॉक्टर आदेश सक्सेना।

बहुत खूबसूरत डॉक्टर आदेश, काश कि तुमने हमें आवाज दी होती तो हम मौत की नींद से उठकर चले आते। दुनिया जानती है कि जब राजेश्वर दोस्ती निभाता है तो अफसाने लिखे जाते हैं, और जब दुश्मनी करता है तो तारीख बन जाती है। क्या आवाज थी और क्या अंदाज था राजकुमार का। आगे बढ़ते हैं इस गीत के साथ जिसे कि गा रहे हैं ईश्वर। फिल्म का नाम है नीलकमल, गीत के बोल हैं तुझको पुकारे मेरा प्यार।

वाह ईशु, कितना मधुर गाया आपने। प्यार की बात चली तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि राजकुमार का विवाह एक एंग्लो इंडियन लड़की जेनिफर के साथ में हुआ, जो कि आगे चल के गायत्री के नाम से जानी गई। तो इसी बात पे सुनते हैं एक प्यार भरा गीत, जिसे कि ला रहे हैं अनिल झुमका वाला और सूर्यरेखा। फिल्म का नाम है ही रांझा। गीत की बोल है, मेरी दुनिया में तुम आई।

0: तीर का इशारा समझो, अपनी हर दिल का जलाना होगा।
1: तुम बड़ी वो हो, मुझे जाने दो।
0: जा सकोगी?
1: मुझे जाना होगा।
0: जाओ।
1: छोड़ो
0: नहीं,
1: छोड़ो ना।
0: आज की रात तो दिल तोड़ो ना।

सच रोमांटिक सॉन्ग, और कितनी खूबसूरती से गाया अनिल जी और सूर्य रेखा जी ने। फिल्म ही रांझा के गाने बहुत ही लोकप्रिय हुए थे, जिन्हें की संगीतबद्ध किया था मदन मोहन ने, और इनके गीतकार थे कैफी आजमी। तो आइए इसी फिल्म का एक और गीत सुनते हैं, ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, जिसे कि गा रहे हैं डॉक्टर नरेश चावला और डॉक्टर सीमा बजाज।

बहुत ही खूबसूरत आवाजें और उतने ही खूबसूरत गायकी। राजकुमार ना ही केवल अपनी डायलेक्ट डिलीवरी के लिए जाने जाते थे बल्कि अपनी अदाकारी के लिए भी वो काफी फेमस थे। उन्हें 2 बारी फिल्म फेयर अवार्ड से सुशोभित किया गया और 4 बारी फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया। आगे बढ़ते हैं इस गीत के साथ, जिसे कि गा रहे हैं मुकेश चोपड़ा और गायत्री। फिल्म का नाम है लाल पत्थर, गीत के बोल हैं उनके ख्याल आए तो आते चले गए।

और आप दोनों अपनी आवाजों से हमें लुभाते चले गए। आपके पांव देखे बहुत हसीन हैं, इन्हें जमीन पर मत उतारिएगा, मैले हो जाएंगे। 1972 की कमाल अमरोही द्वारा बनाई हाई बजट फिल्म पाकीज़ा का यह डायलॉग था। इस फिल्म में संगीत दिया था गुलाम मोहम्मद ने, इसके गीतकार थे कैफी आजमी। तो आइए सुनते हैं इसी फिल्म से एक गीत जिसे कि गा रही हैं डॉक्टर मनप्रीत खेमका।

0: बहुत ही मधुर आवाज डॉक्टर मनप्रीत की। तो चलते चलते एक और डायलॉग और उसके बाद एक और गीत।
1: खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी रजा क्या है।
0: इन जोरदार संवादों के बाद में एक बहुत ही मधुर गीत लेके आ रहे हैं वत्सला सिंह और उनके साथ दे रहे हैं ईश्वर। गीत की बोल है सिमटी हुई ये घड़ियां।

डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का ये जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, आपकी आवाज़ आपकी पहचान। और अब होगा प्रोग्राम गीतों के सवाल, गीतों में जवाब। और ये जवाब सवाल देने आ रहे हैं पिता और पुत्री, यानी समृद्धि चतुर्वेदी सियाटल यूएसए से और पंकज चतुर्वेदी रांची बिहार से। आइए सुनते हैं ये खास प्रोग्राम।

डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का ये जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, आपकी आवाज़ आपकी पहचान। हमारे अगले प्रोग्राम के लिए कृपया आप थोड़ी सी प्रतीक्षा कीजिए।

0: डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का ये जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, आपकी आवाज आपकी पहचान। गीतों के सवाल, गीतों में जवाब, और इस प्रोग्राम का एपिसोड नंबर 9 यानी 9 नंबर का ये एपिसोड लेके आई हैं सियाटल यूएसए से समृद्धि चतुर्वेदी। आइए सुनते हैं इस प्रोग्राम में। आपका साथ दे रहे हैं रांची के पंकज चतुर्वेदी।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त सियाटल से समृद्धि, और आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे गीतों के सवाल गीतों के जवाब के एपिसोड नंबर 9 में। अब तक हमारे सवाल कुछ जाने पहचाने से थे, कभी किसी से प्यार का जवाब मांगते हुए, कभी किसी की बेरुखी का कारण पूछते हुए, लेकिन इस बार हमने सोचा क्यों न सवालों को थोड़ा सा घुमा दिया जाए, क्यों न कभी दुनिया से पूछा जाए, कभी अपने आप से, कभी अपने सपनों से, और कभी बस प्यार से। तो आज की हमारी महफिल का नाम है सवाल जरा हटके, और आज मेरे लिए यह एपिसोड कुछ ज्यादा ही खास है, क्योंकि आज मेरे साथ इस शो की एंकरिंग करने के लिए मेरे पापा श्री पंकज कुमार चतुर्वेदी भी साथ हैं। आपने उनकी आवाज गीतों में तो सुनी होगी मेरे साथ, आज वह कुछ शब्द अपने बोलेंगे भी और मेरा साथ देंगे एंकरिंग में। आज उन्हीं के साथ इस मंच पर बैठकर गीतों की बात करने का मौका मिल रहा है, तो यह मेरे लिए बड़ी ही खुशी की बात है। और अब कुछ शब्द पापा अपने बारे में बताएंगे।
2: मैं पंकज कुमार चतुर्वेदी आप सबों के सामने अपने को प्रस्तुत करता हूं। रेडियो जयपुर के माध्यम से मैं आप सभी के सामने अपने कुछ गीत, अपने विचारों को प्रकट करने की कोशिश समय समय पर करता रहूंगा। उम्मीद है आप मेरे गीतों को पसंद करेंगे और मेरा उत्साह वर्धन करते रहेंगे। धन्यवाद।
1: और जैसा मैंने आपको पहले ही बताया है कि आज के हमारे सवाल जरा गंभीर हो सकते हैं और जरा हटके हो सकते हैं। तो पहला सवाल यह है कि एक बेटी की कीमत क्या होती है? क्या उसकी कीमत रुपयों में लगाई जा सकती है? क्या शादी उसके जीवन की आखिरी मंजिल है, या फिर उसके अपने सपने, उसकी अपनी पहचान और उसके अपनी उड़ान भी उतनी ही महत्वपूर्ण है? यह गीत जो मैं प्रस्तुत करने वाली हूँ एक बेटी की आवाज में बहुत आत्मविश्वास से कहता है कि मैं किसी के सर का बोझ नहीं हूँ। यह गीत मुझे आज इस शो में शामिल करना इसलिए भी अच्छा लगा क्योंकि इसी हफ्ते 25 सितंबर को इंटरनेशनल डॉटर्स डे है, और आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। बात करते हुए इस गीत की, इस गीत के बोल जो हैं वह यह बताता है कि बेटी की बराबरी, उसकी आजादी, उसकी अपनी पहचान कितनी महत्वपूर्ण है। यह गीत का नाम है मुझे क्या बेचेगा रुपया, जो कि 2012 में टेलीविजन शो सत्यमेव जयते जो कि आमिर खान होस्ट करते थे उसमें प्रस्तुत किया गया था। इसे सोना महापात्रा ने गाया है, संगीत राम संपत का है और बोल स्वनंद किरकिरे के हैं। यह गीत शो के उस एपिसोड से जुड़ा था जिसमें भारतीय शादियों में दहेज और आर्थिक लेन देन की संस्कृति पर चर्चा की गई थी। और दिलचस्प बात यह है कि गीत का केंद्र सिर्फ दहेज मतलब नहीं है, गीत खुद अपनी आवाज में कहती है कि वह किसी के सिर का बोझ नहीं है, वह अपनी जिंदगी का रास्ता खुद चुन सकती है। आइए सुनते हैं।

जब हम इस दुनिया में आते हैं तो हमारी जिंदगी की चुनरी बिल्कुल निर्मल होती है, न कोई दाग, न कोई शिकवा, सिर्फ मासूमियत, सपने और अपनों का प्यार। फिर उम्र बढ़ती है, हम दुनिया को समझने लगते हैं, रिश्तों को पहचानने लगते हैं और जिंदगी हमें तरह तरह के रंग दिखाती है। कुछ रंग होते हैं प्यार के, कुछ विश्वास के, कुछ सफलता के, लेकिन इसी सफर में कभी अनजाने में, कभी परिस्थितियों के कारण और कभी अपनी ही भूलों से उस उजली चुनरी पर कुछ दाग भी लग जाते हैं। तब मन पूछता है, क्या इन दागों को छुपाया जा सकता है? क्या बीते हुए कल को मिटाया जा सकता है? जवाब है हाँ। और इस तरह कि अपनी गलतियों को स्वीकार करें, उनसे सीखें और अपनी आत्मा की उस पवित्रता को फिर से पाने की कोशिश करें जो कभी उसकी पहचान हुआ करती थी। इसीलिए यह गीत केवल एक गीत नहीं, यह जीवन का एक आईना है, एक ऐसी चुनरी की कहानी जो जीवन की धूप छांव से गुजरते हुए रंगीन भी हुई और कहीं कहीं दागदार भी। तो आइए कुछ पल के लिए अपने जीवन की उस चुनरी को याद करें, उसके खूबसूरत रंगों को भी और उन दागों को भी जिन्होंने हमें कुछ न कुछ सिखाया ही है। पेश है फिल्म दिल ही तो है का वो अमर गीत लागा चुनरी में दाग, जिसे महान गायक मन्ना डे साहब ने अपनी आवाज दी थी और रोशन साहब ने जिसका संगीत दिया था। धन्यवाद।

कभी कभी इंसान अपनी पूरी जिंदगी दुनिया को पाने की कोशिश में लगा देता है, नाम, शोहरत, दौलत और पहचान के पीछे भागता है, लेकिन एक दिन ठहर कर जब वह इस दुनिया को देखता है तो उसके मन में एक सवाल उठता है, क्या सचमुच यही वह दुनिया है जिसे पाने के लिए मैंने इतना कुछ खो दिया। जिंदगी की भीड़ में हम बहुत कुछ हासिल कर लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपने भीतर के सुकून को खो देते हैं। इसी बेचैनी, इसी सवाल और इसी कड़वी सच्चाई को गुरुदत्त की फिल्म प्यासा में साहिर लुधियानवी ने एक ऐसी आवाज दी जो आज भी हमारे दिल को झकझोर देती है। यह गीत सिर्फ दुनिया से निराशा की कहानी नहीं, बल्कि उस इंसान की पुकार है जो दुनिया की चमक के पीछे छिपी सच्चाई को पहचान चुका है। मोहम्मद रफी की पुरकश आवाज में ये गीत, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, आपके सामने पेश करता हूँ।

दुनिया से सवाल करना एक बात है, लेकिन अपने भीतर उठने वाले किसी ऐसे भाव को शब्द देना जिसका ठीक ठीक नाम भी हमें मालूम ना हो, वह कुछ और ही बात है। कुछ भाव ऐसे होते हैं जिन्हें हम जानते हैं, महसूस करते हैं, लेकिन कह नहीं पाते, और शायद इसी अनकहे भाव को यह गीत पकड़ता है। मायरी मैं कासे कहूं पीर अपने जिया की, यहाँ पीर को सिर्फ दुख समझ लेना शायद इस गीत को छोटा कर देना होगा। यह भीतर की वह बेचैनी भी है, वह भाव भी है, वह अनुभूति भी है जिसे मन पूरी तरह जानता है लेकिन शब्दों में बांध नहीं पाता। और यही तो प्रेम, आकर्षण और मन की कई गहरी अवस्थाओं की सबसे बड़ी पहेली है। जो बात दिल को सबसे गहरी उतरती है उसे कहने के लिए शब्द सबसे कम क्यों पड़ जाते हैं। गीत के बारे में आपको कुछ बता दूं, यह गीत फिल्म दस्तक जो कि 1970 में रिलीज हुई थी उसमें से है। इसकी आवाज ओरिजिनल लता मंगेशकर ने गाया है, संगीत मदन मोहन का है और गीत मजरूह सुल्तानपुरी का। इसका एक वर्जन और भी रिलीज हुआ है जो कि आपको शायद यूट्यूब पे मिल जाएगा मदन मोहन साहब के चैनल पे, जिसमें उनकी अपनी आवाज में यह गीत उन्होंने गा रखा है और बड़ा ही खूबसूरत गीत है। और मदन मोहन साहब की रचना शैली की एक और खूबी, इस गीत में अलग अलग अंतरों में उन्होंने अलग अलग मेलोडिक आइडियाज इस्तेमाल किए हैं, उनकी रचनात्मकता का यह अच्छा उदाहरण भी है। ये तो हमें पता ही है कि मदन मोहन साहब और लता मंगेशकर की जोड़ी ने एक से एक सुपरहिट गाने हमें दिए हैं। तो आइए आज हम सुनते हैं मैं कासे कहूं पीर अपने जिया की।

और अब हम पहुंचते हैं शायद आज के अपने सबसे दार्शनिक सवाल पर। हम सब कुछ ना कुछ ढूंढ रहे हैं, कभी मंजिल, कभी सफलता, कभी खुशी, कभी वह चीज जिसके बारे में हमें खुद ही ठीक से मालूम नहीं कि वह है क्या। गीत की शुरुआत में एक बच्चा तितली के पीछे भागता है, तितली हाथ नहीं आती तो वह दूसरी तरफ दौड़ता है और गीत एक बहुत खूबसूरत सवाल पूछता है कि जिसे तुम पूरी दुनिया में ढूंढ रहे हो, क्या पता वह तुम्हारे मन में ही हो। फिर जीवन की राहें सामने आती हैं, कहीं धूप है, कहीं मोड़ है, कहीं छाँव का इंतजार है और रास्ता चलता ही जाता है। लेकिन सबसे सुंदर विचार तो अंत में आता है कि सुख और चैन शायद एक ही चीज नहीं है। हम बाहर से बहुत कुछ पा सकते हैं, लेकिन जो भीतर का चैन है वह शायद किसी मंजिल पर पहुंचकर नहीं मिलता। तो यह गीत का यह सवाल नहीं है कि हमारे सपने पूरे होंगे या नहीं, शायद सवाल यह है कि जिस चीज के पीछे हम भाग रहे हैं, क्या वही चीज हमें सच में चैन देगी। यह गीत मैंने लिया है फिल्म लक बाई चांस, जो कि सन 2009 में रिलीज हुई थी। गीत के ना के बोल हैं सपनों से भरे नैना, इसकी आवाज है शंकर महादेवन की, संगीत दिया है शंकर महादेवन ने, एहसान नूरानी ने और लॉय मेंडोसा ने, गीत लिखा है जावेद अख्तर साहब ने और फिल्म है लक बाई चांस, जैसा कि मैंने आपको बताया, जिसको जोया अख्तर ने डायरेक्ट किया है। तो आइए सुनते हैं।

और इतने सारे गंभीर, दार्शनिक और कभी-कभी बिल्कुल अंदर तक उतर जाने वाले सवालों के बाद, अब लगता है आखिरी सवाल को थोड़ा मुस्कुराते हुए पूछना चाहिए, क्योंकि प्यार की दुनिया में कभी-कभी तर्क की तो छुट्टी भी हो जाती है। और अब मैं आपके सामने लेकर गाई हूं अभी बड़ा ही वायरल हुआ हुआ गीत, काए जिद कर रही काए खुमर रही। तो ये गाना है बड़ा प्यारा और जरा हटके भी है और सवालों से भरा हुआ है, तो बिल्कुल परफेक्ट बैठता है हमारे इस शो के लिए। और गाने में जो कहानी सुनाई गई है, पता नहीं कितनी सच बात है कितनी झूठ बात, मगर बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में इस कहानी को दर्शाया गया है। जो फोक टच दिया गया है इस गाने में, जो शब्द यूज किए गए हैं, जो गाने की जो पूरी बनावट है वो बहुत ही अलग है, बड़े ही मजेदार। कि पार्वती जी जिद पर आई हुई हैं, सप्तऋषि उनको मनाने के लिए आए हुए हैं, और वो शिव जी की कमियां भी गिना रहे हैं और पार्वती जी का विश्वास उतना ही अडिग नजर होता हुआ आ रहा है। यानी आज का आखिरी सवाल ये है कि जब दिल ने अपना वर चुन ही लिया हो तो दुनिया की पूरी सलाह भी क्या ही कर सकती है। यह गीत काफी नया है मगर मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने सुना होगा। यह गीत है फिल्म हनुमान अंश का और गीत को गाया, लिखा, कंपोज किया है साधु तिवारी जी ने, और कंपोजिशन में साधु तिवारी और समीरन दास दोनों ही शामिल हैं। यह अभी 2026 में अगस्त सितंबर बिल्कुल हाल फिलहाल में रिलीज हुई है। इस गीत की खासियत इसकी लोक भाषा वाली चुटकीली अंदाज है और जो शब्द हैं वो शब्द शुद्ध हिंदी नहीं है, काए मुड़िया बिन्नू ऐसे शब्द इस्तेमाल किए गए हैं जो कि इस गाने को बड़ा ही मजेदार बना देती है। इस गाने को ऑफ कोर्स हमने थोड़ा ट्विस्ट दिया है क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग है, वायरल है अभी, और सच में गाने में काफी मजा आता है इस गाने को, और सुनने में भी ऑफ कोर्स। तो मैंने और मेरे पापा ने मिलके इस गाने को गाने की कोशिश की है, आइए सुनते हैं।

खपरह ना छपरह ना भूत की डार मड़ैया का खावे का धरो वहां बस रोवत रहत लड़ैया। ना खपरह ना छपरह ना भूत की डार मड़ैया का खावे को धरो वहां बस रोवत रहत लड़ैया। बेस धरे अवधूत फिरे अब तुमसे का कह बिन्नू डोरा डांगर ले घूमे वे इनके कछुए नैया वे इनके कछुए नैया। कै जिद कर रही

0: बम भोले, भोले बम भोले।
1: आशा करती हूँ आज का हमारा शो एपिसोड 9 जो कि था सवाल जरा हटके, आपको पसंद आया होगा। आप प्लीज अपने फीडबैक्स देना हमें ना भूलें। आप हमें फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, हमें प्रोत्साहित कर सकते हैं, और आपके फीडबैक हमारे लिए बेहद जरूरी है। आप हमें बता सकते हैं कि हम अपना शो कैसे इम्प्रूव करें, या आपको हमारे शो की क्या चीजें पसंद आती हैं। तो आशा करती हूँ आज आपको अच्छा लगा होगा सुन के हमें, और इजाजत दीजिए, अगले वीक फिर से मिलते हैं। धन्यवाद।
2: हमें उम्मीद है आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। मैं रेडियो जयपुर को और सभी प्रबुद्ध श्रोताओं को अपनी तरफ से और अपनी मेधावी पुत्री समृद्धि की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और ये अपेक्षा रखता हूँ आप सभी से कि हमारे कार्यक्रमों के विषय में आप अपने विचार हमें बताते रहेंगे, ताकि हम उसमें और भी आगे अच्छा करने का प्रयास करते रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमें उम्मीद है।

1998 में एक ऐसी फिल्म भी रिलीज हुई जिसके हीरो हीरोइन ने पूरी फिल्म भर एक दूसरे से बात नहीं की, पर अभिनय बेहतरीन किया। हीरो थे सलमान खान और हीरोइन थी ट्विंकल खन्ना, और फिल्म का नाम था जब प्यार किसी से होता है। इस फिल्म का संगीत भी खूबसूरत बन पड़ा था, और जतिन ललित निर्देशित कुमार सानू और लता मंगेशकर का ये गीत आज भी हमारे जहन में गूंजता रहता है। इसी गीत के भाव को पेश करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं श्रुति और विकास को।

दोस्तों, गीतों के इस दौर को अब अंजाम देना चाहूंगा एक ऐसी फिल्म के गीत से जिसे आज की पीढ़ी का रोमांटिक क्लासिक माना जाता है। आदित्य चोपड़ा इस फिल्म में टॉम क्रूज को लेकर इंडो अमेरिकन अफेयर पर आधारित स्टोरी लाइन रखना चाहते थे, मगर यश चोपड़ा साहब इसके पक्ष में नहीं थे, लिहाजा सैफ अली खान को अप्रोच किया गया, मगर उन्होंने भी फिल्म ठुकरा दी। और डर फिल्म की तरह बड़े सितारों की ठुकराई ये फिल्म आ गिरी शाहरुख खान की झोली में। अमूमन दो बड़े डायरेक्टर अपनी फिल्में एक साथ रिलीज नहीं करते, मगर डेविड धवन साहब ने दिवाली पे हुई डीडीएलजी की रिलीज को चैलेंज किया अपनी फिल्म याराना से, जिसकी फीमेल सुपरस्टार माधुरी दीक्षित के कारण चलने की संभावना कहीं ज्यादा थी। नतीजा, बच्चन साहब के बाद की कोई भी याराना पब्लिक को याद नहीं है। डीडीएलजे का बॉक्स ऑफिस पे 7000 दिन तक चलने का अनब्रोकन रिकॉर्ड बना और इसका मुख्य किरदार राज आज भी लोगों के दिलों पे राज कर रहे हैं। रही बात सैफ और डेविड धवन साहब की, तो आज भी अपने आप को समझा रहे होंगे कि बड़े बड़े कलाकारों से छोटी छोटी मिस्टेक्स तो होती रहती हैं सेनोरिटा। दोस्तों, गजर के इशारे अब रुकने नहीं देंगे, इसलिए अब मैं गगन माथुर आपसे इजाजत चाहता हूं, इस उम्मीद के साथ कि 90s के सुहाने सफर के बाद आपका दिल भी उस दौर में खो जाएगा और जुबान पर भी वही बोल होंगे जो आज के आखिरी गीत में डॉक्टर सुजा और मेरी यानी गगन माथुर की जुबान पे हैं।

0: वाह, बेहतरीन प्रस्तुति। दोस्तों, ख्वाहिश तो यही है कि आपके साथ जुड़े रहें, पर समय हमें रोक रहा है। वक्त है आपसे विदा लेने का। आशा करता हूं कि आज की पेशकश आपको पसंद आई होगी। जाते जाते आओ झूमे गाएं ग्रुप की ओर से मैं आप सभी का और जयपुर रेडियो का धन्यवाद करता हूं।
1: लफ्ज लफ्ज बंध गया जिंदगी के साथ, जयपुर रेडियो लाया आपके लिए नित नई सौगात।
2: आपकी आवाज का जादू, कैसे रहे खुद पर काबू। जयपुर रेडियो, आपकी पहचान।
3: कहीं भी सुनिए, कभी भी सुनिए, यह है जयपुर रेडियो। अब आपका रेडियो आपके हाथ में। आप घर में हो या दफ्तर में, बाजार में हो या कहीं और,

0: अब आपका रेडियो हमेशा आपके साथ है, तो फिर देर किस बात की। फोन उठाइए और डाउनलोड कीजिए जयपुर रेडियो का ऐप, जहां आपको मिलेगा नॉनस्टॉप एंटरटेनमेंट।
1: डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का ये जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, आपकी आवाज आपकी पहचान। आज के इस खास प्रोग्राम में प्रस्तुत है रिश्तों की डोर का ये खास एपिसोड, और इस एपिसोड को लेके आई हैं सियाटल यूएसए से हमेशा की तरह आपकी आरजे स्मृति चतुर्वेदी। तो आइए सुनते हैं ये खास प्रोग्राम रिश्तों की डोर। कहां है इसका छोर बताएंगी स्मृति अपने पापा के साथ।
2: नमस्कार दोस्तों, सियाटल से मैं समृद्धि आप सभी का फिर से स्वागत करती हूं हमारे प्यारे से प्रोग्राम जिसका नाम है गीतों के सवाल और गीतों के जवाब की कड़ी नंबर 7 में, यानी कि एपिसोड नंबर 7। अरे वाह, देखते ही देखते हमारा सफर एक महीने से ऊपर हो गया, पता भी नहीं चला। तो आज हम बात करेंगे रिश्तों की। अब तक हमने इस सफर में प्यार के कई रंग देखे हैं। कभी पूछा कि प्यार क्यों होता है, कभी किसी की आंखों में सवाल ढूंढे, तो कभी किसी की तारीफ की। लेकिन आज हम प्यार से थोड़ा आगे चलते हैं। आज बात होगी रिश्तों की, क्योंकि हर रिश्ता प्यार नहीं होता और हर प्यार को कोई नाम देना भी जरूरी नहीं होता। कुछ रिश्ते खून के होते हैं, कुछ शादी से बनते हैं, कुछ दोस्ती से, और कुछ बस बन जाते हैं। ना कोई नाम, ना कोई वादा, ना कोई रिश्ता तय करने वाला कागज, बस एक अपनापन, एक समझ, जैसे कि हमारा और आपका रिश्ता है ना। एक ऐसा एहसास भी होता है जिसमें रिश्तों को नाम दे के बांधना उनकी उसमें नाइंसाफी होगी। कभी कभी लगता है कि एक बड़े ही प्यारे गीत के लाइंस बोल रही हूँ कि हाथ से छूकर कोई रिश्तों को इल्जाम ना दो। कुछ रिश्ते अनाम ही अच्छे लगते हैं, लेकिन रिश्ते हमेशा इतने सरल भी नहीं होते। कुछ लोग हमारी जिंदगी में आते हैं, कुछ दूर तक हमारे साथ चलते हैं, और फिर कभी किसी मोड़ पर रास्ते अलग भी हो जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं रिश्तों की इसी थोड़ी अजीब, थोड़ी खूबसूरत और कभी कभी थोड़ी स्वार्थी दुनिया से। आज के हमारे पहले गीत के बारे में आपको कुछ जानकारियां दे दूं। तो यह गीत है फिल्म पेज 3 का, जो कि वर्ष 2005 में रिलीज हुई थी। इसकी गायिका है लता मंगेशकर, गीतकार है संदीप नाथ और संगीत दिया है शमीर टंडन ने। इस गीत के बारे में एक दिलचस्प बात यह है कि लता मंगेशकर ने गाया है और संगीतकार शमीर टंडन के लिए लता जी के साथ काम करना अपने आप में एक सपने जैसा था। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्होंने गीत जब लता जी को भेजा तो लता जी ने अपने परिवार वालों से चर्चा करने के बाद इस गीत को सहमति दी। और गीत रिश्तों की कोई मीठी तस्वीर नहीं बनाता, कहता है दो पल मिलते हैं साथ साथ चलते हैं, जब मूड आए तो बच के निकलते हैं। कितनी सच्ची पर शायद कड़वी बात है यह। हम अक्सर रिश्तों को उनकी उम्र से मापते हैं, कितने साल से जानते हो, कितने साल के साथ रहे हो, लेकिन कभी कभी कोई इंसान कुछ ही समय के लिए आता है और फिर भी जिंदगी का कोई हिस्सा हमेशा के लिए बदल जाता है। शायद इसीलिए रिश्ते कितने लंबे थे, इससे ज्यादा जरूरी यह है कि वह कितने सच्चे थे। तो आइए सुनते हैं

और अब रिश्तों की इस पूरी दुनिया में कोई रिश्ता ऐसा है जिसमें शिकायत भी प्यार है और शरारत भी प्यार, तो वह रिश्ता है माँ और बच्चे का रिश्ता। माँ के लिए बच्चा कभी चांद होता है, कभी सूरज, और कभी इतना नटखट कि बस पूछिए ही मत। लेकिन यही तो उस रिश्ते की खूबसूरती है, जिससे हम सबसे ज्यादा परेशान होते हैं, अक्सर वही हमारे दिल के सबसे करीब होता है। यह प्यारा सा गीत फिल्म अमर प्रेम का है, जो कि वर्ष 1972 में रिलीज हुई थी। गायिका लता मंगेशकर, गीतकार आनंद बख्शी, संगीत आर डी बर्मन का। यशोदा की शिकायत

सुनिए। कृष्ण की शरारतें खत्म ही नहीं होती, लेकिन शिकायत के पीछे भी जो प्यार है वह हर पंक्ति में झलकता है। उसे नजर से बचाना है, उसे अपने पास रखना है, उसकी हर शरारत पर नाराज भी होना है, और उसी शरारती बच्चे को देखकर मुस्कुराना भी है। शायद माँ बच्चे का रिश्ता यही है, तुम मुझे कितना भी सता लो, कितना भी परेशान कर लो, तुम मेरे ही हो। तो सुनते हैं

और माँ की तरह पिता का रिश्ता भी सिर्फ आज की कहानी नहीं होता। एक पिता जब अपने बच्चे को देखता है तो शायद उसे सिर्फ वो छोटा सा बच्चा दिखाई नहीं देता, उसे उसका आने वाला कल भी दिखाई देता है। आज उंगली पकड़कर चलवाना और शायद कल उसी बच्चे का हाथ पकड़कर अपनी राह तय करना, यानी रिश्ते सिर्फ हमें जोड़ते नहीं, वक्त के साथ अपनी भूमिकाएं भी बदलते हैं। हमारा अगला गीत फिल्म एक फूल दो माली का है, जो कि वर्ष 1969 में रिलीज हुई थी। इसके गायक हैं मन्ना डे, गीतकार प्रेम धवन और संगीत रवि ने दिया है। यह गीत सुनते हुए एक पिता की आंखों से अपने बच्चे को देखना बहुत खूबसूरत लगता है। बच्चा आज उसकी गोद में है, कल बड़ा होगा और एक दिन शायद वही बच्चा उस पिता का सहारा बनेगा। यानी रिश्ता सिर्फ यह नहीं कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, बल्कि यह भी कि एक दिन तुम मेरा भी ख्याल रखोगे। और शायद यही परिवार की सबसे सुंदर परंपरा है, प्यार एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलता रहता है। सुनते हैं पंकज चतुर्वेदी की आवाज में

लेकिन हर रिश्ता हमें दिखाई दे जरूरी तो नहीं। कुछ रिश्तों को आंखों से नहीं बस महसूस किया जाता है, जैसे कि भगवान या ईश्वर और उनके दर्शन अभिलाषियों का। हम भगवान को देख तो नहीं सकते, पर हम उन्हें शायद महसूस कर सकते हैं। और कहते हैं ना, भगवान ने अपनी छवि में माँ को भेजा है इस धरती पे हमारा ख्याल रखने। हमारा अगला गीत जो है वह है पिक्चर दादी माँ का, जो कि वर्ष 1966 में रिलीज हुई थी। इसके गायक हैं मन्ना डे और महेंद्र कपूर, गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी और संगीत रोशन का है। जिसे देखा नहीं उसे जाने कैसे, इस गीत का जवाब किसी दर्शन की किताब में नहीं मिलता। और माँ का रिश्ता यहाँ सिर्फ माँ बेटे का रिश्ता नहीं रह जाता, वो बन जाता है ममता का प्रतीक, सुरक्षा का प्रतीक, उस अनदेखे भरोसे का प्रतीक जिसे हम देख नहीं सकते लेकिन जिनके होने पर कभी शक भी नहीं होता। और शायद रिश्तों की यही सबसे बड़ी खूबसूरती है। तो आइए सुनते हैं मेरे और मेरे पिताश्री की आवाजों में उस

और अब माँ पिता बच्चा, हमने उन रिश्तों की बात तो कर ली जो कि जीवन हमें दे देता है, लेकिन जिंदगी एक सफर भी है और इस सफर में बहुत से लोग हमारे साथ चलते हैं, कोई कुछ दूर, कोई बहुत दूर और कोई शायद पूरी यात्रा। लेकिन क्या कोई सचमुच हमेशा हमारे साथ रहता है? यही सवाल हमें अगले गीत तक लेके आता है। हमारा आज का पांचवा गीत फिल्म गाइड का है, जो कि वर्ष 1965 में रिलीज हुई थी। गायक एसजी बर्मन, गीतकार शैलेंद्र और संगीत भी एसजी बर्मन ने दिया है। यह गीत रिश्तों को घर से निकालकर जिंदगी के बहुत बड़े कैनवस पर ले जाता है। हम कहते हैं मेरा परिवार, मेरा दोस्त, मेरे अपने, लेकिन जिंदगी का सफर हमें धीरे धीरे सिखाता है कि हर मुसाफिर की अपनी अलग मंजिल होती है। कुछ लोग साथ चलते हैं, कुछ रास्ते में बिछड़ जाते हैं, और फिर भी उनकी मौजूदगी हमारी कहानी का हिस्सा बन जाती है। एसजी वर्मन की अपनी आवाज में यह गीत किसी उपदेश जैसा लगता है, लेकिन लगता है जैसे कोई अनुभवी मुसाफिर चलते चलते बस इतना कह रहा हो, सोच जरा इस सफर में सचमुच तेरा कौन है। सुनते हैं पंकज जी की आवाज में।

और अब इतने सारे रिश्तों के बीच घूमते घूमते हम फिर उसी सवाल पर आ गए हैं कि आखिर रिश्ता क्या होता है। माँ, पिता, बच्चा, दो दोस्त, दो परिवार, दो अजनबी। अब जो मैं अगला गीत लेकर आई हूँ उसके बोल हैं, यह रिश्ता क्या कहलाता है। आपने शायद इसी नाम का एक फिल्मी गीत भी सुना होगा जो कि मूवी मीनाक्षी और टेल ऑफ थ्री सिटीज का है, लेकिन आज मैं वह गीत नहीं बजा रही हूँ। मैं लेकर आई हूँ एक धारावाहिक यानी कि टीवी सीरियल जिसका नाम है यह रिश्ता क्या कहलाता है का टाइटल सॉन्ग। इसे अलका याग्निक जी ने गाया है और इसके पीछे थोड़ी कहानी और थोड़ी फिलॉसफी है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। अब हम सब जुड़े हुए हैं जयपुर रेडियो से और ये जो धारावाहिक है उसकी कहानी शुरुआत हुई थी उदयपुर से, जो कि जयपुर के थोड़े पास ही है। अब हम थोड़े ग्लोबल हो गए हैं तो उदयपुर जयपुर तो खैर पास ही बोलेंगे। और खास बात यह है कि यह शो एक दशक से भी ज्यादा से चलता आ रहा है। माफ कीजिएगा, मैं उस शो को प्रमोट नहीं कर रही यहाँ पे, बट मैं उसके पीछे की कहानी से बता रही हूँ आपको कि वह शो जनवरी 2009 से शुरू हुआ था और अभी 2026 में भी जारी है और मेरी माताश्री उसको एक दशक से भी ज्यादा से देखती आ रही है। जरा सोचिए, जब उन्होंने इसे देखना शुरू किया था तो मैं अपनी जिंदगी के बिल्कुल अलग पड़ाव पर थी। मैं स्कूल या कॉलेज में थी और मैं उनको छेड़ती थी कि क्या ये सास बहू के सीरियल देखते रहती हो जो साल भर साल आगे ही नहीं बढ़ती कहानी, बस वही घूम रही है कहानी और अभी भी चल रहा है। लेकिन शायद यही रिश्तों की एक बहुत दिलचस्प किस्म है, दर्शक और कलाकारों का रिश्ता। हम उन्हें व्यक्तिगत रूप से नहीं जानते, वे हमें नहीं जानते, फिर भी सालों तक हम उनके साथ हंसते हैं, रोते हैं, उनकी शादियां देखते हैं, उनके परिवार बढ़ते देखते हैं, उनके बच्चे बड़े होते देखते हैं और धीरे धीरे वे हमारे घर का हिस्सा बन जाते हैं। खून का रिश्ता नहीं है, फिर भी एक अपनापन है। कुछ वैसा ही रिश्ता मैं जयपुर रेडियो और अपने लिसनर्स के बीच में महसूस करती हूँ। आप मुझे शायद व्यक्तिगत रूप से नहीं जानते, मैं आप सबको नहीं जानती, लेकिन जब आप बार बार लौट कर हमारे साथ ये गीत सुनते हैं, जब आप अपने फीडबैक देते हैं, किसी गीत की फरमाइश करते हैं या बस चुपचाप सुनते हैं, तो एक रिश्ता तो बन ही जाता है। और मेरा दिल इसी उम्मीद में है कि जिस तरह मेरी माँ और इस सीरियल का रिश्ता एक दशक से ज्यादा है, वैसे ही जयपुर रेडियो और हमारे लिसनर्स का रिश्ता भी साल दर साल और मजबूत होता जाए। और इस रिश्ते को कोई नाम देने की कोशिश ना करे, बस महसूस कीजिए, क्योंकि शायद आज के पूरे सफर के लिए इससे बेहतर आखिरी सवाल हो ही नहीं सकता। ये रिश्ता

आप सुन रहे थे प्रोग्राम रिश्तों की डोर, और इस प्रोग्राम को प्रस्तुत कर रही थी अमेरिका सियाटल से स्मृति चतुर्वेदी। आपकी आवाज आपकी पहचान का ये सुरीला प्रोग्राम यहीं तक।

0: आप सुन रहे हैं जयपुर रेडियो, आपकी आवाज आपकी पहचान।
1: मौसीकी की दुनिया के दोस्तों, मैं गगन माथुर जयपुर रेडियो और आओ झूमे गाएं की ओर से आपका इस्तकबाल करता हूँ।

0: लता जी के इस खूबसूरत टाइमलेस गीत को शबाना आजमी के प्लेबैक के लिए रिकॉर्ड करके अपने बॉलीवुड करियर की शुरुआत की एक ऐसी मुतरिबा ने जिनके गले में ही नहीं बल्कि नाम में भी सरस्वती का वास था। शारदा नाम की इस लड़की ने 46 भाषाओं में 50,000 से भी ऊपर गीत हमें दिए और आगे जाकर कविता कृष्णमूर्ति के नाम से जानी गई। तो आइए इस कार्यक्रम का शानदार आगाज करते हैं प्रेरणा और काकोली की मदद से, जो कविता जी का एक ऐसा गीत सुनाएंगी जिसने श्रीदेवी जैसी अदाकारा को हमेशा के लिए हवा हवाई ब्रांड दे दिया। इस गीत से श्रीदेवी की छवि ऐसी जुड़ी कि सिंगापुर के मैडम टुसॉड्स में भी श्रीदेवी जी का वही गेटअप रखा गया है जो कि इस गीत में था। प्रेरणा और काकोली।
1: हवा हवाई।

हवा हवाई कविता जी का पहला पहला हिट नहीं था। 1985 में जब उन्होंने एक बच्चे के माध्यम से मिथुन दास से कहा, तुमसे मिलकर ना जाने क्यों, उसी समय उनकी आवाज फिल्म के हीरो और पिक्चर हॉल में बैठे सभी ऑडियंस के दिलों को छू गई थी। पर क्योंकि इस गाने के डुएट वर्जन को लता जी ने गाया था, कविता जी का नाम कहीं पीछे गुम हो गया। मगर भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। 2 साल बाद आए हवा हवाई, जिसने श्रीदेवी और कविता कृष्णमूर्ति दोनों को ही अपनी अपनी जगह स्टार बना दिया। 1998 में एक डब्ड फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे रिकॉर्ड 14 करोड़ रुपए कमाए। उस फिल्म का नाम था बॉम्बे और उसकी पटकथा में जान डालने का काम किया था एक गीत ने, जिसे गाया था हरिहरन साहब और कविता जी ने। तो आइए इसी गीत से इस कार्यक्रम का दिल छूने के लिए बुलाते हैं धनश्री और अभिषेक को।

कविता जी सेंट जेवियर कॉलेज बॉम्बे से पढ़ी हैं और उसके म्यूजिकल फेस्टिवल मल्हार में उनकी मुलाकात हुई रानू मुखर्जी से। रानू ने मिलवाया अपने पिता लीजेंडरी हेमंत कुमार साहब से। हेमंत कुमार उनकी संगीत में पकड़ से बहुत प्रभावित हुए और उन्हें अपनी लाइव परफॉर्मेंसेस के ट्रूप में शामिल कर लिया। यहाँ पे वो मन्ना डे साहब की नजर में भी आ गई और उन्होंने उन्हें एड जिंगल्स गाने का मौका दिया। शायद इसी प्रकार के विविध अनुभवों से आई वर्सेटैलिटी का उदाहरण है कविता जी का वो गीत जिसे रमेश सिप्पी साहब ने बनवाया था फिल्म राम की सीता श्याम की गीता के लिए, मगर मुकुल आनंद ने मांग लिया अग्निपथ के लिए और प्रयोग किया फिल्म हम में। इस गीत की प्रेरणा है एक जर्मन गीत ये के निमो ये के जिसपे बप्पी लहरी साहब भी एक गीत बना चुके थे, लिहाजा कंट्रोवर्सी हुई। मगर आज देखें तो लगता है कि अगर ये गीत रिलीज ना होता तो हिंदुस्तानी जनता एक यूनिक म्यूजिक एक्सपीरियंस से महरूम रह जाती। मगर ये गीत रिलीज हुआ और उसे यहाँ पेश करने आ रहे हैं प्रियंका और राजेंद्र।

0: इस वर्ल्ड का ये जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, आपकी आवाज आपकी पहचान। प्रस्तुत है प्रोग्राम गीत गाथा। जी हां, आज इस प्रोग्राम में हमारे साथ हैं अपनी गजलों को लेके, अपनी गजलों के साथ भुवनेश्वर उड़ीसा से डॉक्टर गाथा मोहंती। वेलकम है डॉक्टर गाथा आपका आज के
1: बहुत शुक्रिया
0: आज के इस खास प्रोग्राम में, और आपको आज के दिन की ढेरों शुभकामनाएं। आज होली भी है,
1: थैंक यू सो मच,
0: और महिला दिवस भी है। इन दोनों दिवस की शुभकामनाएं एक साथ आपको। और हमने सुना था या आपने कहा था कि हम रंग नहीं खेलते, और जब हमने आपके घर में झांक के देखा तो आप से रंग खेल रहे थे। तो रंगों की इस दुनिया के बारे में आप क्या कहेंगी? आप कौन सा कलर पसंद करती हैं, और रंग जीवन में कितने जरूरी हैं?
1: नमस्ते व्यास जी, और सारे श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कार। आज वुमेन्स डे है, इसलिए सारी महिलाओं को बहुत बहुत बधाई वुमेन्स डे के इस अवसर पर, और होली की शुभकामनाएं सबके लिए। मुझे सबसे प्यारा कलर तो कॉपर सल्फेट ब्लू लगता है, और जब रंगों की बात हो तो लाइफ कलरफुल होनी चाहिए, तो मेरी भी लाइफ, मैं चाहती हूँ कि कलरफुल ही रहे, सारे रंग हो उसमें, खुशी के भी रंग हो, दुख के थोड़े से रंग तो है ही सबके लाइफ में। और बाकी बेटे के साथ थोड़ा सा खेला, बहुत ज्यादा नहीं।
0: बिल्कुल खेला तो ना, और बहुत
1: जी,
0: थोड़ा ही बहुत होता है। यदि हमारे मन में बहुत है कलर तो फिर सारी दुनिया रंगीन नजर आती है। तो
1: जी,
0: बहुत ही खूबसूरत आप गाती हैं, और जब आप गाती हैं तो उसके बाद किसी और को सुनने का मन नहीं होता। इतना मन से कैसे गा लेती हैं आप जब गजल गाती हैं? खासकर बहुत दिल से गाती हैं, और पेशे से आप अपना परिचय दें और हम श्रोताओं को बताएं तो आप डॉक्टर हैं, और उसके बाद जब गजल गाता है तो गजल की एक दुनिया होती है और गजल गाने वाले की एक दिल की दुनिया अलग होती है। उस दुनिया में और आज के यथार्थ की दुनिया में आप कैसे फर्क करती हैं, और उस फर्क के बाद उसमें कैसे मेल कर सकती हैं, उसमें कैसे कोऑर्डिनेशन बैठाती हैं, कैसे उसके साथ चलती हैं लाइफ में?
1: जी, बहुत सही कहा आपने, एक रियलिस्टिक दुनिया है, और गजल जब आप गाते हो तो एक अलग ही दुनिया चली जाती है, आपको लेके जाती है गजल। और बचपन से मैं सुनती आ रही हूँ बहुत सारे गजल्स, और गाती भी थी, लेकिन हमेशा यही सोचती थी कि जब गजल गा रहे हो गाना तो अच्छे से आना चाहिए, लेकिन उसके साथ वो फील भी आनी चाहिए। एक दुख जो दर्द है वो गजलों में, कि सुन के वो दर्द आ जाए पूरा, तो वो होना चाहिए आपकी आवाज में। सो उसको लाते लाते थोड़ा समय तो लगता है, पता नहीं अब श्रोता ही बता पाएंगे कि किस तरह से मैं गाती हूँ और वो फील मैं ला पाती हूँ या नहीं। तो आई जस्ट ट्राई टू डू इट, और हाँ, जब गाती हूँ वो तो अलग ही दुनिया में लेके जाता है, एंड इफ यू डोंट गो टू दैट लेवल यू कांट गेट द फील ऑफ द गजल। सो ट्राई करती रहती हूँ कि अच्छे से गा पाऊँ। और गजल के लिए डिक्शन जो है उर्दू, वो अभी तक बहुत अच्छे से नहीं हो पाया है, लेकिन मैं ट्राई करती हूँ कि थोड़ा थोड़ा हो जाए उर्दू उसके लिए।
0: जी, कई बार सुनते सुनते आपको ऐसा लगता है कि आप गजल को गा रही हैं या गजल आपको गा रही हैं, दोनों में एक रस हो जाता है, ऐसा सामने होता है। बहुत ही मन से, जब दिल से किसी चीज को हम पुकारते हैं, गाते हैं, तो ऐसा ही होता होगा, अक्सर हमारा ऐसा मानना है। तो पहली कौन सी गजल आप हमारे श्रोताओं को आज सुनाने वाली हैं?
1: आज श्रोताओं के लिए पहला गजल जो है फेस टू फेस एल्बम है जगजीत सिंह जी का, और जिसको खामोश गजीपुरी जी ने लिखा हुआ है, देरो हरम में बसने वालो
0: महखानों में फूट न डालो। तो आइए सुनते हैं ये खूबसूरत गजल।

0: बहुत ही खूबसूरत गजल दैरो हरम में बसने वालों महखानों में फूट न डालो। आप सुन रहे हैं डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का लाइव शो गाथा गजल और हमारे साथ हैं भुवनेश्वर उड़ीसा की गजल गायिका डॉक्टर गाथा महंती। एक बार फिर वेलकम है इस लाइव शो में डॉक्टर गाथा आपका।
1: बहुत ही
0: खूबसूरत गजल हमने सुनी आपकी और गजल यूं ही नहीं गाई जाती, गजल यूं ही नहीं गाई जाती, गजल के लिए पसीने को लहू किया जाता होगा तब गजल दिल तक पहुंचती है। और आप ऐसा ही ऐसी कौन सी कोशिश करती हैं, कौन सा प्रयास करती हैं कि गजल अपने रूप में हमें स्वरूप दिखाई देती हैं?
1: जी, कोशिश तो नहीं रहती है, लेकिन यही रहती है कि जब जो लिरिक्स है गजल की, जिसने लिखा हुआ है, उसने क्या सोच के किस तरह से हकीकत को अपने पेन से लिखा हुआ है वो सोचती हूँ। जैसे एक गजल है, उसका मतलब एक पैरा अगर सुना जाए, जैसे गांठ अगर लग जाए तो फिर रिश्ते हो या डोरी, लाख करे कोशिश खुलने में वक्त तो लगता है। ये तो सच्ची है ना, कोई भी रिश्ता हो या डोरी हो, अगर उसमें गांठ लगे तो एक रिश्ता बनाने में जितना टाइम लगता है, उसको अगर टूट जाए तो उसको फिर से जोड़ने में जो डेडिकेशन चाहिए या तो जितना टाइम लगता है वो बहुत ज्यादा होता है। सो वो उसको फील करना होता है कि अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है तो आप वही फील ला सकते हो, अगर नहीं भी हुआ है तो अगर किसी के साथ होते हुए देखा है तो वही फील लानी चाहिए। मैं तो वही सोचती हूँ, बाकी गजल जो गाते हैं उनका सोच भी मेरे से परसों और अलग होगा।
0: बिल्कुल।
1: सो
0: बहुत ही खूबसूरत बात कही आपने। और ऐसी कौन सी गजल है जिसमें गांठ लग जाए अगर
1: जी
0: तो वैसी ही गजल सुना दीजिए ना।
1: जी जी, प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है, ये वही एल्बम से है।

0: प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। जिस्म की बात नहीं थी, उनके दिल तक जाना था। लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है। प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गाथा ए गजल और हमारे साथ हैं डॉक्टर गाथा महंती भुवनेश्वर उड़ीसा से। वेलकम है एक बार फिर इस प्रोग्राम में, इस खास प्रोग्राम में डॉक्टर गाथा आपका।
1: जी शुक्रिया।
0: बहुत ही खूबसूरत गजल हमें सुनने को मिली, हमारे लिसनर्स को सुनने को मिली। और आपने कभी खत लिखा? क्योंकि आजकल तो खत का जमाना नहीं है, लेकिन
1: नहीं लिखा हुआ है।
0: लिखा हुआ तो उसमें, उसमें वक्त भी लगाया आपने?
1: हाँ, वक्त तो लगा था।
0: पूरी तरह से लिख पाई थी या कुछ रह गया था?
1: नहीं, शायद लिख लिया था।
0: लिख लिया। चलिए, बहुत शुभकामनाएं। बहुत शुभकामनाएं, अच्छी बात।
1: थैंक यू।
0: तो इतना खूबसूरत जो है आपने अपने स्वर में आपने इस गजल को गाया है और महसूस करके गाया है, उसको सुन के बहुत अच्छा लगा। हम चाहेंगे कि उस खत के बारे में, क्योंकि उस खत को जब आपने पहली बार कोई आदमी करता है कोई काम, तो उसको भूलता नहीं है, तो आप भी
1: हाँ जी
0: बिल्कुल नहीं भूल पाएंगी, भूल पाई होंगी। हमारी जैसी सोच है, यदि आप ऐसा ही करती हैं या सोचती हैं तो आप भी नहीं भूल पाई होंगी। तो कौन सी गजल हमारे श्रोताओं को?
1: जो नेक्स्ट गजल है वो इसी के बारे में ही है। आपको भूल जाए हम इतने तो बेवफा नहीं, चित्रा जी ने गाया हुआ है। एक लाइव कॉन्सर्ट हुई थी 1988 में।
0: आपसे गिला है? आपसे क्या गिला कर रहे हैं? आपसे कुछ गिला नहीं।
1: जी जी जी जी, जी, जी। बहुत ही खूबसूरत।
0: कितना सेक्रीफाइस है इसमें है कि, और जो गजलों में विरोधाभास होता है वो दोनों चीजें इसमें आ रही हैं। आपको भूल जाएं हम इतने तो बेवफा नहीं, आपसे क्या गिला करें, आपसे कुछ गिला नहीं। तो आइए सुनते हैं आपकी आवाज में, यानी डॉक्टर गाथा मोहंती की गाई इस खूबसूरत गजल को। आपकी आवाज, आपकी पहचान। आप सुन रहे हैं डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का, जयपुर रेडियो वर्ल्ड।

0: वाह, बहुत खूबसूरत गजल। शीशाए दिल को तोड़ना उनका तो एक खेल है, हमसे ही भूल हो गई उनकी कोई कथा नहीं। वो कितना बदनसीब है गम ही जिसे मिला नहीं, आपको भूल जाएं हम इतनी तो बेवफा नहीं। आप सुन रहे हैं डॉक्टर गाथा को ओडिशा भुवनेश्वर से। हमारे साथ प्रोग्राम गाथाए गजल में डॉक्टर गाथा मोहंती इस प्रोग्राम में लाइव जुड़ी हैं। बहुत ही खूबसूरत गजल गाथा हमने सुनी और
1: जी शुक्रिया।
0: क्या कहेंगी आप इस गजल को सुनने के बाद? हमारे श्रोता तो कहेंगे ही कहेंगे, आप क्या कहेंगी?
1: नहीं, ये गजल इतनी इजी भी नहीं है, क्योंकि जब मैंने पहली बार सुना, किसी ने बोला कि आप ये सुनिए और इसको सीख के गाइए, तो क्योंकि इतनी बारीकियां हैं और चित्रा जी ने इतनी छोटी छोटी चीजों में हरकतें की हुई हैं, सो खाली गा लेना मेरे लिए वो सीख के एकदम हूबहू उसको फिर से प्रोड्यूस करना वाज लिटिल ट्रिकी, बट टाइम लगा, लेकिन फिर हुआ। लेकिन उसके बाद क्या होता है, फील भी आनी होती है। सो एक बार गाना, फिर उसके बाद उसकी जो फाइनल डिटेल्स एंड उसके बाद द फील, एवरीथिंग मेक्स अ गजल कंप्लीट। सो शायद श्रोता ही बता पाएंगे कि वेदर दे लाइक्ड इट और नॉट, और वो कंप्लीट हुआ है या नहीं।
0: हमारी दृष्टि में तो पूरी तरह से कंप्लीट हुआ है, और भूलने की बात हो और तन्हा होने की बात हो, अकेलेपन की जब बात हो तो भी गजल होती है। और हिंदी कविता में तो कहा जाता है, वियोगी होगा पहला कवि आह से उपजा होगा गान, निकल चुपचाप आंखों से बही होगी कविता अनजान। तो पहले कवि के बारे में ऐसे कहा जाता है, तो आप ही बताएं कि जब तन्हा होता है आदमी तो कौन सी गजल गाता है? और
1: ये कोई ये कैसे बताए कि वो तन्हा क्यों है?
0: जी वही।
1: तो ये गजल है जगजीत जी का, जी कैफी आजमी जी ने लिखा हुआ है, और ये मूवी में आई थी ये जो गजल है, ये इसको शबना आजमी जी के ऊपर फिल्माया गया था, अर्थ मूवी में ये गजल आई थी, और मुझे बहुत पसंद है ये। सो वो सुनाते हैं श्रोताओं को।
0: बिल्कुल, आपके साथ हम भी सुनते हैं श्रोताओं के साथ आपकी ये गजल डॉक्टर गाथा अपनी अगली गजल में।
2: रिश्ते तो नहीं

0: है जन्म का ये रिश्ता तो बदलता क्यों है, कोई ये कैसे बता दे कि वो तन्हा क्यों है। खूबसूरत गजल हमने सुनी डॉक्टर गाथा की आवाज में। आपकी आवाज आपकी पहचान, आप सुन रहे हैं डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ल्ड। और हमारे साथ हैं भुवनेश्वर गुहा, भुवनेश्वर उड़ीसा से, डॉक्टर गाथा, प्रोग्राम गाथा ही गजल। फिर से वेलकम है, स्वागत है डॉक्टर गाथा इस लाइव शो में। खूबसूरत गजल आपने सुनाई और इसको सुन के हमें यूं लगा, एक प्रश्न हमारे जहन में आया कि अधिकतर गजलें गम जुदाई इनको लेके होती है, जिंदगी के फलसफे को लेके होती है, और वही गजलें हमारे दिल को और सुनने वाले जो लिसनर्स हैं उनके दिल को छूती है। तो ऐसी क्या बात होती है इसमें, कौन सा आकर्षण होता है गजल में कि वो हमारे सीधे दिल में असर करती है, नॉक करती है?
1: वो सच बताती है गजल,
0: कभी झूठ नहीं बोलती।
1: फिलॉसफी जी, कभी झूठ नहीं बोलती। जो फिलॉसफी है लाइफ की, चाहे मैं कितना बता दूं कि नहीं ऐसा नहीं होता है, लेकिन यही होता है। और इसको एक्सेप्ट करना, जितनी जल्दी आप एक्सेप्ट कर लो वही आपके लिए अच्छा रहता है। सो किसको गम नहीं है इस जमाने में, सबको गम है, आपका आपको भी है, हमारा भी है, लेकिन उस गम के पीछे भी एक लाइफ चलती रहती है और उसी गम के साथ लोग चलते रहते हैं। द चेंज इज कॉन्स्टेंट, सो वही चेंज को एक्सेप्ट करना और आगे बढ़ते जाना, वही तो जिंदगी है।
0: तो सुन ले वो गजल, अपने गम को गीत बनाकर गा लेना, अपने गम को गीत बनाकर गा लेना, राग पुराना तेरा भी है,
1: तेरा भी है मेरा भी।
0: आइए सुनते हैं, बहुत ही खूबसूरत उम्दा गजल।

0: शहर की गलियों में चर्चा है जिसका, वो अफसाना तेरा भी है मेरा भी है। जी हाँ, चर्चा है आज प्रोग्राम गाथाए गजल की जयपुर रेडियो पर। हमारे साथ हैं डॉक्टर गाथा महंती भुवनेश्वर उड़ीसा से। आपकी आवाज आपकी पहचान, डिजिटल वॉइस वर्ड का जयपुर रेडियो वर्ड सुन रहे हैं आप। डॉक्टर गाथा, हमने सुनी गम का फसाना, गम का अफसाना, और क्या कहेंगी, गम के बगैर जिंदगी अधूरी है या जिंदगी के बगैर गम?
1: जी, दोनों ही सही है। अपनी अपनी जगह पे दोनों लाइंस एकदम सही बैठती हैं। गम के बगैर जिंदगी और जिंदगी के बगैर गम।
0: बहुत खूब बात कही आपने, और अगली गजल की ओर चलते हैं। और बहुत देर के बाद जिस चीज को आपने नहीं देखा है, जिस गजल को आपने नहीं सुना है, वो गजल हमारे श्रोताओं की नजर कर दीजिए आप। तो कौन सी गजल की ओर रुख कर रही हैं?
1: ये है नियते शौक भर ना जाए कहीं, तू भी दिल से उतर ना जाए कहीं। नासिर काजमी जी ने लिखा हुआ है और नूर जहां जी ने पहली बार गाया था इसे।
0: आज देखा है तुझे, आज देखा है तुझको, देर के बाद आज का दिन गुजर ना जाए कहीं।
1: जी, तो बहुत खूबसूरत लिखा हुआ है जी।
0: तो बिल्कुल सुनाइए आप ये गीत गजल। आइए सुनते हैं डॉक्टर गाथा को इसको।

0: ना मिलाकर उदास लोगों से हुस्न तेरा बिखर न जाए कहीं, तू भी दिल से उतर न जाए कहीं। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गाथाए गजल और हमारे साथ हैं डॉक्टर गाथा महंती उड़ीसा भुवनेश्वर से। एक बार फिर इस लाइव शो में वेलकम है डॉक्टर गाथा आपका, क्या कहें?
1: जी शुक्रिया
0: जी।
1: जी एक डॉक्टर होते हुए भी पैशन जो है मेरी सिंगिंग है और हर तरह के गाने गाती हूँ, और इस बार गजल जो कलेक्शंस थी मेरी, मैंने सोचा कि श्रोताओं को सुनवाऊं क्योंकि उनकी फीडबैक भी बहुत जरूरी है। अगर कोई प्रोग्राम हम उनको सुनवा रहे हैं सो वो हम अपनी खुशी से जो हमें पसंद है वो उनके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। सो आई वुड एक्सपेक्ट कि लोग अपने कमेंट्स दिए व्यास जी को और बताएं कि ये जो मेरी प्रयास है गजलों की ये जारी रखूं या और थोड़ा बेहतरीन हो सकता है, या आई वुड लाइक एन ऑनेस्ट फीडबैक।
0: बिल्कुल, ये आपका मैसेज बराबर इसी वक्त श्रोताओं के पास पहुंच रहा है। और इस गजल में एक चीज थी कि तू भी दिल से उतर न जाए कहीं। तो कई बार ऐसा होता है हमारे साथ लाइफ में कि कोई चीज, कोई गीत भी होता है तो हम बहुत सुनते हैं या बहुत उसके करीब होते हैं तो फिर वो सुनने का मन नहीं करता, या ऐसा कोई व्यक्ति भी हो सकता है, कोई चीज भी हो सकती है। तो दिल से उतरना और दिल के अंदर आना,

डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का ये जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, आपकी आवाज़ आपकी पहचान। थोड़ी देर में प्रोग्राम होगा सेलिब्रेशन, और सेलिब्रेट कर रहे हैं हम आज डॉक्टर रेणु खंडेलवाल के बर्थडे का। डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का ये जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, आपकी आवाज आपकी पहचान, और आज हमारे संग है डॉक्टर रेणु खंडेलवाल।

जब कृष्ण ने अपनी बांसुरी की तान छेड़ी होगी, सूरज ने जब उजाले की बात धरती के कानों पर कही होगी और हवा ने जब अपना आंचल लहराया होगा, इस धरा पर, इस धरती पर कुछ ऐसी विभूतियां अवतरित हुई जिनका नाम हम लेना चाहेंगे। वैसे तो 12 महीने होते हैं, लेकिन जो सितंबर होता है उसका बहुत बड़ा अंबर होता है, पूरी धरती को आच्छादित कर देता है, समंदर समाहित हो जाते हैं, बादल उड़ते रहते हैं, वृक्ष टहनियां सब हरे हरे पत्तों और फूलों से लदी रहती हैं। और ऐसे सितंबर में कृष्ण जैसे लोक कल्याण के लिए अवतार का पृथ्वी पर अवतरित होना, साहित्य हो,

संगीत हो या फिर लोक नीति या दर्शन हो, इस मंथ में जो भी इस धरती पर उतरा है उसने सच में कमाल किया है, बेमिसाल किया है। आज हम उन विभूतियों के नाम लेना चाहेंगे इस मंथ में, यानी सितंबर माह में इस धरा पर अवतरित हुए, जन्म लिया है और अपने जन्म को सार्थक किया है। इस मंथ में जो भी लेता है जन्म, वो लोक हित के लिए, लोक कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित करता है। कृष्ण भी ऐसे ही समय में पैदा हुए और राधा रानी भी इन्हीं दिनों धरती की शोभा बनी। जिनका भी नाम लें वो सच में महान विभूतियां हैं। हमने एआई से पूछा, क्या आप हमें सितंबर माह में इस धरती पर अवतीर्ण हुई विभूतियों के नाम बताएंगे? उन्होंने बड़े चाव से हमें बतलाया, हिंदी के प्रथम कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र, बहुत ही लोकप्रिय उर्वशी के रचयिता रामधारी सिंह दिनकर, महान समाज सुधारक ईश्वरचंद विद्यासागर, दर्शन और राजनीति के प्रणेता डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, स्वामी प्रभुपाद और फारसी सूफी कवि रूमी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, शहीद भगत सिंह और हमारी रेडियो और बॉलीवुड की स्वर कोकिला लता मंगेशकर, एमएस सुब्बुलक्ष्मी, दोनों गायिका भी और दिल में दुनिया को रखने वाली भी, हमारे लोक कल्याण के नायक हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, न जाने कितने अनगिनत नाम है जिनको हम यदि लेना चाहेंगे तो भी ले ना सकेंगे इस प्रोग्राम की समय सीमा में। इसलिए जिस उद्देश्य से हम इस प्रोग्राम को आज प्रसारित कर रहे हैं उस पहलू में आ जाते हैं और हम नाम लेते हैं हमारी आज की बहुत ही लोक प्रसिद्ध, लोक सेवक, जन सेवक और जन कल्याण से जुड़ी हुई डॉक्टर रेणु खंडेलवाल। आज इस मंच से हम आपका मना रहे हैं जन्मदिन। जयपुर रेडियो की ओर से डॉक्टर रेणु खंडेलवाल को जन्मदिन की अनंत शुभकामनाएं।

0: सेलिब्रेशन का ये प्रोग्राम है, उसमें गीत भी होंगे, संगीत भी होगा, बात भी होगी और मुलाकात भी होगी। और आज हमारे संग है डॉक्टर रेणु खंडेलवाल, और आप एक कुशल चिकित्सक हैं और लोक सेवा में ही अपने जीवन को समर्पित किया है। तो सबसे पहले तो डॉक्टर साहब आपको बहुत बहुत बधाई जन्मदिन की कि आज हम एक ऐसी शख्सियत का जन्मदिन मना रहे हैं जो लोक सेवा से लोक कल्याण के मार्ग में जुड़ी हुई हैं। चिकित्सीय कौशल के साथ साथ आप एक सफल मनोवैज्ञानिक भी हैं, तो क्या कहेंगे जब लोग आपके पास आते हैं तो आप किस तरह से उसके दर्द को, उसकी पीड़ा को पहचानती हैं?
1: देखिए सर, जब कोई भी पेशेंट मेरे पास आता है तो वो अपनी जो कंप्लेंट्स बताता है तो उसको प्राइमरी तौर पे तो हम लोग एक बार डिटेल में इवैल्यूएट करने की कोशिश करते हैं, उसको उसी चीजें समझाते हैं कि भाई उसको क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, किस तरह की हो सकती है, और इवन उसको साइकोलॉजिकली सेटिस्फाइड भी हमें करना पड़ता है कि पेशेंट सेटिस्फाइड रहे और बहुत ज्यादा अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर के पैनिक नहीं हो और चीजों को समझे ताकि प्रॉपरली वो ट्रीटमेंट ले सके, उसको आगे कंटिन्यू कर सके।
0: बहुत सही। और इसके लिए जो है ना, आपके घर परिवार और बच्चों का और आसपास के लोगों का सहयोग भी मिलना जरूरी होता है कि आप एक सेवा कर्म में हैं तो उसमें कुछ आसपास का जो वातावरण है वो सहयोगी होना चाहिए। तो उसके लिए आप कैसे अपने आसपास के वातावरण को देखती हैं, कहती हैं और उसको अपनाती हैं?
1: मेरा जो अगर हम फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इस तरह की जो इंस्पिरेशन है I got from my father and my uncle and aunt. And later on when I got married, तो my husband is very supportive. तो ये सब लोग हैं पीछे सपोर्ट में, जिनकी वजह से मैं रिलैक्स रहती हूँ और अपना फुल डेडिकेशन पेशेंट्स को दे पाती हूँ।
0: बिल्कुल, हमने अभी कभी भी आपके चेहरे पर सिकन नहीं देखी और चिंता नहीं देखी। वो लकीरें जो साथ लेके चलता है वो लोक सेवा के लिए उपयुक्त होना चाहकर भी नहीं हो सकता है, लेकिन आप में ऐसा कुछ नहीं देखा हमने, और आप पूरी तरह से समर्पित भाव से सेवा करती हैं। आपके हबी गाना गाते हैं और आपको कभी कभी यूं भी सुनाते हैं क्या?
1: हाँ, कई बार वो मुझे सुनाते भी हैं कि देख मैंने आज तेरे लिए गाना गाया है। सर वो पूरा रिकॉर्डिंग भी सुनाते हैं। बहुत अच्छा लगता है कि कोई आपके लिए इतने प्यार से कोई गाना गा रहा है, आप अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहा है, तो डेफिनेटली आप समझ सकते हैं, स्पेशली अगर आपका हस्बैंड आपको इस तरह से अपनी फीलिंग्स शेयर करता हो तो हाउ मच यू आर ग्रेटफुल फॉर गॉड कि आपने इतना लवली हस्बैंड मुझे दिया।

0: बहुत ही शुभकामनाएं हमारी ओर से। और कभी बदले में आप कुछ दो लाइनें सुनाती हैं, जब आप भी गाती होंगी या फिल्में देखती होंगी तो दो चार पंक्तियां तो आपके होठों पे जुबान पे आती होंगी।
1: देखिए मैं जब भी होती हूँ तो मुझे ये जरूरत है, तेरा साथ है कितना प्यारा, कम लगता है जीवन सारा, तेरे मिलन को अब
0: बहुत बढ़िया। इस गाने को हम कंटिन्यू करते हैं।

0: हम श्रोताओं को बताते हैं कि आप सुन रहे हैं डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ल्ड, आपकी आवाज आपकी पहचान। और हमारे साथ जुड़ी हुई हैं लाइव शो में डॉक्टर रेणु खंडेलवाल। और रेणु खंडेलवाल एक डॉक्टर हैं, चिकित्सक हैं और लोक सेवा से जुड़ी हुई हैं। और हम अक्सर मिलते हैं आपसे, और जब भी मिलते हैं तो यूं लगता है कि और न जाने कब से आपको जानते हैं। ऐसा ही व्यवहार एक डॉक्टर का होना चाहिए, जो होना चाहिए वो डॉक्टर रेणु खंडेलवाल का है। तो डॉक्टर साहब, आपने ये गीत तो हमें सुनाया, और गीत के साथ साथ और आपके और कौन कौन से शौक हैं, खाना बनाना, कुकिंग, खेलना या कुछ और जो भी हैं वो भी हमारे श्रोताओं को बताएं।
1: सबसे ज्यादा जो मेरा होता है कि ठीक है, अपना रूटीन करने के बाद में अगर मेरा कोई बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा अगर आप हॉबीज की बात करते हैं तो फूड, हम इंडियंस कहते हैं ना कि आप जितना अच्छा फूड बनाएंगे परिवार को उतना करीब रख पाएंगे।
0: बिल्कुल।
1: तो जब भी मुझे टाइम मिलता है आई ट्राई कि डिफरेंट डिफरेंट टेस्टी डिशेस बनाऊं, घर वालों को खिलाऊं, तो सबको बहुत अच्छा लगे, वो मेरा सबसे ज्यादा फेवरेट हॉबीज में आ जाता है।
0: बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया कि आपका जो साथ है वो, और जो जीवन का सफर है वो सुहाना सफर, और ये मौसम हंसी वाला गीत जो है वो याद आता है आपकी बात सुन के। और खाने की बात के बाद आप हमें पढ़ने के बारे में बताएंगी, कभी आप पढ़ पाती हैं, क्योंकि सोशल मीडिया जो है उसने हमें किताबों से, पढ़ाई से,

0: बेसिकली आपकी मेमोरी को इम्प्रूव नहीं करता, ये आपकी मेमोरी को डाउनग्रेड करता है। तो मेरे पास कोई भी स्टूडेंट अगर आता है तो मैं उसको कभी भी एडवाइज नहीं करती, ठीक है आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करिए लेकिन उसको प्रिंट आउट करिए और फिर उसको रीड करिए। प्रिंट आउट लेकर के आप रीड करेंगे तो वो ज्यादा आपकी मेमोरी में जाएगा और आपको ज्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट देगा, बजाय कि आप डायरेक्ट स्क्रीन से पढ़ के बस उसको वहीं पे डिजिटली सेव करें। सेम ओल्ड एज जो पीपल होते हैं जिनको कि लगता है कि अल्जाइमर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, तो मोस्टली जैसे अभी अगर आप करंट सिनारियो में देखें तो आफ्टर 50 पे अल्जाइमर बढ़ रहा है, डिमेंशिया बढ़ रहा है। पहले अल्जाइमर अबाउट 70 ईयर्स पर होता था। अभी आप आज अगर आप किसी से बात करते आपको किसी के मोबाइल नंबर याद नहीं होंगे, आपको हर चीज के लिए मोबाइल नंबर, पहले के फोन होते थे तो आपको सबके नंबर पता होते थे, कम से कम 50 नंबर आप लोगों को याद होते थे, यहाँ पे हर आदमी को 50 नंबर याद हो जाते थे कि ठीक है उसका नंबर ही है, उसका नंबर ही है। हर चीज आपके फोन डायरेक्ट सेव होती है।
1: मुझे अपना नंबर याद नहीं होता, कई बार अपना नंबर बताते हुए मैं रुक जाता हूँ फिर याद करता हूँ।
0: तो ये जो अगर हम बहुत ज्यादा गैजेट फ्रेंडली हो रहे हैं तो करंट में डिमेंशिया और अल्जाइमर के पेशेंट बहुत बढ़ रहे हैं। तो मेरे पास जो भी पेशेंट आता है मैं उनको कहती हूँ ठीक है टेक्निक को आप अपनी सपोर्ट में लीजिए बट इसको अपना रूटीन का पार्ट मत बनाइए, आप अपने ब्रेन को एक्टिव रखें। ब्रेन एक्टिव कब होगा? जब आप प्रैक्टिकली उसको वर्क करने देंगे। पका पकाए अगर आप ब्रेन को देंगे तो आपका ब्रेन वर्क ही नहीं करेगा। और इनडायरेक्टली क्या होता है कि वाइस एंड वर्सा, ये आपके ब्रेन के जो न्यूरॉन्स होते हैं जो कि ओल्ड एज में डीजनरेट होते हैं वो अर्ली एज पे डीजनरेट होना शुरू हो जाते हैं। बच्चों में होता है कि वो मोबाइल से पढ़ लेते हैं, सब चीज पढ़ लेते हैं, अरे मैंने तो ये पढ़ लिया मैंने पढ़ लिया, पर मेमोरी कंसोलिडेटेड नहीं हो रही। जब कंसोलिडेटेड नहीं हो रही तो एट द टाइम ऑफ एग्जाम फॉरगेटफुलनेस शुरू हो जाती है, उनको एंग्जाइटी चालू हो जाती है, उनको कुछ रिकॉल नहीं हो रहा है। तो ये गैजेट का एक यूज करें पर स्मार्ट वे में यूज करें, लेकिन डायरेक्ट जो फिजिकल स्टडी मटेरियल है उस पर ज्यादा रिलाय करें।
1: बहुत सही फरमा रही हैं आप। और हम श्रोताओं को एक बार फिर बताना चाहेंगे कि आप सुन रहे हैं डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ल्ड, आपकी आवाज आपकी पहचान। और आज आवाज जो सुन रहे हैं वो है डॉक्टर रेणु खंडेलवाल की, और जो गीत सुन रहे हैं आप उनको गा रहे हैं आपके हबी। हम जानना चाहेंगे और सुनना चाहेंगे कि आप कौन सा गीत पसंद करती हैं, कौन सी फिल्में आप देखती होंगी पहले, तो अब तो किसी को जरूरत नहीं है, तो कोई किसी फिल्म का गीत यदि आपको याद हो तो दो लाइनें गाएंगी आप अपने हबी के लिए। एनीवेज

बहुत सही, बहुत ही खूबसूरत आवाज है आपकी। हम सुनते हैं ये खूबसूरत गीत। और हमारे पास हैं, हमारे साथ हैं डॉक्टर रेणु खंडेलवाल अपने हबी के साथ। और ये तो आपने गाया और लोकेश जी क्या कह रहे हैं वो सुन लेते हैं।

दिल की धड़कन और धड़कनों से बनते हैं गीत, और गीतों को हम गाते हैं और अपने एहसासों को बांटते हैं।

0: और पल पल दिल के पास रहते ये कैसे रिश्ते, और इन रिश्तों में माँ बाप बहन भाई सास ससुर न जाने कितने लोग हमारे आसपास चारों ओर रहते हैं और हम उनसे बात करते हैं, उनके साथ जीते हैं और जीने का अंदाज भी उन्हीं से सीखते हैं। क्या कह रहे हैं?
1: प्यारी बिटिया डॉक्टर रेणु को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई।
2: ईश्वर तुम्हें हमेशा खुश और स्वस्थ रखे और ढेरों आशीर्वाद।
3: आपका जीवन सुखमय हो। डॉक्टर रेणु खंडेलवाल को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन सुखमय हो, मंगलमय रहे। मैं संजय गुर्जर, राजस्थान हाईकोर्ट, जयपुर।
4: हेलो पापी जी, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसे ही आशीर्वाद बना के रखिए और हमारी शुभकामनाएं आपके लिए।
5: विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे डियर भाभी, हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
6: हैप्पी बर्थडे डॉक्टर भाभी, आज का दिन खास है क्योंकि आज उस शख्स का बर्थडे है जिसने हमारे दोस्त की जिंदगी खूबसूरत बना रखा है। भगवान आपको हमेशा खुश रखे, चेहरे पर मुस्कान बनाए रखे और आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो। ढेर सारे जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं राकेश।
0: ये शुभकामनाएं राकेश जी दे रहे थे। और
7: हैप्पी बर्थडे छोटी नानी,
8: विश यू हैप्पी बर्थडे दादी।
9: Many many happy returns of the day. May God always provide you the most precious thing in life, health, wealth, happiness and prosperity. Happy birthday to you, Mami ji.
2: जन्म दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं भाभी जी। आपकी जिंदगी में हमेशा खुशियां बनी रहे, आप ऐसे ही हंसती रहो, मुस्कुराती रहो। जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं भाभी जी, हमेशा ऐसे ही हंसती रहो, मुस्कुराती रहो, आपके जीवन में हमेशा खुशियां बनी रहे।
10: को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज का दिन आपके जीवन में खुशियां और प्यार लेकर आए। मैं दुआ करती हूं कि आपका जीवन हमेशा प्यार, सफलता और शांति से भरा रहे। आप हमारी जिंदगी का अनमोल हिस्सा है। हैप्पी बर्थडे भाभी।
2: जन्मदिन की बहुत बहुत शुभ।
0: आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में और आपसे जानना चाहेंगे हम कि दवा जो है आज के युग में बहुत ज्यादा ली जाती है और हमारा जो करंट सिनेरियो है वो ये कह रहा है कि आप इन दवाओं पे डिपेंडेंट न रह के प्रकृति पे या आयुर्वेद पे या योगा पे, तो इसको आप इसके साथ कैसे कोरिलेट करके लोकहित के लिए?
11: जो पेशेंट आता है ना प्राइमरी तौर पर
0: जी,
11: मैं उसको हमारे जो ओल्ड एज के अगर हमारे पूर्वज हैं उनका जो लाइफस्टाइल था
0: जी,
11: मैं उसकी तरफ ज्यादा मोटिवेट करती हूँ। पर्टिकुलरली किसी आयुर्वेद को रिकमेंडेशन डायरेक्ट नहीं करती हूँ, लेकिन जो लाइफस्टाइल है अगर हमारे ओल्ड एज को अगर हम देखें, हमारे अगर हम हमारे दो पीढ़ी से पहले एक पीढ़ी पहले की भी अगर हम देखते हैं तो उनका जो लाइफस्टाइल है अगर हम उसको बारीकी से देखें तो फिजिकल वर्क अच्छा है उनका, ठीक है। दूसरा, हर चीजों को अगर आपने उनको देखा होगा तो दे टुक थिंग्स वेरी लाइटली, बहुत ज्यादा पैनिक नहीं होते। तीसरा, उनका जो खानपान है वो सीजन के अकॉर्डिंग और आपके जिस क्लाइमेट एरिया में रहते हैं उसके अकॉर्डिंग होता है। तो अगर हम हमारे फूड को, हमारी एक्टिविटीज को और हमारी लाइफस्टाइल को तीनों के अकॉर्डिंग अगर हम चेंज कर लेते हैं तो हमें आज की जो प्रॉब्लम्स हैं देखा जाए तो उसमें 60-70% हमें रिलैक्सेशन मिल सकता है।
0: बिल्कुल, बहुत सही फरमा रही हैं।
11: हमारी सीजन में किसी नहीं खाते हैं। आज अगर हम देखते हैं पेशेंट्स को पूछते हैं, मैडम इस मौसम में या कभी मौसम, मैडम मैं अनार खाऊं या खाऊं, मेरा कभी कोई क्राइटेरिया नहीं होता कि आप बहुत हैवी फूड खाइए, कि हर सीजन में हर विटामिंस को लेकर के कोई ना कोई एक ऐसी सब्जी या ऐसा फ्रूट आता है जो कि बहुत ही सस्ता मिलता है और बहुत इजीली मिलता है। तो जो भी जिस सीजन में फूड खाया जाता है, चाहे वो किचन में कुकिंग का हो, चाहे फ्रूट्स का हो, चाहे वो वेजिटेबल्स का हो
0: जी।
11: तो आप जिस क्लाइमेट में रहते हैं, जिस सीजन में जो सबसे इजीली मिलता है, आप उसको अच्छे से खाइए। आप फिजिकल वर्कआउट करिए, हर चीज के लिए आप मशीनरी पे या स्कूटर पे या इन पे कार पे डिपेंडेंट नहीं रहिए। अपने छोटे छोटे काम खुद से करना शुरू करिए, चीजों को बैलेंस करना शुरू करिए, पैनिक मत होइए। हर चीज को खुद से करने की जरूरत नहीं होती, चीजों को कई बार फैमिली में डाइवर्ट भी करना पड़ता है, चीजों को प्रायोरिटाइज करना पड़ता है कि कौन सी चीज प्रायोरिटी पे है, कौन सी चीज को हम थोड़ा सा डाउन में रख सकते हैं। तो अगर हम ये तीनों पार्ट ऑफ लाइफ को अगर हम बैलेंस करेंगे तो फिजिकल मेंटल हेल्थ हमारी अच्छी रहेगी, और जब फिजिकल और मेंटल हेल्थ होगी तो डेफिनेटली मेडिसिन की नीड्स कम होगी।
0: बहुत सही फरमा रहे हैं आप, और अब सुन लेते हैं उनकी बात जो आपके लिए कुछ कहना चाहते हैं, और इसके बाद हम ये गीत सुनते हैं और अब फिर से बात करते हैं। डॉक्टर रेणु खंडेलवाल हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, एक बात बहुत ही महत्वपूर्ण है जो हम पूछना चाह रहे थे आपसे, और आज हमें अवसर मिला है तो क्यों ना हम इस बात पे भी कुछ आपकी राय ले लें कि कोरोना से पहले जो कोरोना काल आया था 2020 से पहले, जो मानव का बिहेवियर था, उनके सोचने की, उनके बात करने की, जो कुछ है उनके याददाश्त की, जो भी व्यवहार विज्ञान था वो, और आज उसके बाद में जो लोग बचे हैं या जो पीढ़ी बड़ी हो रही है, उनके बिहेवियर में कुछ बदलाव आया है क्या? आपने कभी नोटिस किया इस बात को?
11: देखिए, शुरू में तो आफ्टर कोरोना 2-3 इयर्स तो थोड़ा सा लग रहा था कि लोगों ने अपनी चीजों को चेंज किया है।
0: जी,
11: अगर हम बात करें तो 2021 तक जैसे कोरोना का एक पीरियड चल रहा था, तो व्हाट आई फेल्ट कि 2024 और इनिशियल इयर्स ऑफ 2025 या आप 24 ही आएंगे, तो लोगों का जो सोच का पैटर्न था वो थोड़ा चेंज हो गया था कि दे वर विलिंग कि यू नेवर नोज कि कब क्या हो जाए। तो लोग थोड़ा सा एम्पैथेटिकली और लोगों के लिए अच्छा करते थे, लोग अपने लिए जीना शुरू कर दिया था, लोगों ने सबसे रिलेशंस बनाने शुरू कर दिए थे, लोगों को आइसोलेशन का मतलब समझ में आ गया था। तो देखा जाए तो एक फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जो कनेक्टिविटी थी वो बढ़ गई थी, क्योंकि लॉक इन पीरियड में जब लोग बहुत अकेले रहे तो उनको समझ में आया कि अकेलापन क्या चीज होती है। सडनली आपकी फैमिली में जो डिमाइसेस हुए हैं, आपकी लाइफ की अनसर्टेनिटी क्या है, कोई सर्टेनिटी नहीं है, सडनली एवरीथिंग कैन गो, आपको पता ही नहीं चलेगा। आप बहुत ज्यादा मनी माइंडेड हो रहे हैं लेकिन सडनली यू हैव लॉस्ट एवरीथिंग, जब ह्यूमन ही नहीं है तो आप करेंगे क्या उस मनी का। तो लोगों ने उस समय काफी चीजों में चेंज किया था, अपनी पर्सनालिटीज में, अपने थॉट्स में, और उसमें बट पीपल आर पीपल, सो अगेन दे आर गोइंग टू बैक।
0: हाँ बिल्कुल, आफ्टर उसके हमने ये पाया है या हमने बारीकी से जब हम देखते हैं तो लगता है कि लोग असहिष्णु हो गए हैं और सेल्फिश हो गए हैं और बहुत सारे अपने में संकुचित होते जा रहे हैं। हो सकता है मेरे आसपास का वातावरण ऐसा हो, लेकिन मैंने कई जगह नोटिस किया है, चाहे वो एयरपोर्ट हो, चाहे रेलवे स्टेशन हो, चाहे बस स्टैंड हो, सब लोग जो हैं वो कहीं किसी संकुचाहट में सिर्फ अपने सेल्फ सेंटर्ड वाली बात जो है वो उनके साथ हो रही है या हो चुकी है, ऐसा कुछ कभी कभी लगता है।
11: हाँ, वही तो मैं कह रही हूँ कि उस वक्त लोग हेल्पिंग में आ गए थे एकदम,
0: बिल्कुल
11: काफी चेंजेस हो गए, बट अगेन दे आर मूविंग बैक साइड,
0: यानी भूल गए हैं वो।
11: हाँ, दे हैव फॉरगॉटन दैट पार्ट कि सडनली ऐसा कुछ हो सकता है। वी फेल्ट इवन वी वर लकी कि हम उस डिजास्टर से बाहर निकले हैं।
0: बिल्कुल, तो बात निकली थी तो यहां तक पहुंच गई, और क्योंकि हम आज मना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं जयपुर रेडियो के इस मंच पर डॉक्टर रेणु खंडेलवाल के हैप्पी वाले बर्थडे को, तो आइए सुनते हैं ये खूबसूरत गीत।
12: वैवाहिक जीवन के शुरुआती दिनों में कुछ जिम्मेदारियों और दायित्वों का निर्वहन करना होता है, तर हर व्यक्ति को अपने विवाह के पूर्व के स्वतंत्रता, आजादी, यार दोस्तों के साथ की गई मस्ती के दिन याद आने लगते हैं। ऐसे ही दोस्तों के साथ मिलकर मस्ती में पुराने दिनों को याद करना और विवाह के तुरंत बाद की स्थिति को दोस्तों की याद में और फिर वो जीवन का सबसे खूबसूरत पल जो ईश्वर ने हमें सुधांश के रूप में अपार खुशियां दी, उसके बाद वैवाहिक जीवन में सपनों का तूफान आ गया, उन अभिव्यक्तियों को इस गीत के माध्यम से हम प्रस्तुत कर रहे हैं।

0: रिमझिम सावन की बात कर रहे थे लोकेश जी इस प्रोग्राम में। आप सुन रहे हैं डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ल्ड, आपकी आवाज आपकी पहचान। और आज का ये सुरीला पैगाम लेके आए हैं हमारे साथ हमारे संग डॉक्टर रेणु खंडेलवाल और लोकेश खंडेलवाल। अब दोनों का फिर से वेलकम है, स्वागत है। क्या कहेंगे लोकेश जी?
1: सर्वप्रथम मैं सभी श्रोताओं को जो जयपुर रेडियो को सुन रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, साथ ही उन सभी सम्मानीय गुणों को जिन्होंने आज हमारे दिन को विशेष दिन बनाने में अपना अमूल्य समय देकर सहयोग दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक आभार। एक डॉक्टर और एक वकील पति पत्नी का तालमेल, वैचारिक तालमेल बैठाना बहुत ही कठिन होता है, फिर भी हमने हंसी खुशी अपना जीवन निर्वहन कर सभी जिम्मेदारी और दायित्वों को निभाया है। आज मैं कुछ पंक्तियाँ हमारे प्रोफेशन जीवन के आधार पर अपनी डॉक्टर पत्नी के नाम पर सुना रहा हूँ। मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत डॉक्टर के नाम, तुम मरीजों का दर्द समझकर उनका इलाज करती हो और मेरी हर परेशानी को बिना कहे समझ लेती हो। मैं अदालत में लोगों के हक की पैरवी करता हूँ, लेकिन मेरी जिंदगी में मेरा सबसे खूबसूरत फैसला तुम हो। तुम्हारी हर मुस्कान मेरी सबसे मजबूत दलील है और तुम्हारा साथ मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत फैसला। जन्मदिन मुबारक हो मेरी डॉक्टर साहिबा, मेरी दोस्त, मेरी पत्नी और मेरी सबसे खूबसूरत जिंदगी। मैं आज इस खुशी के मौके पर अपने वैवाहिक जीवन से जुड़े कुछ खुशी के पलों को आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले जब हम शादी से पहले मिले थे तब की मेरी अभिव्यक्ति इस गाने के माध्यम से अभिव्यक्त कर रहा हूँ।

हमारे समय में प्रेम पत्रों का दौर आखिरी सांसें गिन रहा था, क्योंकि मोबाइल क्रांति आ गई थी। फिर भी मैंने एक प्रेम पत्र मेरी पत्नी डॉक्टर रेणु खंडेलवाल के नाम पर लिखा। उसकी अभिव्यक्ति मैं उक्त गीत के माध्यम से आपके समक्ष पेश कर रहा हूँ। धन्यवाद।

सूत्र के बाद में वो शुभ घड़ी भी आ गई जब हमारा विवाह हुआ और हमने जीवन मरण के सात वचन लेकर जीवन पर्यंत एक दूसरे के साथ रहने का निश्चय किया। उन सात वचनों को मैं

0: वाह लोकेश जी, कमाल बेमिसाल, क्या कहें, लफ्ज नहीं मिल रहे हमें। और अब उन सब रिश्तेदारों की शुभकामनाएं डॉक्टर रेणु खंडेलवाल के नाम जो हमें प्राप्त हुई हैं, हम सुनवाना चाहेंगे।
1: So happy birthday ma, thank you for everything which you have given to me. Also yahan hostel mein kabhi kabhi aise moments hote hain jab meri kabhi karke bahut zyada yaad aati hai, and aapki har choti badi thi specially aapki chik chik wagera wo sab bahut zyada yaad aata hai, and main shayad hamesha express nahi kar pata, but I love you a lot. Bas aap aise rehna, khush rehna and meri care karte rehna. Once again happy birthday, thank you, love you.
2: हमारे परिवार की लाडली बहू सम्माननीय डॉक्टर रेणु को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आप सदैव हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। आपका स्नेह और सानिध्य सदैव बना रहे। ईश्वर आपको सभी खुशियां दे। शुभ आशीर्वाद।
3: बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, हमेशा खुश रहो। जन्मदिन की हार्दिक बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, हमेशा खुश रहो।
4: हैप्पी बर्थडे डॉक्टर साहब, जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयां हो। आप और मेरा हमेशा साथ बना रहे। आप मेरे फोन को हमेशा अटेंड करती रहिए, मैं आपको हमेशा परेशान करती रहूंगी।
5: मेरी प्यारी भाभी जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं।
6: मेरी प्यारी जिठानी जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आप अपने जीवन से लोगों को ऐसे ही अप्रिशिएट करते रहें।
5: मेरी प्यारी भाभी जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं।
7: विशिंग यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे ताई जी, मे गॉड ब्लेस यू विद अबंडेंट हेल्थ, जॉय एंड पीस इन द कमिंग ईयर। थैंक यू फॉर ऑलवेज गाइडिंग अस विद योर लव एंड वार्मथ। हैप्पी बर्थडे।
8: वो जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज का दिन आपके जीवन में खुशियां और प्यार लेकर आए। मैं दुआ करती हूं कि आपका जीवन हमेशा प्यार, सफलता और शांति से भरा रहे। आप हमारी जिंदगी का अनमोल हिस्सा हैं। हैप्पी बर्थडे भाभी।
9: कल कामनाएं भाभी, जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं भाभी जी। हमेशा ऐसे ही हंसती रहो, मुस्कुराती रहो, आपके जीवन में हमेशा खुशियां बनी रहे। जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं भाभी जी। हमेशा ऐसे ही हंसती रहो, मुस्कुराती रहो, आपके जीवन में हमेशा खुशियां बनी रहे। जन्मदिन दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं भाभी जी। आप की जिंदगी में हमेशा खुशियां बनी रहे, आप ऐसे ही हंसती रहो, मुस्कुराती रहो।
10: मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। मे गॉड ऑलवेज प्रोवाइड यू द मोस्ट प्रीशियस थिंग इन लाइफ, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी। हैप्पी बर्थडे टू यू मामी जी।
11: विश यू हैप्पी बर्थडे दादी। विश यू हैप्पी बर्थडे दादी। Wish you happy birthday daddy.
12: Choti nani. Happy birthday choti nani.
0: कौन क्या कह गया हमें मालूम नहीं। आवाज यदि आप पहचाने तो पहचान सकते हैं, लेकिन शुभकामनाएं हैं। कोई आपका पेशेंट है, कोई आपका रिश्तेदार है, कोई आपके परिवार से है, कोई समाज से है, और कोई जो कुछ भी हैं वो हमारे चारों तरफ रहते हैं। उनकी आवाज़ों को हम एक बार नहीं, दो बार सुन के तो पक्का पहचान ही लेते हैं। तो बहुत शुभकामनाएं हमारी ओर से भी आपको इस गीत के साथ।

0: सर आप सब लोगों का आशीर्वाद और प्यार हमेशा बना रहे और सब लोग हंसी खुशी रहेंगे, यही चाहूंगी।
1: बहुत शुक्रिया,
0: बहुत बहुत धन्यवाद इस मंच पर इंट्रोड्यूस कराने के लिए।
1: बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार कि आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए। और सभी जो लोग जुड़े रहे हम उनके नाम लेना चाहेंगे, और अब हम उन सभी श्रोताओं के नाम लेना चाहेंगे जो प्रोग्राम सुन रहे थे और सुन के हमें अपने फीडबैक प्रेषित कर रहे थे। आप हैं कोलकाता से श्याम बिहारी शर्मा, फाल्गुनी दवे जूनागढ़ गुजरात से, लोकजीत दास असम से, सुप्रिया सिंह सोनीपत हरियाणा से, मधुभी चटर्जी वेस्ट बंगाल से, मंदाकिनी शाह वडोदरा गुजरात से, समृद्धि चतुर्वेदी आप हैं सियाटल यूएसए से, जीना चौधरी पंजाब से, राकेश कन्नौजिया जगह का नाम नहीं लिखा है, साक्षी मेंडिकर नागपुर महाराष्ट्र से, सोनल पारिख जूनागढ़ गुजरात से, नेहा मूल चंदानी अजमेर राजस्थान से, अनीता दुगड़ नेपाल से, डोली श्रीवास्तव और प्रीति लखनऊ से, मुकेश पुरी जगह का नाम नहीं लिखा है, सुधीर सूरे, सतीश देपाल, मीता सराकर और राजीव बिहारी, आप सबका बहुत बहुत आभार। सुनते रहें जयपुर रेडियो, बार बार आपकी आवाज आपकी पहचान।

डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का ये जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, आपकी आवाज आपकी पहचान। और आज हमारे संग है डॉक्टर रेणु खंडेलवाल।

जब कृष्ण ने अपनी बांसुरी की तान छेड़ी होगी, सूरज ने जब उजाले की बात धरती के कानों पर कही होगी और हवा ने जब अपना आंचल लहराया होगा, इस धरा पर, इस धरती पर कुछ ऐसी विभूतियां अवतरित हुई जिनका नाम हम लेना चाहेंगे। वैसे तो 12 महीने होते हैं, लेकिन जो सितंबर होता है उसका बहुत बड़ा अंबर होता है, पूरी धरती को आच्छादित कर देता है, समंदर समाहित हो जाते हैं, बादल उड़ते रहते हैं, वृक्ष टहनियां सब हरे हरे पत्तों और फूलों से लदी रहती हैं। और ऐसे सितंबर में कृष्ण जैसे लोक कल्याण के लिए अवतार का पृथ्वी पर अवतरित होना, साहित्य हो, संगीत हो, या फिर लोक नीति या दर्शन हो, इस मंथ में जो भी इस धरती पर उतरा है उसने सच में कमाल किया है, बेमिसाल किया है। आज हम उन विभूतियों के नाम लेना चाहेंगे इस मंथ में, यानी सितंबर माह में इस धरा पर अवतरित हुए, जन्म लिया है और अपने जन्म को सार्थक किया है। इस मंथ में जो भी लेता है जन्म, वो लोकहित के लिए, लोक कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित करता है। कृष्ण भी ऐसे ही समय में पैदा हुए और राधा रानी भी इन्हीं दिनों धरती की शोभा बनी। जिनका भी नाम लें वो सच में महान विभूतियां हैं। हमने एआई से पूछा, क्या आप हमें सितंबर माह में इस धरती पर अवतीर्ण हुई विभूतियों के नाम बताएंगे? उन्होंने बड़े चाव से हमें बतलाया, हिंदी के प्रथम कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र, बहुत ही लोकप्रिय उर्वशी के रचयिता रामधारी सिंह दिनकर, महान समाज सुधारक ईश्वरचंद विद्यासागर, दर्शन और राजनीति के प्रणेता डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, स्वामी प्रभुपाद और फारसी सूफी कवि रूमी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, शहीद भगत सिंह।

और हमारी रेडियो और बॉलीवुड की स्वर कोकिला लता मंगेशकर, एमएस सुब्बुलक्ष्मी, दोनों गायिका भी और दिल में दुनिया को रखने वाली भी, हमारे लोक कल्याण के नायक हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, न जाने कितने अनगिनत नाम है जिनको हम यदि लेना चाहेंगे तो भी ले ना सकेंगे इस प्रोग्राम की समय सीमा में। इसलिए जिस उद्देश्य से हम इस प्रोग्राम को आज प्रसारित कर रहे हैं उस पहलू में आ जाते हैं और हम नाम लेते हैं हमारी आज की बहुत ही लोक प्रसिद्ध लोक सेवक, जन सेवक और जन कल्याण से जुड़ी हुई डॉक्टर रेणु खंडेलवाल। आज इस मंच से हम आपका मना रहे हैं जन्मदिन। जयपुर रेडियो की ओर से डॉक्टर रेणु खंडेलवाल को जन्मदिन की अनंत शुभकामनाएं।

0: सेलिब्रेशन का ये प्रोग्राम है, उसमें गीत भी होंगे, संगीत भी होगा, बात भी होगी और मुलाकात भी होगी। और आज हमारे संग है डॉक्टर रेणु खंडेलवाल, और आप एक कुशल चिकित्सक हैं और लोक सेवा में ही अपने जीवन को समर्पित किया है। तो सबसे पहले तो डॉक्टर साहब आपको बहुत बहुत बधाई जन्मदिन की कि आज हम एक ऐसी शख्सियत का जन्मदिन मना रहे हैं जो लोक सेवा से लोक कल्याण के मार्ग में जुड़ी हुई हैं। चिकित्सीय कौशल के साथ साथ आप एक सफल मनोवैज्ञानिक भी हैं, तो क्या कहेंगे जब लोग आपके पास आते हैं तो आप किस तरह से उसके दर्द को, उसकी पीड़ा को पहचानती हैं?
1: देखिए सर, जब कोई भी पेशेंट मेरे पास आता है तो वो अपनी जो कंप्लेंट्स बताता है तो उसको प्राइमरी तौर पे तो हम लोग एक बार डिटेल में इवैल्यूएट करने की कोशिश करते हैं, उसको उसी चीजें समझाते हैं कि भाई उसको क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, किस तरह की हो सकती है, और इवन उसको साइकोलॉजिकली सेटिस्फाइड भी हमें करना पड़ता है कि पेशेंट सेटिस्फाइड रहे और बहुत ज्यादा अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर के पैनिक नहीं हो और चीजों को समझे ताकि प्रॉपरली वो ट्रीटमेंट ले सके, उसको आगे कंटिन्यू कर सके।
0: बहुत सही। और इसके लिए जो है ना, आपके घर परिवार और बच्चों का और आसपास के लोगों का सहयोग भी मिलना जरूरी होता है कि आप एक सेवा कर्म में हैं तो उसमें कुछ आसपास का जो वातावरण है वो सहयोगी होना चाहिए। तो उसके लिए आप कैसे अपने आसपास के वातावरण को देखती हैं, कहती हैं और उसको अपनाती हैं?
1: मेरा जो अगर हम फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इस तरह की जो इंस्पिरेशन है आई गॉट फ्रॉम माई फादर एंड माई अंकल एंड आंट, एंड लेटर ऑन व्हेन आई गॉट मैरिड तो माई हस्बैंड इज वेरी सपोर्टिव। तो ये सब लोग हैं पीछे सपोर्ट में, जिनकी वजह से मैं रिलैक्स रहती हूँ और अपना फुल डेडिकेशन पेशेंट्स को दे पाती हूँ।
0: बिल्कुल, हमने अभी कभी भी आपके चेहरे पर सिकन नहीं देखी और चिंता नहीं देखी। वो लकीरें जो साथ लेके चलता है वो लोक सेवा के लिए उपयुक्त होना चाहकर भी नहीं हो सकता है, लेकिन आप में ऐसा कुछ नहीं देखा हमने, और आप पूरी तरह से समर्पित भाव से सेवा करती हैं। आपके यहां भी गाना गाते हैं और आपको कभी कभी यूं भी सुनाते हैं क्या?
1: हाँ, कई बार वो मुझे सुनाते भी हैं कि देख मैंने आज तेरे लिए गाना गाया है। सर पूरा रिकॉर्डिंग भी सुनाते हैं। बहुत अच्छा लगता है कि कोई आपके लिए इतने प्यार से कोई गाना गा रहा है, आप अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहा है, तो डेफिनेटली आप समझ सकते हैं। स्पेशली अगर आपका हस्बैंड आपको इस तरह से अपनी फीलिंग्स शेयर करता हो तो हाउ मच यू आर ग्रेटफुल फॉर गॉड कि आपने इतना लवली हस्बैंड मुझे दिया।

0: बहुत ही शुभकामनाएं हमारी ओर से, और कभी बदले में आप कुछ दो लाइनें सुनाती हैं जब आप भी गाती होंगी या फिल्में देखती होंगी, तो दो चार पंक्तियां तो आपके होठों पे जुबान पे आती होंगी।
1: देखिए मैं जब भी होती हूँ तो मुझे ये जरूरत है, तेरा साथ है कितना प्यारा, कम लगता है जीवन सारा, तेरे मिलन को अब।
0: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इस गाने को हम कंटिन्यू करते हैं।

0: हम श्रोताओं को बताते हैं कि आप सुन रहे हैं डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ल्ड, आपकी आवाज आपकी पहचान। और हमारे साथ जुड़ी हुई हैं लाइव शो में डॉक्टर रेणु खंडेलवाल। और रेणु खंडेलवाल एक डॉक्टर हैं, चिकित्सक हैं और लोक सेवा से जुड़ी हुई हैं। और हम अक्सर मिलते हैं आपसे, और जब भी मिलते हैं तो यूं लगता है कि और न जाने कब से आपको जानते हैं। ऐसा ही व्यवहार एक डॉक्टर का होना चाहिए, जो होना चाहिए वो डॉक्टर रेणु खंडेलवाल का है। तो डॉक्टर साहब, आपने ये गीत तो हमें सुनाया, और गीत के साथ साथ और आपके और कौन कौन से शौक हैं? खाना बनाना, कुकिंग, खेलना या कुछ और जो भी हैं वो भी हमारे श्रोताओं को बताएं।
1: सबसे ज्यादा जो मेरा होता है कि ठीक है, अपना रूटीन करने के बाद में अगर मेरा कोई बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा अगर आप हॉबीज की बात करते हैं तो फूड, हम इंडियंस कहते हैं ना कि आप जितना अच्छा फूड बनाएंगे परिवार को उतना करीब रख पाएंगे।
0: बिल्कुल।
1: तो जब भी मुझे टाइम मिलता है आई ट्राई कि डिफरेंट डिफरेंट टेस्टी डिशेस बनाऊं, घर वालों को खिलाऊं, तो सबको बहुत अच्छा लगे, वो मेरा सबसे ज्यादा फेवरेट हॉबीज में आ जाता।
0: बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया कि आपका जो साथ है वो और जो जीवन का सफर है वो सुहाना सफर, और ये मौसम हंसी वाला गीत जो है वो याद आता है आपकी बात सुन के। और खाने की बात के बाद आप हमें पढ़ने के बारे में बताएंगे, कभी आप

0: अर्ली एज में डिमेंशिया फॉरगेटफुलनेस के बहुत ज्यादा केस आ रहे हैं, और दूसरा होता है बच्चों में मेमोरीज का प्रॉब्लम। तो अगर आप बहुत ज्यादा इंटरनेट से या एआई से अगर आप अपना स्टडी मटेरियल या लेने की कोशिश करें, आप सोचें कि हम स्क्रीन टाइम पे पढ़े और वहां से हमें मेमोरी इंप्रूव होगी, तो ये बेसिकली आपकी मेमोरी को इंप्रूव नहीं करता, ये आपकी मेमोरी को डाउनग्रेड करता है। तो मेरे पास कोई भी स्टूडेंट अगर आता है तो मैं उसको कभी भी एडवाइस नहीं करती, ठीक है आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करिए लेकिन उसको प्रिंट आउट करिए और फिर उसको रीड करिए। प्रिंट आउट लेकर के आप रीड करेंगे तो वो ज्यादा आपकी मेमोरी में जाएगा और आपको ज्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट देगा, बजाय कि आप डायरेक्ट स्क्रीन से पढ़ के बस उसको वहीं पे डिजिटली सेव करें। सेम ओल्ड एज जो पीपल होते हैं जिनको कि लगता है कि अल्जाइमर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, तो मोस्टली जैसे अभी अगर आप करंट सिनेरियो में देखें तो आफ्टर 50 पे अल्जाइमर बढ़ रहा है, डिमेंशिया बढ़ रहा है। पहले अल्जाइमर अबाउट 70 ईयर्स पर होता था। अभी आप आज अगर आप किसी से बात करते हो आपको किसी के मोबाइल नंबर याद नहीं होंगे, आपको हर चीज के लिए मोबाइल नंबर। पहले जब की पैड के फोन होते थे तो आपको सबके नंबर पता होते थे, कम से कम 50 नंबर आप लोगों को याद होते थे। यहाँ पे हर आदमी को 50 नंबर याद हो जाते थे कि ठीक है उसका नंबर ये उसका नंबर ये, क्योंकि हर चीज आपके फोन डायरेक्ट सेव होती है।
1: मुझे अपना नंबर याद नहीं होता कई बार, अपना नंबर बताते हाँ, हुए मैं रुक जाता हूँ फिर याद करता हूँ।
0: तो ये जो अगर हम बहुत ज्यादा गैजेट फ्रेंडली हो रहे हैं तो करंट में डिमेंशिया और अल्जाइमर के पेशेंट बहुत बढ़ रहे हैं। तो मेरे पास जो भी पेशेंट आता है मैं उनको कहती हूँ ठीक है टेक्निक को आप अपनी सपोर्ट में लीजिए, बट इसको अपना रूटीन का पार्ट मत बनाइए, आप अपने ब्रेन को एक्टिव रखें। ब्रेन एक्टिव कब होगा? जब आप प्रैक्टिकली उसको वर्क करने देंगे। पका पकाए अगर आप ब्रेन को देंगे तो आपका ब्रेन वर्क ही नहीं करेगा। और इनडायरेक्टली क्या होता है कि वाइस एंड वर्सा ये आपके ब्रेन के जो न्यूरॉन्स होते हैं जो कि ओल्ड एज में डीजनरेट होते हैं वो अर्ली एज पे डीजनरेट होना शुरू हो जाते हैं। बच्चों में होता है कि वो मोबाइल से पढ़ लेते हैं, सब चीज पढ़ लेते हैं, अरे मैंने तो ये पढ़ लिया मैंने पढ़ी, पर मेमोरी कंसोलिडेटेड नहीं हो रही। जब कंसोलिडेटेड नहीं हो रही तो एट द टाइम ऑफ एग्जाम वो फॉरगेटफुलनेस शुरू हो जाती है, उनको एंग्जाइटी चालू हो जाती है, उनको कुछ रिकॉल नहीं हो रहा है। तो ये गैजेट का एक यूज करें पर स्मार्ट वे में यूज करें, लेकिन डायरेक्ट जो फिजिकल स्टडी मटेरियल है उस पर ज्यादा रिलाय करें।
1: बहुत सही फरमा रही हैं आप, और हम श्रोताओं को एक बार फिर बताना चाहेंगे कि आप सुन रहे हैं डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ल्ड, आपकी आवाज आपकी पहचान, और आज आवाज जो सुन रहे हैं वो है डॉक्टर रेणु खंडेलवाल की, और जो गीत सुन रहे हैं आप उनको गा रहे हैं आपके हबी। हम जानना चाहेंगे और सुनना चाहेंगे कि आप कौन सा गीत पसंद करती हैं, कौन सी फिल्में आप देखती होंगी पहले, तो अब तो किसी को जरूरत नहीं है, तो कोई किसी फिल्म का गीत यदि आपको याद हो तो दो लाइनें गाएंगी आप अपने हबी के लिए। एनीवेज

0: रहती हो।
1: बहुत सही, बहुत ही खूबसूरत आवाज है आपकी। हम सुनते हैं ये खूबसूरत गीत, और हमारे पास हैं, हमारे साथ हैं डॉक्टर रेणु खंडेलवाल अपने हबी के साथ। और ये तो आपने गाया, और लोकेश जी क्या कह रहे हैं वो सुन लेते हैं।

0: और पल पल दिल के पास रहते हैं ये कैसे रिश्ते, और इन रिश्तों में माँ बाप बहन भाई सास ससुर न जाने कितने लोग हमारे आसपास चारों ओर रहते हैं और हम उनसे बात करते हैं, उनके साथ जीते हैं और जीने का अंदाज भी उन्हीं से सीखते हैं। क्या कह रहे हैं
1: प्यारी बिटिया, डॉक्टर रेणु को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई।
2: ईश्वर तुम्हें हमेशा खुश और स्वस्थ रखे और ढेरो आशीर्वाद।
3: आपका जीवन सुखमय हो। डॉक्टर रेणु खंडेलवाल को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन सुखमय हो, मंगलमय रहे। मैं संजय गुर्जर, राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर।
4: हेलो भाभी जी, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसे ही आशीर्वाद बना के रखिए और हमारी शुभकामनाएं आपके लिए।
5: विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे डियर भाभी, हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
6: हैप्पी बर्थडे डॉक्टर भाभी, आज का दिन खास है क्योंकि आज उस शख्स का बर्थडे है जिसने हमारे दोस्त की जिंदगी खूबसूरत बना रखा है। भगवान आपको हमेशा खुश रखे, चेहरे पर मुस्कान बनाए रखे और आपके सारी इच्छाएं पूरी हो। ढेर सारे जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं राकेश।
0: ये शुभकामनाएं राकेश जी दे रहे थे। और
7: हैप्पी बर्थडे छोटी नानी,
8: विश यू हैप्पी बर्थडे दादी।
9: Many many happy returns of the day. May God always provide you the most precious thing in life, health, wealth, happiness and prosperity. Happy birthday to you, Mami ji.
2: जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं भाभी जी। आपकी जिंदगी में हमेशा खुशियां बनी रहे, आप ऐसे ही हंसती रहो, मुस्कुराती रहो। जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं भाभी जी, हमेशा ऐसे ही हंसती रहो, मुस्कुराती रहो, आपके जीवन में हमेशा खुशियां बनी रहे।
10: को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज का दिन आपके जीवन में खुशियां और प्यार लेकर आए। मैं दुआ करती हूं कि आपका जीवन हमेशा प्यार, सफलता और शांति से भरा रहे। आप हमारी जिंदगी का अनमोल हिस्सा है। हैप्पी बर्थडे भाभी।
2: जन्मदिन की बहुत बहुत शुभ।
0: आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में और आपसे जानना चाहेंगे हम कि दवा जो है आज के युग में बहुत ज्यादा ली जाती है और हमारा जो करंट सिनेरियो है वो ये कह रहा है कि आप इन दवाओं पे डिपेंडेंट न रह के प्रकृति पे या आयुर्वेद पे या योगा पे, तो इसको आप इसके साथ कैसे कोरिलेट करके लोकहित के लिए।
11: जो पेशेंट आता है ना प्राइमरी तौर पर
0: जी,
11: मैं उसको हमारे जो ओल्ड एज के अगर हमारे पूर्वज हैं उनका जो लाइफस्टाइल था
0: जी,
11: मैं उसकी तरफ ज्यादा मोटिवेट करती हूँ। पर्टिकुलरली किसी आयुर्वेद को रिकमेंडेशन डायरेक्ट नहीं करती हूँ, लेकिन जो लाइफस्टाइल है, अगर हमारे ओल्ड एज को अगर हम देखें, हमारे अगर हम हमारे दो पीढ़ी से पहले एक पीढ़ी पहले की भी अगर हम देखते हैं, तो उनका जो लाइफस्टाइल है अगर हम उसको बारीकी से देखें तो फिजिकल वर्क अच्छा है उनका, ठीक है। दूसरा, हर चीजों को अगर आपने उनको देखा होगा तो दे टुक थिंग्स वेरी लाइटली, बहुत ज्यादा पैनिक नहीं होते। तीसरा, उनका जो खानपान है वो सीजन के अकॉर्डिंग और आपके जिस क्लाइमेट एरिया में रहते हैं उसके अकॉर्डिंग होता है। तो अगर हम हमारे फूड को, हमारी एक्टिविटीज को और हमारी लाइफस्टाइल को तीनों के अकॉर्डिंग अगर हम चेंज कर लेते हैं तो हमें आज की जो प्रॉब्लम्स हैं देखा जाए तो उसमें 60-70% हमें रिलैक्सेशन मिल सकता है।
0: बिल्कुल, बहुत सही फरमा रही हैं।
11: हम हमारी सीजन में किसी नहीं खाते हैं। आज अगर हम देखते हैं पेशेंट्स को पूछते हैं, मैडम इस मौसम में या कभी मौसम, मैडम मैं अनार खाऊं या खाऊं, मेरा कभी कोई क्राइटेरिया नहीं होता कि आप बहुत हैवी फूड खाइए, कि हर सीजन में हर विटामिंस को लेकर के कोई ना कोई एक ऐसी सब्जी या ऐसा फ्रूट आता है जो कि बहुत ही सस्ता मिलता है और बहुत इजीली मिलता है। तो जो भी जिस सीजन में फूड खाया जाता है, चाहे वो किचन में कुकिंग का हो, चाहे फ्रूट्स का हो, चाहे वो वेजिटेबल्स का हो
0: जी।
11: तो आप जिस क्लाइमेट में रहते हैं, जिस सीजन में जो सबसे इजीली मिलता है, आप उसको अच्छे से खाइए। आप फिजिकल वर्कआउट करिए, हर चीज के लिए आप मशीनरी पे या स्कूटर पे या इन पे कार पे डिपेंडेंट नहीं रहिए। अपने छोटे छोटे काम खुद से करना शुरू करिए, चीजों को बैलेंस करना शुरू करिए, पैनिक मत होइए। हर चीज को खुद से करने की जरूरत नहीं होती, चीजों को कई बार फैमिली में डाइवर्ट भी करना पड़ता है, चीजों को प्रायोरिटाइज करना पड़ता है कि कौन सी चीज प्रायोरिटी पे है, कौन सी चीज को हम थोड़ा सा डाउन में रख सकते हैं। तो अगर हम ये तीनों पार्ट ऑफ लाइफ को अगर हम बैलेंस करेंगे तो फिजिकल मेंटल हेल्थ हमारी अच्छी रहेगी, और जब फिजिकल और मेंटल हेल्थ होगी तो डेफिनेटली मेडिसिन की नीड्स कम होगी।
0: बहुत सही फरमा रहे हैं आप, और अब सुन लेते हैं उनकी बात जो आपके लिए कुछ कहना चाहते हैं, और इसके बाद हम ये गीत सुनते हैं और अब फिर से बात करते हैं। डॉक्टर रेणु खंडेलवाल हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, एक बात बहुत ही महत्वपूर्ण है जो हम पूछना चाह रहे थे आपसे, और आज हमें अवसर मिला है तो क्यों ना हम इस बात पे भी कुछ आपकी राय ले लें कि कोरोना से पहले जो कोरोना काल आया था 2020 से पहले, जो मानव का बिहेवियर था, उनके सोचने की, उनके बात करने की, जो कुछ है उनके याददाश्त की, जो भी व्यवहार विज्ञान था वो, और आज उसके बाद में जो लोग बचे हैं या जो पीढ़ी बड़ी हो रही है, उनके बिहेवियर में कुछ बदलाव आया है क्या? आपने कभी नोटिस किया इस बात को?
11: देखिए, शुरू में तो आफ्टर कोरोना 2-3 इयर्स तो थोड़ा सा लग रहा था कि लोगों ने अपनी चीजों को चेंज किया है
0: जी।
11: अगर हम बात करें तो 2021 तक जैसे कोरोना का एक पीरियड चल रहा था
0: जी।
11: तो व्हाट आई फेल्ट कि 2024 और इनिशियल इयर्स ऑफ 2025 या 24 ही आ जाएंगे
0: जी।
11: तो लोगों का जो सोच का पैटर्न था वो थोड़ा चेंज हो गया था कि दे वर विलिंग कि यू नेवर नोज कि कब क्या हो जाए। तो लोग थोड़ा सा एम्पैथेटिकली और लोगों के लिए अच्छा करते थे, लोग अपने लिए जीना शुरू कर दिया था, लोगों ने सबसे रिलेशंस बनाने शुरू कर दिए थे, लोगों को आइसोलेशन का मतलब समझ में आ गया था। तो देखा जाए तो एक फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जो कनेक्टिविटी थी वो बढ़ गई थी, क्योंकि लॉक इन पीरियड में जब लोग बहुत अकेले रहे तो उनको समझ में आया कि अकेलापन क्या चीज होती है। सडनली आपकी फैमिली में जो डिमाइसेस हुए, आपकी लाइफ की अनसर्टेनिटी क्या है, कोई सर्टेनिटी नहीं है, सडनली एवरीथिंग कैन गोन, आपको पता ही नहीं चलेगा। आप बहुत ज्यादा मनी माइंडेड हो रहे हैं लेकिन सडनली यू हैव लॉस्ट एवरीथिंग, जब ह्यूमन ही नहीं है तो आप करेंगे क्या उस मनी का। तो लोगों ने उस समय काफी चीजों में चेंज किया था, अपनी पर्सनालिटीज में, अपने थॉट्स में, और उसमें बट पीपल आर पीपल सो अगेन दे आर गोइंग टू बैक।
0: हाँ बिल्कुल, आफ्टर उसके हमने ये पाया है या हमने बारीकी से जब हम देखते हैं तो लगता है कि लोग असहिष्णु हो गए हैं और सेल्फिश हो गए हैं और बहुत सारे अपने में संकुचित होते जा रहे हैं। हो सकता है मेरे आसपास का वातावरण ऐसा हो, लेकिन मैंने कई जगह नोटिस किया है, चाहे वो एयरपोर्ट हो, चाहे रेलवे स्टेशन हो, चाहे बस स्टैंड हो, सब लोग जो हैं वो कहीं किसी संकुचाहट में सिर्फ अपने सेल्फ सेंटर वाली बात जो है वो उनके साथ हो रही है या हो चुकी है, ऐसा कुछ कभी कभी लगता है।
11: हाँ वही तो मैं कह रही हूँ कि उस वक्त लोग हेल्पिंग में आ गए थे एकदम,
0: बिल्कुल
11: काफी चेंजेस हो गए, बट अगेन दे आर मूविंग बैक साइड,
0: यानी भूल गए हैं वो।
11: हाँ दे हैव फॉरगॉटन दैट पार्ट कि सडनली ऐसा कुछ हो सकता है। वी फेल्ट इवन वी वर लकी कि हम उस डिजास्टर से बाहर निकले हैं।
0: बिल्कुल, तो बात निकली थी तो यहां तक पहुंच गई, और क्योंकि हम आज मना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं जयपुर रेडियो के इस मंच पर डॉक्टर रेणु खंडेलवाल के हैप्पी वाले बर्थडे को, तो आइए सुनते हैं ये खूबसूरत गीत।
12: वैवाहिक जीवन के शुरुआती दिनों में कुछ जिम्मेदारियों और दायित्वों का निर्वहन करना होता है, तर हर व्यक्ति को अपने विवाह के पूर्व के स्वतंत्रता, आजादी, यार दोस्तों के साथ की गई मस्ती के दिन याद आने लगते हैं। ऐसे ही दोस्तों के साथ मिलकर मस्ती में पुराने दिनों को याद करना और विवाह के तुरंत बाद की स्थिति को दोस्तों की याद में और फिर वो जीवन का सबसे खूबसूरत पल जो ईश्वर ने हमें सुधांश के रूप में अपार खुशियां दी, उसके बाद वैवाहिक जीवन में सपनों का तूफान आ गया, उन अभिव्यक्तियों को इस गीत के माध्यम से हम प्रस्तुत कर रहे हैं।

0: रिमझिम सावन की बात कर रहे थे लोकेश जी इस प्रोग्राम में। आप सुन रहे हैं डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ल्ड, आपकी आवाज आपकी पहचान। और आज का ये सुरीला पैगाम लेके आए हैं हमारे साथ हमारे संग डॉक्टर रेणु खंडेलवाल और लोकेश खंडेलवाल। अब दोनों का फिर से वेलकम है, स्वागत है। क्या कहेंगे लोकेश जी?
1: सर्वप्रथम मैं सभी श्रोताओं को जो जयपुर रेडियो को सुन रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, साथ ही उन सभी सम्मानीय गुणों को जिन्होंने आज हमारे दिन को विशेष दिन बनाने में अपना अमूल्य समय देकर सहयोग दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक आभार। एक डॉक्टर और एक वकील पति पत्नी का तालमेल, वैचारिक तालमेल बैठाना बहुत ही कठिन होता है, फिर भी हमने हंसी खुशी अपना जीवन निर्वहन कर सभी जिम्मेदारियों दायित्वों को निभाया है। आज मैं कुछ पंक्तियाँ हमारे प्रोफेशन जीवन के आधार पर अपनी डॉक्टर पत्नी के नाम पर सुना रहा हूँ। मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत डॉक्टर के नाम, तुम मरीजों का दर्द समझकर उनका इलाज करती हो और मेरी हर परेशानी को बिना कहे समझ लेती हो। मैं अदालत में लोगों के हक की पैरवी करता हूँ, लेकिन मेरी जिंदगी में मेरा सबसे खूबसूरत फैसला तुम हो। तुम्हारी हर मुस्कान मेरी सबसे मजबूत दलील है और तुम्हारा साथ मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत फैसला। जन्मदिन मुबारक हो मेरे डॉक्टर साहिबा, मेरी दोस्त, मेरी पत्नी और मेरी सबसे खूबसूरत जिंदगी। मैं आज इस खुशी के मौके पर अपने वैवाहिक जीवन से जुड़े कुछ खुशी के पलों को आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले जब हम शादी से पहले मिले थे, तब की मेरी अभिव्यक्ति इस गाने के माध्यम से अभिव्यक्त कर रहा हूँ।

हमारे समय में प्रेम पत्रों का दौर आखिरी सांसें गिन रहा था, क्योंकि मोबाइल क्रांति आ गई थी। फिर भी मैंने एक प्रेम पत्र मेरी पत्नी डॉक्टर रेणु खंडेलवाल के नाम पर लिखा। उसकी अभिव्यक्ति मैं उक्त गीत के माध्यम से आपके समक्ष पेश कर रहा हूँ। धन्यवाद।

पत्र के बाद में वो शुभ घड़ी भी आ गई जब हमारा विवाह हुआ और हमने जीवन मरण के 7 वचन लेकर जीवन पर्यंत एक दूसरे के साथ रहने का निश्चय किया। उन 7 वचनों को मैं अभिव्यक्त करना चाहता हूँ।

0: वाह लोकेश जी, कमाल, बेमिसाल, क्या कहें, लफ्ज नहीं मिल रहे हमें। और अब उन सब रिश्तेदारों की शुभकामनाएं डॉक्टर रेणु खंडेलवाल के नाम जो हमें प्राप्त हुई हैं, हम सुनवाना चाहेंगे।
1: So happy birthday, ma. Thank you for everything which you have given to me. Also, यहाँ hostel में कभी कभी ऐसे moments होते हैं जब मेरी कभी आपकी बहुत ज़्यादा याद आती है, एंड आपकी हर छोटी बड़ी चीज, स्पेशली आपकी चिक चिक वगैरह, वो सब बहुत ज़्यादा याद आता है। एंड मैं शायद हमेशा एक्सप्रेस नहीं कर पाता, बट आई लव यू अ लॉट। बस आप ऐसे ही रहना, खुश रहना एंड मेरी केयर करते रहना। वंस अगेन हैप्पी बर्थडे, थैंक यू, लव यू।
2: हमारे परिवार की लाडली बहू सम्माननीय डॉक्टर रेणु को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आप सदैव हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। आपका स्नेह और सानिध्य सदैव बना रहे। ईश्वर आपको सभी खुशियां दे। शुभ आशीर्वाद।
3: बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, हमेशा खुश रहो। जन्मदिन की हार्दिक बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, हमेशा खुश रहो।
4: हैप्पी बर्थडे डॉक्टर साहब, जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयां हो। आप और मेरा हमेशा साथ बना रहे। आप मेरे फोन को हमेशा अटेंड करती रहिए, मैं आपको हमेशा परेशान करती रहूंगी।
5: मेरी प्यारी भाभी जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं।
6: मेरी प्यारी जिठानी जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आप अपने जीवन से लोगों को ऐसे ही अप्रिशिएट करते रहें।
5: मेरी प्यारी भाभी जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं।
7: विशिंग यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे ताई जी, मे गॉड ब्लेस यू विद अबंडेंट हेल्थ, जॉय एंड पीस इन द कमिंग ईयर। थैंक यू फॉर ऑलवेज गाइडिंग अस विद योर लव एंड वार्मथ। हैप्पी बर्थडे।
8: वो जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज का दिन आपके जीवन में खुशियां और प्यार लेकर आए। मैं दुआ करती हूं कि आपका जीवन हमेशा प्यार, सफलता और शांति से भरा रहे। आप हमारी जिंदगी का अनमोल हिस्सा हैं। हैप्पी बर्थडे भाभी।
9: जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं भाभी जी, हमेशा ऐसे ही हंसती रहो, मुस्कुराती रहो, आपके जीवन में हमेशा खुशियां बनी रहे। जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं भाभी जी, हमेशा ऐसे ही हंसती रहो, मुस्कुराती रहो, आपके जीवन में हमेशा खुशियां बनी रहे। जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं भाभी जी, आपकी जिंदगी में हमेशा खुशियां बनी रहे, आप ऐसे ही हंसती रहो, मुस्कुराती रहो।
10: मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। मे गॉड ऑलवेज प्रोवाइड यू द मोस्ट प्रीशियस थिंग इन लाइफ, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी। हैप्पी बर्थडे टू यू मामी जी।
11: विश यू हैप्पी बर्थडे दादी। विश यू हैप्पी बर्थडे दादी। विश यू हैप्पी बर्थडे दादी।
12: छोटी नानी, हैप्पी बर्थडे छोटी नानी।
0: कौन क्या कह गया हमें मालूम नहीं, आवाज यदि आप पहचाने तो पहचान सकते हैं, लेकिन शुभकामनाएं हैं। कोई आपका पेशेंट है, कोई आपका रिश्तेदार है, कोई आपके परिवार से है, कोई समाज से है, और कोई जो कुछ भी है वो हमारे चारों तरफ रहते हैं। उनके आवाजों को हम एक बार नहीं, दो बार सुन के तो पक्का पहचान ही लेते हैं। तो बहुत शुभकामनाएं हमारी ओर से भी आपको इस गीत के साथ।

0: सर आप सब लोगों का आशीर्वाद और प्यार हमेशा बना रहे और सब लोग हंसी खुशी रहेंगे, यही चाहूंगी।
1: बहुत शुक्रिया,
0: बहुत बहुत धन्यवाद इस मंच पर इंट्रोड्यूस कराने के लिए।
1: बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार कि आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए। और सभी जो लोग जुड़े रहे हम उनके नाम लेना चाहेंगे, और अब हम उन सभी श्रोताओं के नाम लेना चाहेंगे जो प्रोग्राम सुन रहे थे और सुन के हमें अपने फीडबैक प्रेषित कर रहे थे। आप हैं कोलकाता से श्याम बिहारी शर्मा, फाल्गुनी दवे जूनागढ़ गुजरात से, लोकजीत दास असम से, सुप्रिया सिंह सोनीपत हरियाणा से, मधुबी चटर्जी वेस्ट बंगाल से, मंदाकिनी शाह वडोदरा गुजरात से, समृद्धि चतुर्वेदी आप हैं सियाटल यूएसए से, जीना चौधरी पंजाब से, राकेश कन्नौजिया जगह का नाम नहीं लिखा है, साक्षी मेंडिकर नागपुर महाराष्ट्र से, सोनल पारिख जूनागढ़ गुजरात से, नेहा मूल चंदानी अजमेर राजस्थान से, अनीता दुगड़ नेपाल से, डोली श्रीवास्तव और प्रीति लखनऊ से, मुकेश पुरी जगह का नाम नहीं लिखा है, सुधीर सूरे, सतीश देपाल, मीता सराकर और राजीव बिहारी, आप सबका बहुत बहुत आभार। सुनते रहें जयपुर रेडियो, बार बार आपकी आवाज आपकी पहचान।

जयपुर से निकली गाड़ी दिल्ली चले हल्ले हल्ले दिदिन तिनक दिन दिदिन तिनक दिन। अरे हल्ले हल्ले क्यों, जल्दी जल्दी डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से जयपुर रेडियो ऐप अभी इसी वक्त और आनंद लीजिए अपने मन पसंद गीतों का कहीं भी कभी भी। जयपुर रेडियो आपका अपना रेडियो, कहीं भी कभी भी। जयपुर रेडियो आपका अपना रेडियो।

0: to be sad now. You can do all of this on a click away through Jaipur Radio. Send messages and dedicate your favorite songs to your loved ones on your favorite program. Your voice, your identity. So what are you waiting for? Download Jaipur Radio app through Play Store and tune into your favorite songs. Celebrate your special occasion only on your own radio, Jaipur Radio.
1: स्वर जगत के सभी सुधी सिंगर्स को आरजे भूमिका का अभिवादन। मैं अपने वादे के मुताबिक हाजिर हूँ अर्चु रानू के साथ। मैं आवाज हूँ तो तू है गीत मेरा, आवाज की बात अर्चु रानू के साथ। और साथ होंगे वो सभी सिंगर्स जिनका नाम मैं अनाउंस करने वाली हूँ, और सबसे सुरीले सिंगर को हम देंगे वो अवसर, वो मौका जो आप पाना चाहते हैं इस मंच पर, इस प्रोग्राम में, जिसका नाम है मैं आवाज हूँ तो तू है गीत मेरा। तो युगल गीतमाला के इस प्रोग्राम में आपको बनना पड़ेगा इस प्रोग्राम का मीत। और इस प्रोग्राम में हमारे आज के स्मूलियन सिंगर्स हैं विशाल उम्मट, रिचविन 73, बबलू आर्य, स्मूलियन 4865-8960 और अंटो रास। आपको चयन करना है उस सबसे सुरीले को सिंगर को जिसने अर्चु रानू के संग सबसे बेस्ट सिंगिंग की है, और उसी को मिलेगा इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने का ऐसा ही सुरीला सुअवसर। तो बिना देर किए करते हैं गीतों की शुरुआत सुपर सिंगर अर्चु रानू के संग, और याद करते हैं भूली बिसरी गीतों में कहानी अंटो रास और अर्चु रानू के संग।

आने का वादा किया और हम आ भी गए आपके लिए लेकर गीतों की कहानी। आपने सुना अंटोरास और अर्जुन रानू को यानी अर्चना अग्रवाल को, और अब सुनते हैं विशाल उम्मट को अर्जुन रानू के संग गीत अब तेरे बिन जी लेंगे हम में।

जीते रहिए और गीतों की सुधा पीते रहिए। क्या हुआ जो एक दिल टूट गया, बिल्कुल चौंकिए मत, हम टूटने की बात नहीं करते हैं, हम तो गीतों से जोड़ने की बात करते हैं, स्वर में स्वर मिलाने की बात करते हैं और आवाज में अमृत घोलने की बात करते हैं। और इसी बात की साक्षी हूँ मैं, आरजे भूमिका, आप सभी के साथ। और मेरे साथ है अर्चू रानू 16। आपने सुना अर्चू रानू के संग विशाल उम्मट को, और अब गली के चांद से बात कर ही लेते हैं विशाल उम्मट के साथ अर्चू रानू 16।

चांदी जैसी चमकती आवाज और प्रतीक्षा या यूं कहे कि इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई और गली में या ये भी कह सकते हैं कि अर्जुन के संग विशाल उम्मत की आवाज हमने आते सुनी गाते सुनी। और इस प्रोग्राम में जिसका नाम है मैं आवाज हूँ तो तू है गीत मेरा, में आप किसको चांद घोषित करना चाहते हैं ये आप पे डिपेंड करता है, आप सभी लिसनर्स पे डिपेंड करता है। और इसके लिए आप हमें हमारे नंबर 9352784724 और 9414084901 पर अपनी राय दे सकते हैं। और अब अपनी आवाज में अर्जु रानू किसका दिल चुरा रही हैं? शायद स्मूलियन 4865-8960 का। तो आइए सुनते हैं स्मूलियन और अर्जु रानू को।

ना बहाना बनाएंगे और ना हम चुराएंगे, हम तो बिल्कुल आपके गीतों के साथ इसी तरह जुड़े रहेंगे इस प्रोग्राम के अंतिम छोर तक, और सुनते रहेंगे इसी तरह जिस तरह आपने सुना अर्चू और स्मूलियन 4865-8960 को। और अब हम सुनेंगे लगातार तीन गीत, और इन तीनों गीतों में अर्चू रानू 16 का साथ देंगे रिचविन 73। जमाने के देखे हैं रंग हजार,

के तीन सुरीले गीतों के बाद हम यही कहेंगे कि जी हाँ, सिंगिंग से प्यार करने वाले इसी तरह गीतों को प्यार करते हैं और अपनी आवाज में आवाज मिलाकर गीत को चलने फिरने वाला, आपसे बातें करने वाला वो शख्स बना देते हैं जिसे आप बार बार सुनना चाहते हैं। जयपुर रेडियो की सिंगर, एक और सुरीले सिंगर।

डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, जहां मिलती है आपकी आवाज को पहचान, यानी आपकी आवाज आपकी पहचान। सच्चे प्रेम की अमर कहानी लेकर आए हैं अपने गीत के माध्यम से अनुराग, मुंबई से हमारे साथ इस मंच के मेल सिंगर।

गाना बना दिया। और यही है कमाल, अनुराग का आप सुन रहे हैं मैं आवाज हूं तो तू है गीत मेरा। और सच में अपनी आवाज में दो आवाजों को एक आवाज में गा दिया है, कमाल किया है अनुराग ने इस मंच के मेल सिंगर। और आइए आप सुनते हैं प्रोग्राम का अगला सॉन्ग। आपकी आवाज आपकी पहचान का ये मंच, आप सुन रहे हैं डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ल्ड।

दिल में छुपी बात को बताना पड़ेगा तो हमें आपकी आवाज को दिल में बसाना पड़ेगा। आप सुन रहे हैं जयपुर रेडियो वर्ल्ड, आपकी आवाज आपकी पहचान। प्रोग्राम में आवाज हूँ तो तुझे गीत मेरा सजीली पेशकश के साथ।

मैं आवाज हूँ तो तू है गीत मेरा का ये नया संस्करण सुन रहे हैं आप। आपकी आवाज आपकी पहचान। अनुराग गा रहे थे ये सुरीला गीत और इसी के साथ इस प्रोग्राम से हमें अनुमति दें।

डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, जहां मिलती है आपकी आवाज को पहचान, यानी आपकी आवाज आपकी पहचान। डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का ये जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, आपकी आवाज आपकी पहचान। प्रस्तुत है प्रोग्राम भक्ति प्रवाह। भक्ति प्रवाह के इस अंक में हमारे साथ हैं लखनऊ की अनुपमा जौहरी। अपने सुरीले भजनों के साथ अनुपमा जौहरी का वेलकम है, स्वागत है, अभिनंदन है। अनुपमा अपनी स्वर से राम भजन, कृष्ण भजन, मीरा भजन और सब तरह के भजन गाती हैं, और आज इस मंच पर हम आपका अभिनंदन कर रहे हैं इस प्रोग्राम में जिसका नाम है भक्ति प्रवाह। आइए भक्ति के

0: संत तुलसीदास के इस सुरीले पद को हमने सुना और ऐसा लगता है जैसे स्वयं तुलसीदास रघुवर की छवि देखकर उसे निहारते हुए अपने शब्दों में इस शोभामान बाल राम की लीला गा रहे हैं। अपने मधुर स्वर से हमें आनंदित किया अनुपमा जौहरी ने लखनऊ से।
1: डिजिटल वॉइस वर्ल्ड के जयपुर रेडियो वर्ल्ड से आप सुन रहे हैं प्रोग्राम भक्ति प्रवाह और भक्ति की अनुपम कहानी लेके आई हैं अपने स्वर के साथ अनुपमा जौहरी लखनऊ से। राम के बाल चित्रण के इस सुंदर सौम्य वर्णन के बाद अपने स्वर में गोविंदा कन्हैया कान्हा मनमोहन के बाल प्राकट्य का अद्भुत चित्रण कर रही हैं हमारी आज की सुरीली सिंगर अनुपमा जौहरी। आइए सुनते हैं।

हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की, ये कह रही थी अपने स्वर में अनुपमा जौहरी, आज के भक्ति प्रवाह की गायिका अनुपमा। और अब चलते हैं अयोध्या के कनक भवन में और वहां होली का समारोह चल रहा है। सिया और रघुवीर दोनों रंग से सराबोर है, के साथ हमारे साथ हैं अनुपमा जौहरी।

डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का ये जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, आपकी आवाज आपकी पहचान। और आज हमारे संग है डॉक्टर रेणु खंडेलवाल।

छेड़ी होगी। सूरज ने जब उजाले की बात धरती के कानों पर कही होगी और हवा ने जब अपना आंचल लहराया होगा, इस धरा पर, इस धरती पर कुछ ऐसी विभूतियां अवतरित हुई जिनका नाम हम लेना चाहेंगे। वैसे तो 12 महीने होते हैं, लेकिन जो सितंबर होता है उसका बहुत बड़ा अंबर होता है, पूरी धरती को आच्छादित कर देता है। समंदर समाहित हो जाते हैं, बादल उड़ते रहते हैं, वृक्ष टहनियां सब हरे हरे पत्तों और फूलों से लदी रहती हैं। और ऐसे सितंबर में कृष्ण जैसे लोक कल्याण के लिए अवतार का पृथ्वी पर अवतरित होना, साहित्य हो, संगीत हो, या फिर लोक नीति या दर्शन हो, इस मंथ में जो भी इस धरती पर उतरा है उसने सच में कमाल किया है, बेमिसाल किया है। आज हम उन विभूतियों के नाम लेना चाहेंगे इस मंथ में, यानी सितंबर माह में इस धरा पर अवतरित हुए, जन्म लिया है और अपने जन्म को सार्थक किया है। इस मंथ में जो भी लेता है जन्म, वो लोकहित के लिए, लोक कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित करता है। कृष्ण भी ऐसे ही समय में पैदा हुए और राधा रानी भी इन्हीं दिनों धरती की शोभा बनी। जिनका भी नाम लें वो सच में महान विभूतियां हैं। हमने एआई से पूछा, क्या आप हमें सितंबर माह में इस धरती पर अवतीर्ण हुई विभूतियों के नाम बताएंगे? उन्होंने बड़े चाव से हमें बतलाया, हिंदी के प्रथम कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र, बहुत ही लोकप्रिय उर्वशी के रचयिता रामधारी सिंह दिनकर, महान समाज सुधारक ईश्वरचंद विद्यासागर, दर्शन और राजनीति के प्रणेता डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, स्वामी प्रभुपाद और फारसी सूफी कवि रूमी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, शहीद भगत सिंह और हमारी रेडियो और बॉलीवुड की स्वर कोकिला लता मंगेशकर, एमएस सुब्बुलक्ष्मी, दोनों गायिका भी और दिल में दुनिया को रखने वाली भी, हमारे लोक कल्याण के नायक हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, न जाने कितने अनगिनत नाम है जिनको हम यदि लेना चाहेंगे तो भी ले ना सकेंगे इस प्रोग्राम की समय सीमा में। इसलिए जिस उद्देश्य से हम इस प्रोग्राम को आज प्रसारित कर रहे हैं उस पहलू में आ जाते हैं और हम नाम लेते हैं हमारी आज की बहुत ही लोक प्रसिद्ध, लोक सेवक, जन सेवक और जन कल्याण से जुड़ी हुई डॉक्टर रेणु खंडेलवाल। आज इस मंच से हम आपका मना रहे हैं जन्मदिन। जयपुर रेडियो की ओर से डॉक्टर रेणु खंडेलवाल को जन्मदिन की अनंत शुभकामनाएं।

0: सेलिब्रेशन का ये प्रोग्राम है, उसमें गीत भी होंगे, संगीत भी होगा, बात भी होगी और मुलाकात भी होगी। और आज हमारे संग है डॉक्टर रेणु खंडेलवाल, और आप एक कुशल चिकित्सक हैं और लोक सेवा में ही अपने जीवन को समर्पित किया है। तो सबसे पहले तो डॉक्टर साहब आपको बहुत बहुत बधाई जन्मदिन की कि आज हम एक ऐसी शख्सियत का जन्मदिन मना रहे हैं जो लोक सेवा से लोक कल्याण के मार्ग में जुड़ी हुई हैं। चिकित्सीय कौशल के साथ साथ आप एक सफल मनोवैज्ञानिक भी हैं, तो क्या कहेंगे जब लोग आपके पास आते हैं तो आप किस तरह से उसके दर्द को, उसकी पीड़ा को पहचानती हैं?
1: देखिए सर, जब कोई भी पेशेंट मेरे पास आता है तो वो अपनी जो कंप्लेंट्स बताता है तो उसको प्राइमरी तौर पे तो हम लोग एक बार डिटेल में इवैल्यूएट करने की कोशिश करते हैं, उसको उसी चीजें समझाते हैं कि भाई उसको क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, किस तरह की हो सकती है, और इवन उसको साइकोलॉजिकली सेटिस्फाइड भी हमें करना पड़ता है कि पेशेंट सेटिस्फाइड रहे और बहुत ज्यादा अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर के पैनिक नहीं हो और चीजों को समझे ताकि प्रॉपरली वो ट्रीटमेंट ले सके, उसको आगे कंटिन्यू कर सके।
0: बहुत सही। और इसके लिए जो है ना, आपके घर परिवार और बच्चों का और आसपास के लोगों का सहयोग भी मिलना जरूरी होता है कि आप एक सेवा कर्म में हैं तो उसमें कुछ आसपास का जो वातावरण है वो सहयोगी होना चाहिए। तो उसके लिए आप कैसे अपने आसपास के वातावरण को देखती हैं, कहती हैं और उसको अपनाती हैं?
1: मेरा जो अगर हम फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इस तरह की जो इंस्पिरेशन है I got from my father and my uncle and aunt. And later on when I got married, so my husband is very supportive. तो ये सब लोग हैं पीछे सपोर्ट में, जिनकी वजह से मैं रिलैक्स रहती हूँ और अपना फुल डेडिकेशन पेशेंट्स को दे पाती हूँ।
0: बिल्कुल, हमने अभी कभी भी आपके चेहरे पर सिकन नहीं देखी और चिंता नहीं देखी। वो लकीरें जो साथ लेके चलता है वो लोक सेवा के लिए उपयुक्त होना चाहकर भी नहीं हो सकता है, लेकिन आप में ऐसा कुछ नहीं देखा हमने, और आप पूरी तरह से समर्पित भाव से सेवा करती हैं। आपके यहां भी गाना गाते हैं और आपको कभी कभी यूं भी सुनाते हैं क्या?
1: हाँ, कई बार वो मुझे सुनाते भी हैं कि देख मैंने आज तेरे लिए गाना गाया है। सर वो पूरा रिकॉर्डिंग भी सुनाते हैं। बहुत अच्छा लगता है कि कोई आपके लिए इतने प्यार से कोई गाना गा रहा है, आप अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहा है, तो डेफिनेटली आप समझ सकते हैं, स्पेशली अगर आपका हस्बैंड आपको इस तरह से अपनी फीलिंग्स शेयर करता हो तो हाउ मच यू आर ग्रेटफुल फॉर गॉड कि आपने इतना लवली हस्बैंड मुझे दिया।

0: बहुत ही शुभकामनाएं हमारी ओर से। और कभी बदले में आप कुछ दो लाइनें सुनाती हैं, जब आप भी गाती होंगी या फिल्में देखती होंगी तो दो चार पंक्तियां तो आपके होठों पे जुबान पे आती होंगी।
1: देखिए मैं जब भी होती हूँ तो मुझे ये जरूरत है, तेरा साथ है कितना प्यारा, कम लगता है जीवन सारा, तेरे मिलन को अब
0: बहुत बढ़िया। इस गाने को हम कंटिन्यू करते हैं।

0: हम श्रोताओं को बताते हैं कि आप सुन रहे हैं डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ल्ड, आपकी आवाज आपकी पहचान। और हमारे साथ जुड़ी हुई हैं लाइव शो में डॉक्टर रेणु खंडेलवाल। और रेणु खंडेलवाल एक डॉक्टर हैं, चिकित्सक हैं और लोक सेवा से जुड़ी हुई हैं। और हम अक्सर मिलते हैं आपसे, और जब भी मिलते हैं तो यूं लगता है कि और न जाने कब से आपको जानते हैं। ऐसा ही व्यवहार एक डॉक्टर का होना चाहिए, जो होना चाहिए वो डॉक्टर रेणु खंडेलवाल का है। तो डॉक्टर साहब, आपने ये गीत तो हमें सुनाया, और गीत के साथ साथ और आपके और कौन कौन से शौक हैं? खाना बनाना, कुकिंग, खेलना या कुछ और जो भी हैं वो भी हमारे श्रोताओं को बताएं।
1: सबसे ज्यादा जो मेरा होता है कि ठीक है, अपना रूटीन करने के बाद में अगर मेरा कोई बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा अगर आप हॉबीज की बात करते हैं तो फूड। हम इंडियंस कहते हैं ना कि आप जितना अच्छा फूड बनाएंगे परिवार को उतना करीब रख पाएंगे।
0: बिल्कुल।
1: तो जब भी मुझे टाइम मिलता है आई ट्राई कि डिफरेंट डिफरेंट टेस्टी डिशेस बनाऊं, घर वालों को खिलाऊं, तो सबको बहुत अच्छा लगे। वो मेरा सबसे ज्यादा फेवरेट हॉबीज में आ जाता है।
0: बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया कि आपका जो साथ है वो और जो जीवन का सफर है वो सुहाना सफर, और ये मौसम हंसी वाला गीत जो है वो याद आता है आपकी बात सुन के। और खाने की बात के बाद आप हमें पढ़ने के बारे में बताएंगे, कभी आप पढ़ पाती हैं? क्योंकि सोशल मीडिया जो है उसने हमें किताबों से, पढ़ाई से दूर कर दिया है और दूर करती जा रही है। और एआई का जमाना है तो हम तकनीकी रूप से जो हैं वो डिपेंडेंट हो रहे हैं इन उपकरणों पे। तो कैसे देखती हैं आप इन सब बातों को?
1: ठीक है, एज सच मैं साइकियाट्रिस्ट भी हूँ, एंड बीइंग अ साइकियाट्रिस्ट आई डील विद वेरी साइकियाट्रिक प्रॉब्लम्स। तो इसमें अगर हम करंट सिनारियो में अगर हम बात करें तो करंट में अर्ली एज में डिमेंशिया, फॉरगेटफुलनेस के बहुत ज्यादा केस आ रहे हैं, और दूसरा होता है बच्चों में मेमोरीज का प्रॉब्लम। तो अगर आप बहुत ज्यादा इंटरनेट से या एआई से अगर आप अपना स्टडी मटेरियल या लेने की कोशिश करें, आप सोचिए कि हम स्क्रीन टाइम पे पढ़ें और वहां से हमें मेमोरी इंप्रूव होगी, तो ये बेसिकली आपकी मेमोरी को इंप्रूव नहीं करता, ये आपकी मेमोरी को डाउनग्रेड करता है। तो मेरे पास कोई भी स्टूडेंट अगर आता है तो मैं उसको कभी भी एडवाइज नहीं करती, ठीक है आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करिए लेकिन उसको प्रिंट आउट करिए और फिर उसको रीड करिए। प्रिंट आउट लेकर के आप रीड करेंगे तो वो ज्यादा आपकी मेमोरी में जाएगा और आपको ज्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट देगा, बजाय कि आप डायरेक्ट स्क्रीन से पढ़ के बस उसको वहीं पे डिजिटली सेव करें। सेम ओल्ड एज जो पीपल होते हैं जिनको कि लगता है कि अल्जाइमर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, तो मोस्टली जैसे अभी अगर आप करंट सिनारियो में देखें तो आफ्टर 50 से अल्जाइमर बढ़ रहा है, डिमेंशिया बढ़ रहा है। पहले अल्जाइमर अबाउट 70 इयर्स पर होता था। अभी आप आज अगर आप किसी से बात करते हो आपको किसी के मोबाइल नंबर याद नहीं होंगे, आपको हर चीज के लिए मोबाइल नंबर। पहले जब लड़के फोन होते थे तो आपको सबके नंबर पता होते थे, कम से कम 50 नंबर आप लोगों को याद होते थे। यहाँ पे हर आदमी को 50 नंबर याद हो जाते थे कि ठीक है उसका नंबर ये, उसका नंबर ये, हर चीज आपके फोन सेव होती है।
0: मुझे अपना नंबर याद नहीं होता कई बार अपना।

0: बच्चों में होता है कि वो मोबाइल से पढ़ लेते हैं, सब चीज पढ़ लेते हैं, अरे मैंने तो ये पढ़ लिया, मैंने पढ़ी, पर मेमोरी कंसोलिडेटेड नहीं हो रही. जब कंसोलिडेटेड नहीं हो रही तो एट द टाइम ऑफ एग्जाम वो फॉरगेटफुलनेस शुरू हो जाती है, उनको एंग्जाइटी चालू हो जाती है क्योंकि उनको कुछ रिकॉल नहीं हो रहा है. तो ये गैजेट का एक यूज करें, पर स्मार्ट वे में यूज करें, लेकिन डायरेक्ट जो फिजिकल स्टडी मटेरियल है उस पर ज्यादा रिलाय करें.
1: बहुत सही फरमा रही हैं आप. और हम श्रोताओं को एक बार फिर बताना चाहेंगे कि आप सुन रहे हैं डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ल्ड, आपकी आवाज आपकी पहचान. और आज आवाज जो सुन रहे हैं वो है डॉक्टर रेणु खंडेलवाल की, और जो गीत सुन रहे हैं आप उनको गा रहे हैं आपके हबी. हम जानना चाहेंगे और सुनना चाहेंगे कि आप कौन सा गीत पसंद करती हैं, कौन सी फिल्में आप देखती होंगी पहले, तो अब तो किसी को जरूरत नहीं है, तो कोई किसी फिल्म का गीत यदि आपको याद हो तो दो लाइनें गाएंगी आप अपने हबी के लिए. एनीवेज

0: तुम रहती हो।
1: बहुत सही, बहुत ही खूबसूरत आवाज है आपकी। हम सुनते हैं ये खूबसूरत गीत, और हमारे पास हैं, हमारे साथ हैं डॉक्टर रेणु खंडेलवाल अपने हबी के साथ। और ये तो आपने गाया, और लोकेश जी क्या कह रहे हैं वो सुन लेते हैं।

दिल की धड़कन और धड़कनों से बनते हैं गीत, और गीतों को हम गाते हैं और अपने एहसासों को बांटते हैं।

0: पल पल दिल के पास रहते ये कैसे रिश्ते, और इन रिश्तों में माँ बाप बहन भाई सास ससुर न जाने कितने लोग हमारे आसपास चारों ओर रहते हैं और हम उनसे बात करते हैं, उनके साथ जीते हैं और जीने का अंदाज भी उन्हीं से सीखते हैं। क्या कह रहे हैं?
1: प्यारी बिटिया डॉक्टर रेणु को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई।
2: ईश्वर तुम्हें हमेशा खुश और स्वस्थ रखे और ढेरों आशीर्वाद।
3: आपका जीवन सुखमय हो। डॉक्टर रेणु खंडेलवाल को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन सुखमय हो, मंगलमय रहे। मैं संजय गुर्जर, राजस्थान हाईकोर्ट, जयपुर।

0: हेलो भाभी जी, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसे ही आशीर्वाद बना के रखिए और हमारी शुभकामनाएं आपके लिए।
1: विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे डियर भाभी, हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
2: हैप्पी बर्थडे डॉक्टर भाभी, आज का दिन खास है क्योंकि आज उस शख्स का बर्थडे है जिसने हमारे दोस्त की जिंदगी खूबसूरत बना रखा है। भगवान आपको हमेशा खुश रखे, चेहरे पर मुस्कान बनाए रखे और आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो। ढेर सारे जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं राकेश।
3: ये शुभकामनाएं राकेश जी दे रहे थे। और
4: हैप्पी बर्थडे छोटी नानी, विश यू हैप्पी बर्थडे दादी।
5: Many many happy returns of the day. May God always provide you the most precious thing in life, health, wealth, happiness and prosperity. Happy birthday to you, Mami ji.
6: जन्मदिन दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं भाभी जी, आपकी जिंदगी में हमेशा खुशियां बनी रहे, आप ऐसे ही हंसती रहो, मुस्कुराती रहो।
7: जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं भाभी जी, हमेशा ऐसे ही हंसती रहो, मुस्कुराती रहो, आपके जीवन में हमेशा खुशियां बनी रहे।
8: वो जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, आज का दिन आपके जीवन में खुशियां और प्यार लेकर आए। मैं दुआ करती हूं कि आपका जीवन हमेशा प्यार, सफलता और शांति से भरा रहे। आप हमारी जिंदगी का अनमोल हिस्सा है। हैप्पी बर्थडे भाभी।
7: जन्मदिन की बहुत बहुत शुभ।
3: आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में और आपसे जानना चाहेंगे हम कि दवा जो है आज के युग में बहुत ज्यादा ली जाती है और हमारा जो करंट सिनेरियो है वो ये कह रहा है कि आप इन दवाओं पे डिपेंडेंट न रह के प्रकृति पे या आयुर्वेद पे या योगा पे, तो इसको आप इसके साथ कैसे कोरिलेट करके लोकहित के लिए।
9: जो पेशेंट आता है ना प्राइमरी तौर पर
3: जी,
9: मैं उसको हमारे जो ओल्ड एज के अगर हमारे पूर्वज हैं उनका जो लाइफस्टाइल था
3: जी,
9: मैं उसकी तरफ ज्यादा मोटिवेट करती हूँ। पर्टिकुलरली किसी आयुर्वेद को रिकमेंडेशन डायरेक्ट नहीं करती हूँ, लेकिन जो लाइफस्टाइल है अगर हमारे ओल्ड एज को अगर हम देखें, हमारे अगर हम हमारे दो पीढ़ी से पहले, एक पीढ़ी पहले की भी अगर हम देखते हैं, तो उनका जो लाइफस्टाइल है अगर हम उसको बारीकी से देखें तो फिजिकल वर्क अच्छा है उनका, ठीक है। दूसरा, हर चीजों को अगर आपने उनको देखा होगा तो दे टुक थिंग्स वेरी लाइटली, बहुत ज्यादा पैनिक नहीं होते। तीसरा, उनका जो खान पान है वो सीजन के अकॉर्डिंग और आपके जिस क्लाइमेट एरिया में रहते हैं उसके अकॉर्डिंग होता है। तो अगर हम हमारे फूड को, हमारी एक्टिविटीज को और हमारी लाइफस्टाइल को तीनों के अकॉर्डिंग अगर हम चेंज कर लेते हैं तो हमें आज की जो प्रॉब्लम्स हैं देखा जाए तो उसमें 60-70% हमें रिलैक्सेशन मिल सकता है।
3: बिल्कुल, बहुत सही फरमा रही हैं।
9: हम हमारी सीजन में चीजें नहीं खाते हैं। आज अगर हम देख रहे हैं पेशेंट्स को पूछते हैं, मैडम इस मौसम में या कभी मौसम, मैडम मैं अनार खाऊं या खाऊं, मेरा कभी कोई क्राइटेरिया नहीं होता कि आप बहुत हैवी फूड खाइए, कि हर सीजन में हर विटामिंस को लेकर के कोई ना कोई एक ऐसी सब्जी या ऐसा फ्रूट आता है जो कि बहुत ही सस्ता मिलता है, बहुत इजीली मिलता है। तो जो भी जिस सीजन में फूड खाया जाता है, चाहे वो किचन में कुकिंग का हो, चाहे फ्रूट्स का हो, चाहे वो वेजिटेबल्स का हो, तो आप जिस क्लाइमेट में रहते हैं, जिस सीजन में जो सबसे इजीली मिलता है, आप उसको अच्छे से खाइए। आप फिजिकल वर्कआउट करिए, हर चीज के लिए आप मशीनरी पे या स्कूटर पे या इन पे कार पे डिपेंडेंट नहीं रहिए। अपने छोटे छोटे काम खुद से करना शुरू करिए, चीजों को बैलेंस करना शुरू करिए, पैनिक मत होइए। हर चीज को खुद से करने की जरूरत नहीं होती, चीजों को कई बार फैमिली में डाइवर्ट भी करना पड़ता है, चीजों को प्रायोरिटाइज करना पड़ता है कि कौन सी चीज प्रायोरिटी पे है, कौन सी चीज को हम थोड़ा सा डाउन में रख सकते हैं। तो अगर हम ये तीनों पार्ट ऑफ लाइफ को अगर हम बैलेंस करेंगे तो फिजिकल मेंटल हेल्थ हमारी अच्छी रहेगी, और जब फिजिकल और मेंटल हेल्थ होगी तो डेफिनेटली मेडिसिन की नीड्स कम होगी।
3: बहुत सही फरमा रहे हैं आप, और आप सुन लेते हैं उनकी बात जो आपके लिए कुछ कहना चाहते हैं और इसके बाद हम ये गीत सुनते हैं और अब फिर से बात करते हैं। डॉक्टर रेणु खंडेलवाल हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, एक बात बहुत ही महत्वपूर्ण है जो हम पूछना चाह रहे थे आपसे, और आज हमें अवसर मिला है तो क्यों ना हम इस बात पे भी कुछ आपकी राय ले लें कि कोरोना से पहले जो कोरोना काल आया था 2020 से पहले, जो मानव का बिहेवियर था, उनके सोचने की, उनके बात करने की, जो कुछ है उनके याददाश्त की, जो भी व्यवहार विज्ञान था वो, और आज उसके बाद में जो लोग बचे हैं या जो पीढ़ी बड़ी हो रही है, उनके बिहेवियर में कुछ बदलाव आया है क्या? आपने कभी नोटिस किया इस बात को?
9: देखिए, शुरू में तो आफ्टर कोरोना 2-3 इयर्स तो थोड़ा सा लग रहा था कि लोगों ने अपनी चीजों को चेंज किया है
3: जी।
9: अगर हम बात करें तो 2021 तक जैसे कोरोना का एक पीरियड चल रहा था
3: जी।
9: तो व्हाट आई फेल्ट कि 2024 और इनिशियल इयर्स ऑफ 2025 या 24 ही आएंगे
3: जी।
9: तो लोगों का जो सोच का पैटर्न था वो थोड़ा चेंज हो गया था कि देवर विलिंग की यू नेवर नोज कि कब क्या हो जाए। तो लोग थोड़ा सा एम्पैथेटिकली और लोगों के लिए अच्छा करते थे, लोग अपने लिए जीना शुरू कर दिया था, लोगों ने सबसे रिलेशंस बनाने शुरू कर दिए थे, लोगों को आइसोलेशन का मतलब समझ में आ गया था। तो देखा जाए तो एक फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जो कनेक्टिविटी थी वो बढ़ गई थी, क्योंकि लॉक इन पीरियड में जब लोग बहुत अकेले रहे तो उनको समझ में आया कि अकेलापन क्या चीज होती है। सडनली आपकी फैमिली में जो डिमाइसेस हुए हैं, आपकी लाइफ की अनसर्टेनिटी क्या है, कोई सर्टेनिटी नहीं है, सडनली एवरीथिंग कैन गोन, आपको पता ही नहीं चलेगा। आप बहुत ज्यादा मनी माइंडेड हो रहे हैं लेकिन सडनली यू हैव लॉस्ट एवरीथिंग, जब ह्यूमन ही नहीं है तब करेंगे क्या उस मनी का। तो लोगों ने उस समय काफी चीजों में चेंज किया था अपनी पर्सनैलिटीज में, अपने थॉट्स में और उसमें, बट पीपल आर पीपल सो अगेन दे आर गोइंग टू बैक।
3: हाँ बिल्कुल, आफ्टर उसके हमने ये पाया है या हमने बारीकी से जब हम देखते हैं तो लगता है कि लोग असहिष्णु हो गए हैं और सेल्फिश हो गए हैं और बहुत सारे अपने में संकुचित होते जा रहे हैं। हो सकता है मेरे आसपास का वातावरण ऐसा हो, लेकिन मैंने कई जगह नोटिस किया है, चाहे वो एयरपोर्ट हो, चाहे रेलवे स्टेशन हो, चाहे बस स्टैंड हो, सब लोग जो हैं वो कहीं किसी संकुचाहट में सिर्फ अपने सेल्फ सेंटर्ड वाली बात जो है वो उनके साथ हो रही है या हो चुकी है, ऐसा कुछ कभी कभी लगता है।
9: हाँ वही तो मैं कह रही हूँ कि उस वक्त लोग हेल्पिंग में आ गए थे एकदम,
3: बिल्कुल
9: काफी चेंजेस हो गए, बट अगेन दे आर मूविंग बैक साइड,
3: यानी भूल गए हैं वो।
9: हाँ दे हैव फॉरगॉटन दैट पार्ट कि सडनली ऐसा कुछ हो सकता है। वी फेल्ट इवन वी वर लकी कि हम उस डिजास्टर से बाहर निकले हैं।
3: बिल्कुल, तो बात निकली थी तो यहां तक पहुंच गई, और क्योंकि हम आज मना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं जयपुर रेडियो के इस मंच पर डॉक्टर रेणु खंडेलवाल के हैप्पी वाले बर्थडे को, तो आइए सुनते हैं ये खूबसूरत गीत।
10: वैवाहिक जीवन के शुरुआती दिनों में कुछ जिम्मेदारियों और दायित्वों का निर्वहन करना होता है, तर हर व्यक्ति को अपने विवाह के पूर्व के स्वतंत्रता, आजादी, यार दोस्तों के साथ की गई मस्ती के दिन याद आने लगते हैं। ऐसे ही दोस्तों के साथ मिलकर मस्ती में पुराने दिनों को याद करना और विवाह के तुरंत बाद की स्थिति को दोस्तों की याद में, और फिर वो जीवन का सबसे खूबसूरत पल जब ईश्वर ने हमें सुधांश के रूप में अपार खुशियां दी, उसके बाद वैवाहिक जीवन में सपनों का तूफान आ गया, उन अभिव्यक्तियों को इस गीत के माध्यम से हम प्रस्तुत कर रहे हैं।

0: रिमझिम सावन की बात कर रहे थे लोकेश जी इस प्रोग्राम में। आप सुन रहे हैं डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ल्ड, आपकी आवाज आपकी पहचान। और आज का ये सुरीला पैगाम लेके आए हैं हमारे साथ हमारे संग डॉक्टर रेणु खंडेलवाल और लोकेश खंडेलवाल। अब दोनों का फिर से वेलकम है, स्वागत है। क्या कहेंगे लोकेश जी?
1: सर्वप्रथम मैं सभी श्रोताओं को जो जयपुर रेडियो को सुन रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, साथ ही उन सभी सम्मानीय गुणों को जिन्होंने आज हमारे दिन को विशेष दिन बनाने में अपना अमूल्य समय देकर सहयोग दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक आभार। एक डॉक्टर और एक वकील पति पत्नी का तालमेल, वैचारिक तालमेल बैठाना बहुत ही कठिन होता है, फिर भी हमने हंसी खुशी अपना जीवन निर्वहन कर सभी जिम्मेदारियों और दायित्वों को निभाया है। आज मैं कुछ पंक्तियाँ हमारे प्रोफेशन जीवन के आधार पर अपनी डॉक्टर पत्नी के नाम पर सुना रहा हूँ। मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत डॉक्टर के नाम, तुम मरीजों का दर्द समझकर उनका इलाज करती हो और मेरी हर परेशानी को बिना कहे समझ लेती हो। मैं अदालत में लोगों के हक की पैरवी करता हूँ, लेकिन मेरी जिंदगी में मेरा सबसे खूबसूरत फैसला तुम हो। तुम्हारी हर मुस्कान मेरी सबसे मजबूत दलील है और तुम्हारा साथ मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत फैसला। जन्मदिन मुबारक हो मेरी डॉक्टर साहिबा, मेरी दोस्त, मेरी पत्नी और मेरी सबसे खूबसूरत जिंदगी। मैं आज इस खुशी के मौके पर अपने वैवाहिक जीवन से जुड़े कुछ खुशी के पलों को आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले जब हम शादी से पहले मिले थे, तब की मेरी अभिव्यक्ति इस गाने के माध्यम से अभिव्यक्त कर रहा हूँ।

हमारे समय में प्रेम पत्रों का दौर आखिरी सांसें गिन रहा था, क्योंकि मोबाइल क्रांति आ गई थी। फिर भी मैंने एक प्रेम पत्र मेरी पत्नी डॉक्टर रेणु खंडेलवाल के नाम पर लिखा। उसकी अभिव्यक्ति मैं उक्त गीत के माध्यम से आपके समक्ष पेश कर रहा हूँ। धन्यवाद।

मित्र के बाद में वो शुभ घड़ी भी आ गई जब हमारा विवाह हुआ और हमने जीवन मरण के सात वचन लेकर जीवन पर्यंत एक दूसरे के साथ रहने का निश्चय किया। उन सात वचनों को मैं अभिव्यक्त

0: वाह लोकेश जी, कमाल, बेमिसाल, क्या कहें, लफ्ज नहीं मिल रहे हमें। और अब उन सब रिश्तेदारों की शुभकामनाएं डॉक्टर रेणु खंडेलवाल के नाम जो हमें प्राप्त हुई हैं, हम सुनवाना चाहेंगे।
1: सो हैप्पी बर्थडे माँ, थैंक यू फॉर एवरीथिंग व्हिच यू हैव गिवन टू मी। ऑल्सो यहाँ हॉस्टल में कभी कभी ऐसे मोमेंट्स होते हैं जब मेरी कभी आपकी बहुत ज़्यादा याद आती है, एंड आपकी हर छोटी बड़ी चीज, स्पेशली आपकी चिक चिक वगैरह, वो सब बहुत ज़्यादा याद आता है। एंड मैं शायद हमेशा एक्सप्रेस नहीं कर पाता, बट आई लव यू अ लॉट। बस आप ऐसे ही रहना, खुश रहना एंड मेरी केयर करते रहना। वंस अगेन हैप्पी बर्थडे, थैंक यू, लव यू।
2: हमारे परिवार की लाडली बहू सम्माननीय डॉक्टर रेणु को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आप सदैव हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। आपका स्नेह और सानिध्य सदैव बना रहे। ईश्वर आपको सभी खुशियां दे। शुभ आशीर्वाद।
3: बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, हमेशा खुश रहो। जन्मदिन की हार्दिक बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, हमेशा खुश रहो।
4: हैप्पी बर्थडे डॉक्टर साहब, जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयां हो। आप और मेरा हमेशा साथ बना रहे। आप मेरे फोन को हमेशा अटेंड करती रहिए, मैं आपको हमेशा परेशान करती रहूंगी।
5: मेरी प्यारी भाभी जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं।
6: मेरी प्यारी जिठानी जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आप अपने जीवन से लोगों को ऐसे ही अप्रिशिएट करते रहें।
5: मेरी प्यारी भाभी जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं।
7: विशिंग यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे ताई जी, मे गॉड ब्लेस यू विद अबंडेंट हेल्थ, जॉय एंड पीस इन द कमिंग ईयर। थैंक यू फॉर ऑलवेज गाइडिंग अस विद योर लव एंड वार्मथ। हैप्पी बर्थडे।
8: जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज का दिन आपके जीवन में खुशियां और प्यार लेकर आए। मैं दुआ करती हूं कि आपका जीवन हमेशा प्यार, सफलता और शांति से भरा रहे। आप हमारी जिंदगी का अनमोल हिस्सा हैं। हैप्पी बर्थडे भाभी।
9: जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं भाभी जी, हमेशा ऐसे ही हंसती रहो, मुस्कुराती रहो, आपके जीवन में हमेशा खुशियां बनी रहे। जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं भाभी जी, हमेशा ऐसे ही हंसती रहो, मुस्कुराती रहो, आपके जीवन में हमेशा खुशियां बनी रहे। जन्मदिन दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं भाभी जी, आप की जिंदगी में हमेशा खुशियां बनी रहे, आप ऐसे ही हंसती रहो, मुस्कुराती रहो।
10: मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, मे गॉड ऑलवेज प्रोवाइड यू द मोस्ट प्रीशियस थिंग इन लाइफ, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी। हैप्पी बर्थडे टू यू मामी जी।
11: विश यू हैप्पी बर्थडे दादी। विश यू हैप्पी बर्थडे दादी। Wish you happy birthday दादी।
12: छोटी नानी, हैप्पी बर्थडे छोटी नानी।
0: कौन क्या कह गया हमें मालूम नहीं, आवाज यदि आप पहचाने तो पहचान सकते हैं, लेकिन शुभकामनाएं हैं। कोई आपका पेशेंट है, कोई आपका रिश्तेदार है, कोई आपके परिवार से है, कोई समाज से है, और कोई जो कुछ भी है वो हमारे चारों तरफ रहते हैं। उनके आवाजों को हम एक बार नहीं, दो बार सुन के तो पक्का पहचान ही लेते हैं। तो बहुत शुभकामनाएं हमारी ओर से भी आपको इस गीत के साथ।

0: सर आप सब लोगों का आशीर्वाद और प्यार हमेशा बना रहे और सब लोग हंसी खुशी रहेंगे, यही चाहूंगी।
1: बहुत शुक्रिया,
0: बहुत बहुत धन्यवाद इस मंच पर इंट्रोड्यूस कराने के लिए।
1: बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार कि आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए। और सभी जो लोग जुड़े रहे हम उनके नाम लेना चाहेंगे, और अब हम उन सभी श्रोताओं के नाम लेना चाहेंगे जो प्रोग्राम सुन रहे थे और सुन के हमें अपने फीडबैक प्रेषित कर रहे थे। आप हैं कोलकाता से श्याम बिहारी शर्मा, फाल्गुनी दवे जूनागढ़ गुजरात से, लोकजीत दास असम से, सुप्रिया सिंह सोनीपत हरियाणा से, मधुबी चटर्जी वेस्ट बंगाल से, मंदाकिनी शाह वडोदरा गुजरात से, समृद्धि चतुर्वेदी आप हैं सियाटल यूएसए से, जीना चौधरी पंजाब से, राकेश कन्नौजिया जगह का नाम नहीं लिखा है, साक्षी मेंडिकर नागपुर महाराष्ट्र से, सोनल पारिक जूनागढ़ गुजरात से, नेहा मूल चंदानी अजमेर राजस्थान से, अनीता दुगड़ नेपाल से, डोली श्रीवास्तव और प्रीति लखनऊ से, मुकेश पुरी जगह का नाम नहीं लिखा है, सुधीर सूरे, सतीश देपाल, मीता सराकर और राजीव बिहारी, आप सबका बहुत बहुत आभार। सुनते रहें जयपुर रेडियो, बार बार आपकी आवाज आपकी पहचान।

0: डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का ये जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, आपकी आवाज़ आपकी पहचान। डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का ये जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, आपकी आवाज़ आपकी पहचान। गीतों के सवाल, गीतों में जवाब, और इस प्रोग्राम का एपिसोड नंबर 9 यानी 9 नंबर का ये एपिसोड लेके आई हैं सियाटल यूएसए से समृद्धि चतुर्वेदी। आइए सुनते हैं इस प्रोग्राम में। आपका साथ दे रहे हैं रांची के पंकज चतुर्वेदी।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त सियाटल से समृद्धि, और आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे गीतों के सवाल गीतों के जवाब के एपिसोड नंबर 9 में। अब तक हमारे सवाल कुछ जाने पहचाने से थे, कभी किसी से प्यार का जवाब मांगते हुए, कभी किसी की बेरुखी का कारण पूछते हुए, लेकिन इस बार हमने सोचा क्यों न सवालों को थोड़ा सा घुमा दिया जाए, क्यों न कभी दुनिया से पूछा जाए, कभी अपने आप से, कभी अपने सपनों से, और कभी बस प्यार से। तो आज की हमारी महफिल का नाम है सवाल जरा हटके, और आज मेरे लिए यह एपिसोड कुछ ज्यादा ही खास है, क्योंकि आज मेरे साथ इस शो की एंकरिंग करने के लिए मेरे पापा श्री पंकज कुमार चतुर्वेदी भी साथ हैं। आपने उनकी आवाज गीतों में तो सुनी होगी मेरे साथ, आज वह कुछ शब्द अपने बोलेंगे भी और मेरा साथ देंगे एंकरिंग में। आज उन्हीं के साथ इस मंच पर बैठकर गीतों की बात करने का मौका मिल रहा है, तो यह मेरे लिए बड़े ही खुशी की बात है। और अब कुछ शब्द पापा अपने बारे में बताएंगे।
2: मैं पंकज कुमार चतुर्वेदी आप सबों के सामने अपने को प्रस्तुत करता हूं। रेडियो जयपुर के माध्यम से मैं आप सभी के सामने अपने कुछ गीत, अपने विचारों को प्रकट करने की कोशिश समय समय पर करता रहूंगा। उम्मीद है आप मेरे गीतों को पसंद करेंगे और मेरा उत्साह वर्धन करते रहेंगे। धन्यवाद।
1: और जैसा मैंने आपको पहले ही बताया है कि आज के हमारे सवाल जरा गंभीर हो सकते हैं और जरा हटके हो सकते हैं। तो पहला सवाल यह है कि एक बेटी की कीमत क्या होती है? क्या उसकी कीमत रुपयों में लगाई जा सकती है? क्या शादी उसके जीवन की आखिरी मंजिल है, या फिर उसके अपने सपने, उसकी अपनी पहचान और उसके अपनी उड़ान भी उतनी ही महत्वपूर्ण है? यह गीत जो मैं प्रस्तुत करने वाली हूँ एक बेटी की आवाज में बहुत आत्मविश्वास से कहता है कि मैं किसी के सर का बोझ नहीं हूँ। यह गीत मुझे आज इस शो में शामिल करना इसलिए भी अच्छा लगा क्योंकि इसी हफ्ते 25 सितंबर को इंटरनेशनल डॉटर्स डे है, और आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। बात करते हुए इस गीत के बोल जो हैं, वह ये बताता है कि बेटी की बराबरी, उसकी आजादी, उसकी अपनी पहचान कितनी महत्वपूर्ण है। यह गीत का नाम है मुझे क्या बेचेगा रुपया, जो कि 2012 में टेलीविजन शो सत्यमेव जयते जो कि आमिर खान होस्ट करते थे उसमें प्रस्तुत किया गया था। इसे सोना महापात्रा ने गाया है, संगीत राम संपत का है और बोल स्वनंद किरकिरे के हैं। यह गीत शो के उस एपिसोड से जुड़ा था जिसमें भारतीय शादियों में दहेज और आर्थिक लेन देन की संस्कृति पर चर्चा की गई थी। और दिलचस्प बात यह है कि गीत का केंद्र सिर्फ दहेज मतलब नहीं है, गीत खुद अपनी आवाज में कहती है कि वह किसी के सिर का बोझ नहीं है, वह अपनी जिंदगी का रास्ता खुद चुन सकती है। आइए सुनते हैं।

जब हम इस दुनिया में आते हैं तो हमारी जिंदगी की चुनरी बिल्कुल निर्मल होती है, न कोई दाग, न कोई शिकवा, सिर्फ मासूमियत, सपने और अपनों का प्यार। फिर उम्र बढ़ती है, हम दुनिया को समझने लगते हैं, रिश्तों को पहचानने लगते हैं और जिंदगी हमें तरह तरह के रंग दिखाती है। कुछ रंग होते हैं प्यार के, कुछ विश्वास के, कुछ सफलता के, लेकिन इसी सफर में कभी अनजाने में, कभी परिस्थितियों के कारण और कभी अपनी ही भूलों से उस उजली चुनरी पर कुछ दाग भी लग जाते हैं। तब मन पूछता है, क्या इन दागों को छुपाया जा सकता है? क्या बीते हुए कल को मिटाया जा सकता है? जवाब है हाँ। और इस तरह कि अपनी गलतियों को स्वीकार करें, उनसे सीखें और अपनी आत्मा की उस पवित्रता को फिर से पाने की कोशिश करें जो कभी उसकी पहचान हुआ करती थी। इसीलिए यह गीत केवल एक गीत नहीं, यह जीवन का एक आईना है, एक ऐसी चुनरी की कहानी जो जीवन की धूप छांव से गुजरते हुए रंगीन भी हुई और कहीं कहीं दागदार भी। तो आइए कुछ पल के लिए अपने जीवन की उस चुनरी को याद करें, उसके खूबसूरत रंगों को भी और उन दागों को भी जिन्होंने हमें कुछ न कुछ सिखाया ही है। पेश है फिल्म दिल ही तो है का वो अमर गीत लागा चुनरी में दाग, जिसे महान गायक मन्ना डे साहब ने अपनी आवाज दी थी और रोशन साहब ने जिसका संगीत दिया था।

कभी कभी इंसान अपनी पूरी जिंदगी दुनिया को पाने की कोशिश में लगा देता है, नाम शोहरत दौलत और पहचान के पीछे भागता है, लेकिन एक दिन ठहर कर जब वह इस दुनिया को देखता है तो उसके मन में एक सवाल उठता है, क्या सचमुच यही वह दुनिया है जिसे पाने के लिए मैंने इतना कुछ खो दिया। जिंदगी की भीड़ में हम बहुत कुछ हासिल कर लेते हैं लेकिन कहीं ना कहीं अपने भीतर के सुकून को खो देते हैं। इसी बेचैनी, इसी सवाल और इसी कड़वी सच्चाई को गुरुदत्त की फिल्म प्यासा में साहिर लुधियानवी ने एक ऐसी आवाज दी जो आज भी हमारे दिल को झकझोर देती है। यह गीत सिर्फ दुनिया से निराशा की कहानी नहीं बल्कि उस इंसान की पुकार है जो दुनिया की चमक के पीछे छिपी सच्चाई को पहचान चुका है। मोहम्मद रफी की पुरकश आवाज में ये गीत, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, आपके सामने पेश करता हूँ।

शायद इसी अनकहे भाव को यह गीत पकड़ता है। मायरी मैं कासे कहूं पीर अपने जिया की, यहाँ पीर को सिर्फ दुख समझ लेना शायद इस गीत को छोटा कर देना होगा। यह भीतर की वह बेचैनी भी है, वह भाव भी है, वह अनुभूति भी है जिसे मन पूरी तरह जानता है लेकिन शब्दों में बांध नहीं पाता। और यही तो प्रेम, आकर्षण और मन की कई गहरी अवस्थाओं की सबसे बड़ी पहेली है। जो बात दिल को सबसे गहरी उतरती है उसे कहने के लिए शब्द सबसे कम क्यों पड़ जाते हैं। गीत के बारे में आपको कुछ बता दूं, यह गीत फिल्म दस्तक जो कि 1970 में रिलीज हुई थी उसमें से है। इसकी आवाज ओरिजिनल लता मंगेशकर ने गाया है, संगीत मदन मोहन का है और गीत मजरूह सुल्तानपुरी का। इसका एक वर्जन और भी रिलीज हुआ है जो कि आपको शायद यूट्यूब पे मिल जाएगा मदन मोहन साहब के चैनल पे, जिसमें उनकी अपनी आवाज में यह गीत उन्होंने गा रखा है और बड़ा ही खूबसूरत गीत है। और मदन मोहन साहब की रचना शैली की एक और खूबी इस गीत में, अलग अलग अंतरों में उन्होंने अलग अलग मेलोडिक आइडियाज इस्तेमाल किए हैं, उनकी रचनात्मकता का यह अच्छा उदाहरण भी है। ये तो हमें पता ही है कि मदन मोहन साहब और लता मंगेशकर की जोड़ी ने एक से एक सुपरहिट गाने हमें दिए हैं। तो आइए आज हम सुनते हैं मैं कासे कहूं पीर अपने जिया की।

और अब हम पहुंचते हैं शायद आज के अपने सबसे दार्शनिक सवाल पर। हम सब कुछ ना कुछ ढूंढ रहे हैं, कभी मंजिल, कभी सफलता, कभी खुशी, कभी वह चीज जिसके बारे में हमें खुद ही ठीक से मालूम नहीं कि वह है क्या। गीत की शुरुआत में एक बच्चा तितली के पीछे भागता है। तितली हाथ नहीं आती तो वह दूसरी तरफ दौड़ता है और गीत एक बहुत खूबसूरत सवाल पूछता है कि जिसे तुम पूरी दुनिया में ढूंढ रहे हो, क्या पता वह तुम्हारे मन में ही हो। फिर जीवन की राहें सामने आती हैं, कहीं धूप है, कहीं मोड़ है, कहीं छांव का इंतजार है और रास्ता चलता ही जाता है। लेकिन सबसे सुंदर विचार तो अंत में आता है कि सुख और चैन शायद एक ही चीज नहीं है। हम बाहर से बहुत कुछ पा सकते हैं, लेकिन जो भीतर का चैन है वह शायद किसी मंजिल पर पहुंचकर नहीं मिलता। तो यह गीत का यह सवाल नहीं है कि हमारे सपने पूरे होंगे या नहीं, शायद सवाल यह है कि जिस चीज के पीछे हम भाग रहे हैं, क्या वही चीज हमें सच में चैन देगी। यह गीत मैंने लिया है फिल्म लक बाय चांस, जो कि सन 2009 में रिलीज हुई थी। गीत के ना के बोल हैं सपनों से भरे नैना। इसकी आवाज है शंकर महादेवन की, संगीत दिया है शंकर महादेवन ने, एहसान नूरानी ने और लॉय मेंडोसा ने, गीत लिखा है जावेद अख्तर साहब ने और फिल्म है लक बाय चांस, जैसा कि मैंने आपको बताया, जिसको जोया अख्तर ने डायरेक्ट किया है। तो आइए सुनते हैं।

इतने सारे गंभीर, दार्शनिक और कभी कभी बिल्कुल अंदर तक उतर जाने वाले सवालों के बाद अब लगता है आखिरी सवाल को थोड़ा मुस्कुराते हुए पूछना चाहिए, क्योंकि प्यार की दुनिया में कभी कभी तर्क की तो छुट्टी भी हो जाती है। और अब मैं आपके सामने लेकर गाई हूँ अभी बड़ा ही वायरल हुआ हुआ गीत, काए जिद कर रही काए खुमर रही। तो ये गाना है बड़ा प्यारा और जरा हटके भी है और सवालों से भरा हुआ है, तो बिल्कुल परफेक्ट बैठता है हमारे इस शो के लिए। और गाने में जो कहानी सुनाई गई है, पता नहीं कितनी सच बात है कितनी झूठ बात, मगर बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में इस कहानी को दर्शाया गया है। जो फोक टच दिया गया है इस गाने में, जो शब्द यूज किए गए हैं, जो गाने की जो पूरी बनावट है वो बहुत ही अलग है, बड़े ही मजेदार। कि पार्वती जी जिद पर आई हुई हैं, सप्तऋषि उनको मनाने के लिए आए हुए हैं और वो शिव जी की कमियां भी गिना रहे हैं और पार्वती जी का विश्वास उतना ही अडिग नजर होता हुआ आ रहा है। यानी आज का आखिरी सवाल यह है कि जब दिल ने अपना वर चुन ही लिया हो तो दुनिया की पूरी सलाह भी क्या ही कर सकती है। यह गीत काफी नया है मगर मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने सुना होगा। यह गीत है फिल्म हनुमान अंश का और गीत को गाया, लिखा, कंपोज किया है साधु तिवारी जी ने, और कंपोजिशन में साधु तिवारी और समीरन दास दोनों ही शामिल हैं। यह अभी 2026 में अगस्त सितंबर बिल्कुल हाल फिलहाल में रिलीज हुई है। इस गीत की खासियत इसकी लोक भाषा वाली चुटकीली अंदाज है और जो शब्द हैं वो शब्द शुद्ध हिंदी नहीं है, काए, मुड़िया, बिन्नू ऐसे शब्द इस्तेमाल किए गए हैं जो कि इस गाने को बड़ा ही मजेदार बना देती है। इस गाने को ऑफ कोर्स हमने थोड़ा ट्विस्ट दिया है क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग है, वायरल है अभी और सच में गाने में काफी मजा आता है इस गाने को और सुनने में भी ऑफ कोर्स। तो मैंने और मेरे पापा ने मिलके इस गाने को गाने की कोशिश की है, आइए सुनते हैं।

छपरा ना छपरा ना भूत की डार मड़ैया का खावे का धरो वहां बस रोवत रहत लड़ैया ना खपरा ना छपरा ना भूत की डार मड़ैया का खावे को धरो वहां बस रोवत रहत लड़ैया बेस धरे अवधूत फिरे अब तुमसे का कह बिन्नू डोरा डांगर ले घूमे वे इनके कछुए नैया वे इनके कछुए नैया काय जिद कर रही काय तप कर

0: बम भोले, भोले बम भोले।
1: आशा करती हूँ आज का हमारा शो एपिसोड 9 जो कि था सवाल जरा हटके, आपको पसंद आया होगा। आप प्लीज अपने फीडबैक्स देना हमें ना भूलें। आप हमें फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, हमें प्रोत्साहित कर सकते हैं, और आपके फीडबैक हमारे लिए बेहद जरूरी हैं। आप हमें बता सकते हैं कि हम अपना शो कैसे इम्प्रूव करें, या आपको हमारे शो की क्या चीजें पसंद आती हैं। तो आशा करती हूँ आज आपको अच्छा लगा होगा सुन के हमें, और इजाजत दीजिए, अगले वीक फिर से मिलते हैं। धन्यवाद।
2: हमें उम्मीद है आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। मैं रेडियो जयपुर को और सभी प्रबुद्ध श्रोताओं को अपनी तरफ से और अपनी मेधावी पुत्री समृद्धि की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और ये अपेक्षा रखता हूँ आप सभी से कि हमारे कार्यक्रमों के विषय में आप अपने विचार हमें बताते रहेंगे, ताकि हम उसमें और भी आगे अच्छा करने का प्रयास करते रहें।

जरा देखिए इस सफर को। पहले सवाल था आंखों में क्या है, फिर दिल इन आंखों में छुपा दें तो, फिर नैन एक अनजान से मिले, फिर निगाहें हटाऊं कैसे, और अब तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, यानी आंखों ने धीरे धीरे पूरी दुनिया पर कब्जा कर लिया। लेकिन अब जरा समय की घड़ी को आगे बढ़ाते हैं। लगभग आधी सदी बाद वही रोमांटिक हेल्पलेसनेस एक बिल्कुल नए म्यूजिकल वोकैबलरी में आती है। 2018 की फिल्म अंधाधुन, आवाज और संगीत अमित त्रिवेदी के और गीत जयदीप साहनी का। और मुझे यह गीत मैं को आखिर में रखना बहुत पसंद है, क्योंकि टेक्निकली मैं निगाहें तेरे चेहरे से हटाऊं कैसे और नैनो तक क्या कसूर वे कसूर वे कसूर, दोनों एक ही रोमांटिक बात करते हैं कि नजर किसी पर पड़ी, दिल फिसला और अब इंसान खुद को बेबस पा रहा है। और हालांकि मैं ज्यादातर कोशिश करती हूँ कि मैं पुराने गीतों का कलेक्शन लेकर आऊँ आपके बीच, थोड़े भूले बिसरे गीत, क्योंकि एक तो वो मुझे पसंद भी हैं पर्सनली, और मैं चाहती हूँ कि हम उन्हें रिवाइव रखें, उन्हें भूलें ना। पर यह गीत सिंस इतना सिमिलर है अप्रोच में और बड़ा ही फ्रेश एक थीम के साथ आता है, फ्रेश म्यूजिक के साथ आता है, तो मुझे ये इस शो में शामिल करना मुझे बड़ा पसंद आया और मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर करूं। तो 1964 में निगाहें हटाऊं कैसे, एक शायराना सवाल, नरम संकोची, ऑलमोस्ट प्लीडिंग, और 2018 में

नैना दा क्या कसूर? अरे भाई, गलती मेरे थोड़ी ही है। आंखों ने देखा, दिल ने प्यार कर लिया। और म्यूजिक में भी वही ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई देता है। मदन मोहन की मेलोडी जहाँ खुली सांस लेती है, अमित त्रिवेदी का ट्रीटमेंट कहीं ज्यादा रिदम ड्रिवन और कॉन्टेम्प्रेरी है। पियानो, गिटार, प्रोग्राम रिदम, बैकिंग वोकल और ग्रूव मिलकर गीत को एक कन्वर्सेशन की तरह बनाते हैं, बड़ा ही प्लेफुल एनर्जी देते हैं। यानी भावना पुरानी है, भाषा बदल गई, संगीत बदल गया, एटीट्यूड बदल गया। एक जमाने का प्रेमी कहता था, निगाहें हटाऊं कैसे, और नई जनरेशन कहती है, नैनवादा क्या कसूर। दोनों का मतलब लगभग एक, लेकिन कहने का अंदाज, पूरा जमाना ही बदल गया। आइए सुनते हैं।

0: आशा करती हूँ आज का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। आज के एपिसोड यानी कि एपिसोड 8 की समाप्ति की अनुमति दें। धन्यवाद।
1: डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का ये जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, आपकी आवाज आपकी पहचान। प्रस्तुत है प्रोग्राम गीतों के सवाल गीतों में जवाब, और ये प्रोग्राम लेके आई हैं समृद्धि चतुर्वेदी सियाटल यूएसए से। वेलकम है, स्वागत है समृद्धि का अपने पापा के साथ।
2: नमस्कार दोस्तों, हर बार की तरह इस बार भी मैं सियाटल से समृद्धि चतुर्वेदी

आपकी आज की होस्ट। आज हम आ चुके हैं अपने गीतों के सवाल और गीतों के जवाब शो के एपिसोड नंबर 8 में, जिसका नाम हमने रखा है आंखों के सवाल और आंखों के जवाब। कहते हैं ना, आंखें बोलती हैं। जुबान से हम बहुत कुछ छुपा सकते हैं, लेकिन आंखें कभी सवाल कर देती हैं, कभी जवाब दे देती हैं, कभी प्यार का इजहार और कभी बेचारे दिल को मुसीबत में डालकर खुद मासूम बन जाती हैं। तो इस बार सोचा, क्यों ना उन्हीं आंखों से कुछ सवाल पूछे जाएं, जिनके बारे में हिंदी फिल्म संगीत ने इतने सालों में इतना कुछ कह दिया है। कहीं आंखों में शरारत है, कहीं झिझक, कहीं पहली मुलाकात का जादू, और कहीं ऐसी मोहब्बत कि दुनिया में बाकी कुछ देखने की जरूरत ही नहीं बचती। तो चलिए आज नजरों की इस बातचीत को शुरू करते हैं एक ऐसे सवाल से जिसमें शरारत भी है और क्यूरियोसिटी भी। आज का हमारा पहला गीत है आंखों में क्या जी। सवाल कितना सीधा है, लेकिन जवाब देने के बजाय सामने वाला भी सवाल ही करने लगे तो समझ जाइए मामला थोड़ा दिलचस्प है। 1957 के फिल्म 9-2-11 का यह चुलबुला गीत आंखों में क्या जी। आवाजें हैं आशा भोंसले और किशोर कुमार की, गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी और संगीत सचिन देव बर्मन का। यहाँ आंखें अभी प्यार का इजहार नहीं कर रही, बस एक दूसरे को टटोल रही हैं। सवाल पर सवाल, जवाब में शरारत, जैसे दो लोग पहली बार मिलकर भी एक दूसरे को थोड़ा थोड़ा पढ़ने की कोशिश कर रहे हों। और शायद प्यार की शुरुआत भी ऐसी ही होती है। पहले आंखें पूछती हैं, कुछ है क्या, और दिल चुपचाप कहता है शायद। सुनते हैं इस सॉन्ग को मेरी और मेरे पापा श्री पंकज चतुर्वेदी की आवाजों में।

अब जब आंखों में कुछ है, तो अगला सवाल थोड़ा साहसी होना तो बनता है। अगर आपकी आंखों में इतनी जगह है, तो हम अपना दिल ही वहीं ना रख दें। 1957 की प्यासा का यह गीत, हम आपकी आंखों में इस दिल को छुपा लें तो। इसमें आवाजें हैं मोहम्मद रफी और गीता दत्त की, गीतकार साहिर लुधियानवी, संगीत SG बर्मन का। यह गीत मुझे इसलिए भी पसंद है क्योंकि फ्लर्टेशन यहाँ सीधे सीधे नहीं आता, हर बात एक सवाल है, अगर ऐसा करूं तो, अगर वैसा करूं तो। और संगीत भी इस चुलबुलेपन को बहुत खूबसूरती से सपोर्ट कर रहा है। इसे सुनते हुए जरा रिदम पर ध्यान दीजिए, इसका आधार एक वेस्टर्न स्टाइल वॉल्स फील है, वही फ्लोइंग 1 2 3 1 2 3 वाली चाल। लेकिन SG बर्मन साहब ने इसे सिर्फ साधारण वॉल्स नहीं रहने दिया, इसमें जैज और स्विंग का रंग भी है। गिटार, पियानो और स्ट्रिंग्स का जो इंटरप्ले है और जो रिदमिक एक्सेंट है, इसे उस दौर के कई पारंपरिक हिंदी गानों से बहुत अलग बनाता है। यानी सिर्फ लिरिक्स एक दूसरे से सवाल नहीं कर रहे, संगीत भी जैसे आंख मार कर जवाब दे रहा हो इस गाने में। आइए सुनते हैं।

कई बार लोग सवाल नहीं करते, बस नजरें मिलती हैं और शायद उसी पल से कहानी बदल जाती है। हमारा अगला गीत 1995 की बॉम्बे से है। गाने के बोल हैं, कहना ही क्या कि नैन एक अनजान से जो मिले। आवाजें हैं के एस चित्रा की, गीत महबूब और संगीत ए आर रहमान साहब का। और इस गीत में आंखों की कहानी बिल्कुल नया मोड़ लेती है। पहले सामने वाला अजनबी है, फिर नजरें मिलती हैं, फिर झिझक आती है, दिल में कुछ हलचल होती है, सपने आने लगते हैं और वह अजनबी धीरे धीरे अपना लगने लगता है। और संगीत, यही तो रहमान मैजिक है। वेस्टर्न गिटार टेक्सचर से शुरू होकर गीत में सूफी और कव्वाली इंस्पायर्ड रंग आ जाते हैं। कोरस, तालियां, तबला, हारमोनियम और सरगम का इस्तेमाल, एक तरफ मॉडर्न ऑर्केस्ट्रेशन, दूसरी तरफ भारतीय संगीत की जड़ें। बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले मोहब्बत होती है, थोड़ी अनजानी, थोड़ी अपनी और पूरी तरह अनएक्सपेक्टेड। आइए सुनते हैं।

अब नजरें मिल चुकी है, लेकिन नजर मिलना एक बात है, नजर हटाना दूसरी। और जब सामने वाला इतना अच्छा लगे कि आंखें खुद ही अपने फर्ज से इनकार कर दें, तो फिर सवाल यही है कि मैं निगाहें हटाऊं कैसे। 1964 की फिल्म आपकी परछाइयां। मैं निगाहें तेरे चेहरे से हटाऊं कैसे। ओरिजिनल गाने की आवाज मोहम्मद रफी की, गीतकार राजा मेहंदी अली खान, संगीत मदन मोहन का। जरा ध्यान दीजिए, इसमें भावना बहुत ही साधारण है। मैं तुम्हारे चेहरे को देखे जा रहा हूं और नजर हट नहीं रही है। लेकिन देखिए, शायर इसे कैसे कहते हैं, निगाहें हटाऊं कैसे। बस एक कैसे जोड़ते ही बात में बेबसी भी आ गई है, सवाल भी आ गया है और अदब भी। और यही पुरानी हिंदी फिल्मी गीतों की खूबसूरती है, भावना सीधी होती है लेकिन अभिव्यक्ति शायरी के रास्ते से आती है। मदन मोहन की मेलोडी भी इस भाव को बहुत स्पेस देती है। रफी साहब की आवाज में वह ठहराव, फ्रेजेस को खींचना और मेलोडी का सहज बहाव, ऐसा लगता है जैसे नजर सचमुच चेहरे से हटने की कोशिश तो कर रही है और फिर वहीं लौट आती है। आइए सुनते हैं पंकज जी की आवाज में।

अब तक हमने आंखों को सवाल करते देखा, नजरें मिलती देखी और फिर नजरें हटाने में असमर्थ होना देखा। लेकिन अगर कोई पूछे आखिर इतना देख क्यों रहे हो, तो शायद अगला गीत सबसे खूबसूरत जवाब देता है। 1969 की फिल्म चिराग, गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी, संगीत मदन मोहन का। इस गीत की एक खास बात है जिसे मैं इस एपिसोड में शामिल किए बिना रह नहीं सकती। फिल्म में इसके दो अलग वर्जन्स हैं, एक मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में और दूसरा लता मंगेशकर की आवाज़ में। दोनों वर्जन्स एक ही मूल गीत और धुन पर हैं, लेकिन सिचुएशन और इमोशनल ट्रीटमेंट के अनुसार अरेंजमेंट्स अलग हैं। और मैंने सोचा, जब चिराग में एक ही गीत को दो अलग अलग आवाज़ों में दो तरह से जिया जा सकता है, तो हम भी क्यों पीछे रहें। तो इस बार हमने इस खूबसूरत गीत को अपना डुएट वर्जन तैयार किया है। और गीत के बोल, अब यहाँ आंखें सिर्फ खूबसूरत नहीं हैं, आंखें ही दुनिया हैं, ख्वाब भी वही हैं, मोहब्बत भी वही है, और देखने वाले के लिए बाकी दुनिया जैसे छोटी पड़ गई है। मदन मोहन साहब की मेलोडी में जो नरमी और लिरिकल फ्लो है, वह इस भावना को और गहरा कर देता है। धुन में ठुमरी महसूस होती है, लेकिन ऑर्केस्ट्रेशन इसे पूरी तरह फिल्मी रोमांटिक बनाए रखती है। तो चिराग के रफ़ी और लता मंगेशकर जी का वर्जन के बाद, अब सुनिए हमारा अपना छोटा सा म्यूजिकल ट्रिब्यूट।

जरा देखिए इस सफर को। पहले सवाल था आंखों में क्या है, फिर दिल इन आंखों में छुपा दें तो, फिर नैन एक अनजान से मिले, फिर निगाहें हटाऊं कैसे, और अब तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, यानी आंखों ने धीरे धीरे पूरी दुनिया पर कब्जा कर लिया। लेकिन अब जरा समय की घड़ी को आगे बढ़ाते हैं। लगभग आधी सदी बाद वही रोमांटिक हेल्पलेसनेस एक बिल्कुल

मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि मैं पुराने गीतों का कलेक्शन लेकर आऊँ आपके बीच, थोड़े भूले बिसरे गीत, क्योंकि एक तो वो मुझे पसंद भी हैं पर्सनली, और मैं चाहती हूँ कि हम उन्हें रिवाइव रखें, उन्हें भूलें ना। पर यह गीत सिंस इतना सिमिलर है अप्रोच में और बड़ा ही फ्रेश एक थीम के साथ आता है, फ्रेश म्यूज़िक के साथ आता है, तो मुझे ये इस शो में शामिल करना मुझे बड़ा पसंद आया और मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर करूं। तो 1964 में निगाहें हटाऊं कैसे, एक शायराना सवाल, नरम संकोची, ऑलमोस्ट प्लीडिंग। और 2018 में नैना दा क्या कसूर, अरे भाई गलती मेरे थोड़ी ही है, आंखों ने देखा दिल ने प्यार कर लिया। और म्यूजिक में भी वही ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई देता है, मदन मोहन की मेलोडी जहां खुली सांस लेती है, अमित त्रिवेदी का ट्रीटमेंट कहीं ज्यादा रिदम ड्रिवन और कॉन्टेम्प्रेरी है, पियानो गिटार प्रोग्राम रिदम बैकिंग वोकल और ग्रूव मिलकर गीत को एक कन्वर्सेशन की तरह बनाते हैं, बड़ा ही प्लेफुल एनर्जी देते हैं। यानी भावना पुरानी है, भाषा बदल गई, संगीत बदल गया, एटीट्यूड बदल गया। एक जमाने का प्रेमी कहता था निगाहें हटाऊं कैसे, और नई जनरेशन कहती है नैनोदा क्या कसूर। दोनों का मतलब लगभग एक, लेकिन कहने का अंदाज, पूरा जमाना ही बदल गया। आइए सुनते हैं।

0: यानी कि एपिसोड 8 की समाप्ति की अनुमति दें। धन्यवाद।
1: आओ झूमे गाए। आप सुन रहे हैं जयपुर रेडियो, आपकी आवाज आपकी पहचान। देखिए जानी मस्तानी पहचानी और थोड़ी सी दीवानी तनु का प्यार भरा नमस्कार। आप सब कैसे हैं? जयपुर रेडियो में आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, मुसाफिर, शायरी और जिंदगी इन तीनों का ही एक दिलचस्प किरदार है। जब हम इस दुनिया में जन्म लेते हैं तो हम सबका सफर शुरू हो जाता है। हमारा जीवन अपने आप में एक सफर ही तो है और हम सब इस सफर के मुसाफिर, जहाँ सबकी अपनी अपनी मंजिलें हैं और अपने अपने रास्ते। मंजिल तक पहुँचने की आरजू किस तरह तमाम जद्दोजहद के बावजूद एक सुकून का एहसास करा जाती है, ये बात भला किसने ना महसूस की होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि आज मैं इतनी सूफियाना बातें क्यों कर रही हूँ। तो जनाब, आज के हमारे कार्यक्रम का शीर्षक ही कुछ ऐसा है, मुसाफिर हूँ यारो। गीतों के मेरे पिटारे में से आज कुछ ऐसे गीतों को प्रस्तुत करूंगी जो जीवन के फलसफे तो कहीं हंसी ठिठोली और मजाक मस्ती को चित्रित करेंगे। वैसे आज जो गीत मैं आपके सामने पेश करने जा रही हूँ वो यातायात के साधनों पर चित्रित किए गए हैं, यानी कि बस, कार, रेलगाड़ी इत्यादि पर। तो चलिए ज्यादा समय नहीं लेते हैं और कार्यक्रम का आगाज करते हैं फिल्म मेरे हमसफर के एक बेहद ही खूबसूरत गीत किसी राह पर किसी मोड़ पर। प्रस्तुत करने आ रहे हैं अपनी सुमधुर आवाज में केतन जी और डॉली जी।

बेहद खूबसूरत प्रस्तुति। ट्रक के सफर के बाद आइए लुफ्त उठाते हैं तांगे का। 1966 में प्रदर्शित फिल्म सावन की घटा का वो गीत जिसके गीतकार हैं SH बिहारी जी और संगीत के जादूगर OP नय्यर साहब इस गीत के संगीतकार हैं। ये गीत हमारे लिए यहाँ प्रस्तुत करने आ रही हैं तृप्ति सावन और उनका साथ दे रहे हैं मंगेश जी। आइए सुनते हैं हौले हौले साजरा।

0: बेहद कर्णप्रिय प्रस्तुति आपकी नजर कार्यक्रम का अगला गीत जो कि है रिक्शा के ऊपर और फिल्माया गया है रुपहले पर्दे के मशहूर हास्य अभिनेता महमूद जी पर। फिल्म का नाम है कुवारा बाप। वैसे दोस्तों क्या आपको पता है कि फिल्म में महमूद साहब के पोलियो ग्रसित पुत्र का किरदार किसने निभाया? नहीं पता? तो चलिए मैं बता देती हूँ, महमूद जी के स्वयं के पोलियो ग्रसित बेटे ने इस किरदार को निभाया था। दोस्तों एक समय ऐसा भी आया था जब बड़े सितारे महमूद जी के साथ काम करने से कतराने लगे थे, इसीलिए महमूद जी ने उस समय के लगभग 25 मशहूर अभिनेता अभिनेत्रियों को कुवारा बाप में गेस्ट अपेयरेंस कराया था। आइए सुनते हैं थोड़ा सा कम सुना लेकिन बेहद खूबसूरत गीत अनूप जी की आवाज में, मैं हूँ घोड़ा ये है गाड़ी।
1: उरिया, उरिया, उरिया, उरिया, उरिया।

वाह क्या बात है, 60 के दशक से ले चलती हूँ आपको 90 के दशक में। 90 के दशक में आपको शायद याद हो एक हास्य फिल्म आई थी, नाम है अंदाज अपना अपना। इसी फिल्म का एक मस्ती भरा गीत जो कि फिल्माया गया है तांगे के ऊपर। कुछ याद आया? नहीं आया तो मैं याद दिलाती हूँ। गीत के बोल है एलो जी सना। आमंत्रित कर रही हूँ विद्या विकास और भौमिक जी को, स्वागत है।

खूबसूरत गायकी। तांगे की सवारी के बाद चलिए आपको दुनिया की सैर कराते हैं लोपथ गामिनी से। नहीं समझे? मैं बात कर रही हूँ रेलगाड़ी की। वैसे ये जो अगला गीत मैं आपकी नजर करने जा रही हूँ, उस गीत में वाद्य यंत्रों का उपयोग बहुत कम हुआ है। कारण तो हुआ यूं जनाब कि डेट्स बहुत मुश्किल से मिल रही थी, और जब डेट्स मिली तब संगीतकारों ने हड़ताल कर रखी थी। निर्माता निर्देशक पहुंचे संगीत के जादूगर आरडी बर्मन साहब के पास। आरडी बर्मन साहब कहां मानने वाले थे, उन्होंने सिर्फ 3 वाद्य यंत्रों के साथ विभिन्न चीजों का उपयोग किया, जैसे कि रेत का कागज, डब्बे और न जाने क्या क्या, और इस तरह उत्पत्ति हुई एक खूबसूरत और मशहूर गीत, हम दोनों दो प्रेमी। आइए यही गीत सुनाती हूँ मनीष राजे और गिरिजा जी की खूबसूरत आवाजों में। अजनबी फिल्म के लिए राजेश खन्ना साहब की

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी आरजे सपना देवगुप्ता और मेरे साथ हैं टेक्निकल एक्सपर्ट जगदीश अरोड़ा जी और आप सुन रहे हैं आप सबका मनपसंद प्रोग्राम जश्न सितारा गीत गुफ्तगु। आज की हमारी मेहमान हैं डॉक्टर अलका, जो पेशे से एक सफल गायनेकोलॉजिस्ट हैं। मूल रूप से उत्तर प्रदेश से हैं, लेकिन पिछले लगभग 20 वर्षों से अमेरिका में रह रही हैं। दो बेटों की स्नेहमयी माँ होने के साथ साथ इन्होंने अपने व्यस्त पेशेवर जीवन में संगीत के लिए भी एक बहुत खूबसूरत जगह बनाई है। इनकी माताजी ने संगीत में मास्टर्स किया है और वही इनकी पहली प्रेरणा भी रही हैं। पिताजी चीफ इंजीनियर के पद से सेवानिवृत्त हुए और अब इनका परिवार मुंबई में बस चुका है। डॉक्टर अलका को बचपन से ही संगीत का वातावरण मिला। इन्होंने मंच पर भी कई प्रस्तुतियां दी हैं और पिछले कई वर्षों से स्म्यूल कैरियोके ऐप के माध्यम से भी अपनी मधुर आवाज से श्रोताओं का दिल जीत रही हैं।

0: जयपुर रेडियो के श्रोताओं को भी मेरा बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार।
1: जी, हमारे श्रोताओं की आज मैं तो कहूंगी किस्मत बहुत अच्छी है कि आप जैसी कलाकार के साथ वो रूबरू होने जा रहे हैं।
0: बहुत बहुत शुक्रिया।
1: तो अलका, हम शुरू करते हैं अपने प्रश्नों का सिलसिला। जैसे कि मैंने पहले आपके इंट्रोडक्शन में बताया और आपने मुझे बताया कि आपकी माता जी ने संगीत में मास्टर्स किया है, तो
0: जी
1: बचपन में घर का संगीत भरा माहौल कैसा था?
0: एक्चुअली आपको पता होगा कि उस टाइम में ना ज्यादा कुछ तो नहीं होता था कि हम सीख रहे हैं या कुछ कर रहे हैं,
1: जी,
0: क्योंकि वहां पढ़ाई ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होती थी उस टाइम में। तो
1: बिल्कुल
0: जब हम पढ़ाई कर रहे होते थे, और याद है लाइट चली जाती थी, तो
1: जी,
0: जब लाइट जाती थी तो हम सब बहन भाई मिलकर अंताक्षरी खेलते थे।
1: क्या
0: अब
1: बात है
0: वो होता क्या था कि डेली की ही लाइट थी उन दिनों में, थोड़े टाइम
1: जी
0: के लिए जरूर जानी होती थी। तो हमारा जो माहौल होता था उस टाइम में अंताक्षरी का माहौल होता था, तो
1: जी
0: वहां पर हम खूब गाने गाते थे, और मम्मी को भी बुला लेते थे कि आ जाओ मम्मी चलो साथ में गाते
1: जी
0: हैं। तो
1: बिल्कुल
0: वो कह सकते हो कि वो एक तरह से हमारी एक तरह से पाठशाला थी।
1: जी, सबसे पहली आपकी पाठशाला वही थी।
0: पाठशाला
1: और
0: वो ही कह
1: आपने
0: सकते हो।
1: बहुत ठीक कहा कि हम सभी ने अपने बचपन में शायद ये वक्त देखा है। बिजली तो खैर तब भी क्या अब भी जाती है, भारत में तो बहुत जाती है, मुझे अमेरिका का नहीं पता। तो अभी भी जब बिजली जाती है तो तकरीबन वही एक वक्त होता है जब सारा परिवार एक साथ मिलकर बैठता है और वो वक्त हमें जोड़ता है। तो इसी के साथ हम
0: सच
1: आपका एक गीत लेते
0: में
1: हैं।

0: प्रश्नों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं डॉक्टर अलका। जैसे कि आपने कहा कि आपके जो माता पिता हैं वो आपकी सबसे बड़ी प्रेरणा हैं, तो उनके व्यक्तित्व
1: जी
0: की कौन सी ऐसी बात है जो आज भी आपको आगे बढ़ने की ताकत देती है?
1: एक्चुअली उस टाइम में इतनी सारी फैसिलिटीज नहीं होती थी जो हमको आजकल मिली हुई हैं,
0: जी
1: तो उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत अच्छे संघर्ष किया है। तो मुझे
0: हम्म,
1: तो बस यही लगता है कि उनके संघर्ष को देखकर उन्होंने हमारे लिए कोई कमी नहीं छोड़ी। वो बोलते थे कि तुम्हें जो चाहिए हमें बताओ, हम आपको करके देंगे, पर आप बस पढ़ाई करो और अच्छी अच्छी पढ़ाई करो जिससे कि हमारा नाम रोशन कर सको। तो
0: जी
1: बस उनके लाइफ का जो संघर्ष है कि वो संघर्ष करते रहो और अपने ड्रीम्स और गोल्स की तरफ बढ़ते रहो।
0: जी तो डॉक्टर अलका, आपके परिवार में आपके मायके की तरफ से कौन कौन है?
1: मेरे मम्मी पापा
0: जी
1: और मेरा एक ब्रदर है, मेरे दो सिस्टर्स हैं।
0: अच्छा, तो आप किस
1: मेरा
0: नंबर पर
1: ब्रदर
0: आती हैं?
1: सबसे बड़ी मेरी दीदी है, फिर
0: अच्छा
1: मैं हूँ, फिर मेरा ब्रदर है, वो भी इंजीनियर है
0: अच्छा अच्छा
1: और रिलायंस में इंजीनियर है, आजकल पोस्टेड है बॉम्बे
0: अच्छा
1: में। और मेरी
0: जी
1: छोटी सिस्टर, वो भी डॉक्टर है,
0: अरे
1: वो भी
0: वाह
1: बॉम्बे में है।
0: जी। तो जैसे कि आपने कहा कि आपको संगीत की जो प्रेरणा है वो अपनी माता जी से मिली, और जो आपकी पहली पाठशाला थी वो भी घर का संगीतमय माहौल था, तो आप डॉक्टरी की
1: जी
0: तरफ कैसे बढ़ी?
1: बस होता था ना उस टाइम में कि लड़की है तो डॉक्टर बनेगी और लड़का है तो इंजीनियर
0: बिल्कुल
1: बनेगा। तो शुरू से ही था कि बस मुझे डॉक्टर बनना है डॉक्टर। और हम लोग बहन भाई मिलकर, मैं डॉक्टर बनती थी, मेरे बहन भाई पेशेंट बनते थे, मेरी जो छोटी सिस्टर थी वो कंपाउंडर बन जाती थी। तो हम लोगों का शुरू से ये था कि हाँ हमें डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है। और फिर थोड़ा पढ़ाई में अच्छे थे तो होता गया यही।
0: जी, तो भगवान ने आपको सच में डॉक्टर ही बना दिया।
1: डॉक्टर ही बना दिया।
0: बहुत ही रोचक ये आपकी याद है, और इसी के साथ हम आपका एक और गीत लेते हैं।

0: डॉक्टर अलका, एक गायनोकोलॉजिस्ट का जीवन आपसे ज्यादा कौन जान सकता है, बहुत व्यस्त और जिम्मेदारियों से भरा होता है। तो ऐसे में
1: जी
0: संगीत के लिए समय निकालना कितना कठिन और कितना सुकून देने वाला है आपके लिए?
1: ये आपने बिल्कुल सही कहा कि एक गायनक की लाइफ तो बहुत ही बिजी होती है, क्योंकि हमारा पेशेंट ना दिन रात नहीं देखता, वो किसी भी टाइम आ सकता है, उसका दिन में भी आ सकता है, रात में भी आ सकता है। तो हमारी लाइफ खैर बिजी तो बहुत होती है गायनिक्स की, पर हाँ अगर आपको कोई शौक है तो उसके लिए आप थोड़ा बहुत टाइम निकाल सकते हो। तो मैं जितनी कोशिश करती हूँ कि अगर मिल जाता है टाइम तो मैं अपने शौक के लिए जरूर निकालती हूँ।
0: जी, तो डॉक्टर साहब, आजकल हम जैसे इंस्टाग्राम पे भी बहुत रील्स देखते हैं कि कई डॉक्टर्स अपने पेशेंट्स को म्यूजिक थेरेपी भी देते हैं। तो क्या आप भी इसमें यकीन रखते हैं कि अपने पेशेंट्स का स्ट्रेस दूर करने के लिए या उनके इलाज का एक भाग बनाने के लिए आप म्यूजिक को प्राथमिकता देती हों?
1: नहीं, हमारे पेशेंट ना जिस स्टेज पे आते हैं ना, तो वो शायद म्यूजिक सुनना ही नहीं चाहेंगे, वो इतने पेन में होते हैं, वो इतने पेन में होते हैं कि वो कहेंगे ये क्या कर रही हो डॉक्टर साहब, जल्दी करो जल्दी करो। या फिर अगर अगर कुछ थोड़ा सीरियस है तो फिर वो सर्जरी होती है, तो सर्जरी में तो हमारा पेशेंट बेहोश होता है,
0: जी
1: तो
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: सॉरी हम उनको म्यूजिक थेरेपी नहीं दे सकते।
0: जी। तो जैसे आप पिछले 20 वर्षों से अमेरिका में हैं, तो क्या अमेरिका में आने से पहले आप भारत में भी प्रैक्टिस करती थीं?
1: जी हाँ, मैं प्रैक्टिस करती थी
0: अच्छा, बताएंगे आप
1: जी,
0: हमारे
1: मेरे
0: श्रोताओं को कुछ?
1: इन-लॉज,
0: हाँ जी
1: हाँ मैं आगरा में, मतलब मेरी शादी हुई है तो
0: जी
1: आगरा में मेरे इन-लॉज का नर्सिंग होम था, तो मैं वहाँ प्रैक्टिस करती थी। फिर मेरी रेलवे में जॉब लगी तो रेलवे वाले बोलते थे कि नहीं आप प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर सकते, तो मैंने वहाँ पे
0: अच्छा
1: बस 2 साल प्रैक्टिस की, 2 साल जॉब की, उसके बाद मैंने छोड़ के अपनी प्रैक्टिस की, क्योंकि फिर अपना नर्सिंग होम है तो फिर कौन देखेगा फिर इसलिए।
0: जी जी
1: फिर मैंने हाँ वहाँ पे प्रैक्टिस की।
0: तो जैसे आप कह रही हैं आपका अपना नर्सिंग होम था, तो क्या आपके सास ससुर भी मेडिकल फील्ड के साथ कनेक्टेड हैं?
1: जी हाँ, दोनों भी डॉक्टर थे।
0: अच्छा, तो और इस वक्त आपके ससुराल में कौन कौन है?
1: इस वक्त मेरी सासू जी हैं
0: जी
1: पर वो अब प्रैक्टिस नहीं करती हैं, क्योंकि वो एज की
0: जी जी
1: प्रॉब्लम
0: जी
1: है,
0: जी
1: तो अब
0: जी
1: वो
0: जी
1: हाँ प्रैक्टिस नहीं कर पाती हैं, पर
0: जी
1: अभी मेरी सासू जी हैं आगरा में।
0: जी अच्छा, उन्होंने भारत में ही रहने का निर्णय लिया।
1: जी हाँ, तो ये है ना कि बड़े लोग वो आना नहीं चाहते हैं, अपना देश छोड़ के तो बिल्कुल भी नहीं आना चाहते,
0: जी
1: और अपनी
0: बिल्कुल
1: जगह जहाँ वो
0: बिल्कुल
1: शुरू से रहे हैं, इतना टाइम उन्होंने बिताया है, जबकि वो
0: बिल्कुल।
1: अकेले हैं फिर भी वो नहीं आना चाहती हैं।
0: ये
1: तो
0: अक्सर आजकल की
1: मेरे
0: जनरेशन को, जो आपकी और हमारी जनरेशन है, उसे ये प्रॉब्लम बहुत फेस करना पड़ता है, क्योंकि
1: जी
0: हमारे पेरेंट्स
1: हाँ
0: के जो रूट्स हैं, जो उनका घर बार है, दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, उनको लगता है कि भारत से अगर वो चले जाएंगे तो इन सबसे उनका नाता टूट जाएगा, तो वो
1: छूट
0: शायद वहीं
1: जाएगा
0: रहने का निर्णय लेते हैं।
1: जी
0: हालांकि उनका ये निर्णय हम लोगों के लिए थोड़ा पीड़ाजनक होता है, क्योंकि हम गिल्ट में आ
1: जी
0: जाते हैं कि हम कैसे उनकी सेवा करें।
1: सेवा करें, बस यही होता है।
0: जी,
1: डेली कॉल करते हैं, वीडियो कॉल करते हैं, पर वो बात नहीं होती ना कि
0: वो
1: चलो
0: बात
1: थोड़ी उनकी
0: नहीं
1: सेवा भी
0: रहती।
1: करने को मिल जाए, तो वो
0: सही,
1: हो नहीं
0: बिल्कुल
1: पाता।
0: सही। तो आपको अमेरिका और इंडिया दोनों में क्या फर्क लगा? वो यहाँ की रहन सहन, वेशभूषा, बोल चाल, इन सब में क्या फर्क लगा आपको, और कौन सा
1: सबसे
0: देश
1: पहले
0: बेहतर
1: जो
0: लगा?
1: भाई जन्मभूमि कर्मभूमि है, देखा जाए वो तो जन्मभूमि हुई हमारी, ये कर्मभूमि हो गई, अब इतने टाइम से हम यहाँ पर हैं। पर अगर ऑनेस्टली कहा जाए तो मुझे तो अमेरिका ज्यादा पसंद आया, एक तो लाइफ स्टाइल और सब कुछ, मतलब जितना जो हिंदू कल्चर यहाँ पर हम लोग सेलिब्रेट करते हैं या जो भी फेस्टिवल्स हम यहाँ सेलिब्रेट करते हैं, मुझे लगता है आजकल इंडिया में लोग इतना कर पाते हैं। हम हर फेस्टिवल, चाहे वो रक्षाबंधन है, चाहे वो जन्माष्टमी है, चाहे वो दशहरा है, आजकल मैंने देखा है हाँ सब फेस्टिवल हम यहाँ इतने अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, मिलके करते हैं, खूब धूमधाम से करते हैं। एंड कभी कभी तो जैसे होली है वो हमारे हर वीकेंड पे होता है, मार्च
0: अरे
1: में
0: वाह,
1: होली आती है,
0: क्या बात है,
1: हर वीकेंड हम होली खेलते
0: क्या बात है,
1: हैं।
0: क्या बात है।
1: दिवाली हर वीकेंड पे दिवाली होती है, किसी के घर होती है या किसी मंदिर में होती है, किसी ग्राउंड में होती है। तो
0: जी। और
1: अगर
0: मैंने
1: ऐसे
0: एक बात
1: कम
0: और महसूस की है, यहाँ इस देश में जो अमेरिका है, एक दूसरे के प्रति जो रिस्पेक्ट है, आदर की भावना है, वो भी ज्यादा है एज
1: बहुत
0: कंपेयर
1: ज्यादा है
0: टू। हाँ
1: जी हाँ, अगर आप वॉक कर रहे होगे ना, अगर आप किसी को नहीं भी जानते होगे तो वो अगर आई टू आई कांटेक्ट होता है तो आपको हेलो किए बिना नहीं जाएंगे यहाँ से।
0: जी
1: आप
0: जी
1: वॉक करोगे तो वो हेलो हाय हाउ आर यू ये तो बोलेंगे ही, भले आप उनको जानते हो कि नहीं जानते हो। इंडिया
0: जी
1: में तो शायद पता नहीं आजकल क्या
0: नहीं
1: है,
0: वैसे
1: पर
0: इंडिया में भी ये सब तो आजकल होता है, वहां पर जब हम वॉक्स पे
1: होता
0: जाते हैं हेलो हाय नहीं
1: है।
0: होती
1: ओके
0: लेकिन राम राम जरूर हो जाती है, तो वो अपना अपना एक
1: अच्छा
0: तरीका होता है सबका विश करने का, बट
1: जी।
0: ये सब तो खैर वहां पर भी है। तो डॉक्टर साहब आपको
1: ओके
0: ये
1: ओके
0: कैसे, आपको क्या लगता है कि संगीत ने अमेरिका में रहते हुए भी आपको अपनी भारतीय जड़ों के साथ जुड़े रखा है, कोई इसका भी कोई
1: बिल्कुल
0: इसमें
1: बिल्कुल,
0: योगदान है?
1: क्योंकि हम ना एक टेम्पल से जुड़े हुए हैं,
0: अच्छा
1: तो हम हर संडे को वहां जाते हैं,
0: अच्छा
1: मेरे हस्बैंड उस कमेटी के मेंबर भी हैं, तो हम लोग हर संडे को जाते हैं, तो वहाँ फेस्टिवल्स होते हैं, और हर संडे को एक आधा घंटे का एक भजन प्रोग्राम होता है,
0: जी
1: तो वहां पे जाके हम भजन गाते हैं, तो वो उस तरह से भी आप कह सकते हो कि संगीत से जुड़े हुए हैं।
0: जी जी जी जी जी बहुत बहुत बहुत ही खूबसूरत बात आपने ये बोली कि आप मंदिर में जाकर भी जो संगीत संध्या करती हैं और उसका हिस्सा बनती
1: जी
0: हैं, उसने आपको आपकी भारतीय जड़ों से जुड़े रखा है। बहुत
1: जोड़ा
0: खूब
1: हुआ है बिल्कुल।
0: जी। और यहीं पर हम आपका एक गीत और लेते हैं।

0: डॉक्टर हल्का, आप एक सफल कलाकार हैं, एक सफल गायिका भी हैं, और आपकी स्म्यूल कैरियोके पे एक बहुत अच्छी फैन फॉलोइंग भी है, तो निसंदेह आपने मंच पर भी काफी परफॉर्मेंसेस दी होंगी।
1: जी हाँ, आजकल तो इंडिया में तो काफी स्मॉल मीट्स होती
0: जी
1: हैं,
0: जी जी
1: तो जब भी मैं इंडिया जाती हूँ, अगर कोई स्मॉल मीट होती है तो मैं उसको अटेंड करती हूँ और वहां पर कह
0: जी
1: सकते हैं कि स्टेज परफॉर्मेंस दी है।
0: और बिल्कुल, उत्तर प्रदेश में तो बहुत बहुत ही होती हैं स्म्यूल
1: बहुत होने लगी हैं अब तो। हाँ, अब
0: मीटिंग्स
1: तो बहुत होने लगी है, हर सिटी का नाम लो और सिटी में स्कूल मीट हो रही होती
0: जी
1: है।
0: बिल्कुल
1: नहीं, वही मैंने कहा, अगर मेरे टाइम में अगर कोई स्कूल मीट होती है तो मैं जरूर अटेंड कर लेती हूँ।
0: जी। आपको ये भी तो रहता होगा कि चलिए अपने दोस्तों से मुलाकात हो जाएगी
1: जी हाँ, इसी बहाने मुलाकात हो जाती
0: जी,
1: है।
0: तो क्या कोई ऐसा स्टेज परफॉर्मेंस जो आपको अभी तक याद हो, अभी भी आपके दिल के बहुत करीब हो और आप हमारी श्रोताओं के साथ वो वाकया साझा करना चाहती हूँ?
1: मेरा मेडिकल कॉलेज का मैं बता सकती हूँ कि वो मुझे थोड़ा सा, मेडिकल कॉलेज में जब मैं फर्स्ट ईयर में गई थी तो वहां पर एक स्टेज परफॉर्मेंस, हमारा प्रोग्राम होते थे वहां पर, तो मुझे
0: जी
1: बोला गया कि अरे तुम अच्छा गाती हो, चलो एक स्टेज परफॉर्मेंस देना अपना करना। हमारे बैच का प्रोग्राम था वो, तो हमारे बैच वालों को करना था। अब इतने बड़े ऑडिटोरियम में जहाँ पे 3,000 स्टूडेंट्स, फिर टीचर्स,
0: जी
1: प्रोफेसर, उनकी वाइफ, इतने सब लोगों के सामने स्टेज पे पहुंचकर मेरा तो हो गया नर्वस। ऊपर
0: हाँ
1: मेरे जो फ्रेंड्स थे वो पीछे से इतना बूस्ट कर रहे थे, इतना बकअप कर रहे थे, अरे नहीं, कर ले हो गया, हो जाएगा पीछे से ना। और

0: किसी भी ऑडियंस को मत देखना, बस ऊपर देख कहीं और देख, ऑडियंस को मत
1: अरे
0: देखना। तो मैंने वहां पे परफॉर्म किया था, अजीब दास्तां है ये,
1: वाह क्या
0: और
1: बात है।
0: वो गाना मेरे लिए इतना फेमस हुआ कि मतलब लोग मुझे कहते हैं वो अलका जी का जो वो सॉन्ग है ना अजीब दास्तां है, वो प्ले कीजिए, वो
1: क्या
0: सुनाइए।
1: बात है क्या बात है, बहुत बढ़िया।
0: तो
1: तो आप स्म्यूल पे कब से गा रही हैं?
0: मैं स्मूल पर हूँ 2017 से।
1: जी। तो स्म्यूल पर जो आपको स्म्यूल ने मंच दिया है गायकी का, क्या इस मंच ने आपकी संगीत यात्रा में कोई बदलाव लाया है? कोई आपके परफॉर्मेंसेस आगे से बेहतर हुई हैं? रियाज आपका ज्यादा पक्का हुआ है? स्म्यूल में आपको गाकर क्या लगा? आप में क्या डिफरेंसेस आए हैं?
0: बहुत, ये तो मैं तो कहूंगी क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस है वो तो यही है। 2017 में मैं जो गाती हूँ, गाती थी, मैं सुनती हूँ अगर,
1: जी
0: और अब की सिंगिंग में बहुत डिफरेंस आया है।
1: जी
0: एक्चुअली उस टाइम में शायद हमें इतना नॉलेज नहीं थी या आइडिया नहीं था कि कैसे गाना है, बस ट्रैक देखा और गा दिया। जब अब सुनते हैं ना तो अब लगता है यार एक बार यूट्यूब सुन तो लेते, ओरिजिनल सॉन्ग सुन तो लेते कि
1: जी
0: उसमें जो
1: बिल्कुल
0: और कमियां हैं, क्योंकि हम लोग
1: बिल्कुल
0: को कुछ तो इतने पॉपुलर सॉन्ग है ना कि वो ऐसा लगता है अरे ये तो हमारे बाएं हाथ का खेल है, यो गा
1: जी,
0: देंगे वो
1: ये
0: गा
1: तो
0: देंगे।
1: चुटकियों में गा देंगे हम जी।
0: हाँ, पर जब बाद में सुनते हैं और ओरिजिनल सॉन्ग सुनते हैं, मैंने कहा वाह इन्होंने कितने अच्छे से लिया है इस वर्ड को, इन्होंने कितने अच्छे से पॉज लिया है। तो अब मैं चीजों को इतनी बारीकियों से सुनती हूँ ना, पहले यूट्यूब में, फिर मैं अपना इनवाइट ओपन करती हूँ, और मतलब इतना फर्क तो आया है, बहुत डिफरेंस आया
1: जी,
0: है सिंगिंग
1: ये
0: में,
1: बात
0: मुझे
1: आपने
0: मुझे
1: बिल्कुल
0: ऐसा
1: सही
0: लगता है।
1: कही है। किसी भी हम म्यूजिक लेजेंड का कोई भी गीत चाहे हम 10 बार सुने चाहे 20 बार सुने, जब भी हम सुनते हैं तो हमें हमेशा कोई ना कोई नई चीज उसमें मिल जाती है। कोई हरकत
0: जी
1: कहाँ पे
0: जी
1: लेनी है, कोई सरगम किस
0: जी
1: तरह छेड़नी है, कुछ ना कुछ हम
0: जी
1: हमेशा नया सीखते ही सीखते हैं। तो
0: जी
1: आपको किन के गीत पसंद हैं? आप जैसे कितने हमारे लेजेंड्स हैं, लता जी हैं, महेंद्र कपूर जी हैं, रफी साहब हैं, आपको कौन से सिंगर्स के गीत पसंद हैं?
0: एक्चुअली सिंगर्स के तो सभी के गाने बहुत पसंद हैं,
1: जी
0: पर कुछ कह सकते हैं कि जैसे कुछ फेवरेट होते हैं जिनके मुझे मतलब शुरू से मेरे को इतना अच्छे लगते थे,
1: जी
0: किशोर कुमार जी एंड आशा भोसले के डुएट्स, तो बस कुछ मिल जाए गाने को म्यूजिक
1: जी और खासकर अगर आरडी बर्मन जी का म्यूजिक हो साथ में
0: हो, ओहो तो
1: तो बहुत
0: बस
1: ही
0: सोने तो सुहागा।
1: इररेजिस्टिबल कॉम्बिनेशन बन जाता है। जी।
0: जी
1: तो डॉक्टर साहब, अगर मैं आपको कहूं कि हमारी श्रोताओं के लिए आप आशा जी या किशोर दा का कोई गीत समर्पित कीजिए, तो आप कौन सा गीत चुनेंगी?
0: वेरी टफ क्वेश्चन।
1: जी
0: इतने सारे सॉन्ग्स में से जो कि
1: जो
0: इनके इतने अच्छे हैं, उनमें से एक बताना तो बहुत ही मुश्किल
1: कि
0: काम है।
1: आप, मैं अगर अभी कहूं कि हमारे श्रोताओं को समर्पित कीजिए।
0: तो ये तो बहुत मुश्किल काम है, पर हाँ अच्छा ये लोग सॉन्ग कर सकते हैं अपने श्रोताओं को समर्पित, कि हाल कैसा है जनाब का, हाल
1: अरे
0: कैसा है
1: वाह।
0: श्रोताओं आपका।
1: तो
0: इसमें
1: आपसे इतनी
0: इसमें
1: सी गुजारिश है कि अभी आप गा के सुना दीजिए हमारे श्रोताओं के
0: अरे
1: लिए
0: अरे सपना जी, बड़ा मुश्किल काम है ये
1: गीत।
0: तो। इतने वेरिएशन से इस सॉन्ग में, और दोनों ने इतना अच्छे से परफॉर्म किया है, किशोर कुमार
1: जी
0: जी के हियरिंग और आशा जी के, वो नखरे ना मधुबाला जी के जो नखरे, बिल्कुल आप उनकी सिंगिंग में पता लगा सकते हो कि उन्होंने मधुबाला जी के लिए गाया होगा,
1: अरे बिल्कुल
0: जो उनकी
1: बिल्कुल
0: अदाएं हैं।
1: जी।
0: तो
1: तो हो जाए,
0: अभी
1: चलिए मैं किशोरदा
0: चलिए दो
1: बनती हूँ
0: लाइन
1: आपके लिए।
0: सुनाती हूँ।
1: दो लाइंस में मैं
0: अच्छा
1: किशोरदा बन जाती हूँ आपके लिए, आप आशा जी बन जाएंगी।
0: ठीक
1: ठीक,
0: है,
1: सिर्फ
0: चले
1: दो लाइन
0: ये
1: है
0: सही रहेगा।
1: ना।
0: जी हाँ।

0: मुझे लगता है उल्टा हो
1: उल्टा हो
0: गया।
1: गया ना, ऐसे मुझे भी लग रहा कि मैं अटक गई। चलो कोई बात
0: हाँ कोई
1: नहीं,
0: बात नहीं, चलिए इस बहाने
1: मैं
0: आपके
1: किशोर
0: साथ
1: बन गई
0: मुझे
1: या
0: गाने का
1: पाशा बन
0: मौका मिल गया।
1: गई।
0: जी जी

0: डॉक्टर साहब, दो बेटों की माँ होने के साथ साथ आप एक डॉक्टर हैं, संगीत प्रेमी हैं, अपना परिवार संभालती हैं, मंदिर के साथ एसोसिएटेड हैं, संगीत संध्या में भी हिस्सा लेती हैं और निसंदेह आप अपने दोस्तों में भी बहुत पॉपुलर हैं। तो इन सभी भूमिकाओं के बीच में संतुलन कैसे बनाती हैं आप?
1: संतुलन तो कह सकते हैं, लाइफ है तो व्यस्तता भी रहेगी।
0: जी
1: और मैं तो यही कहना चाहूंगी कि संतुलित होने के लिए आपको वक्त के साथ थोड़ा बहुत तो बदलाव करना पड़ेगा।
0: जी तो अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारे श्रोताओं के लिए कोई संदेश दीजिए, खासकर उन लोगों के लिए जो अपनी व्यस्त जिंदगी में भी अपने शौक को जिंदा रखना चाहते हैं।
1: जी, लाइफ है तो काम है, व्यस्तता भी है, बट आई वुड से कि अपने लिए थोड़ा सा तो वक्त निकालिए,
0: जी
1: अपने लिए, अपने शौक को पूरा करने के लिए थोड़ा सा टाइम निकालिए, फाइव
0: जी
1: मिनट्स 10 मिनट्स एटलीस्ट।
0: जी जो
1: तो
0: कि
1: मैं तो ये
0: जिसको आजकल
1: कहूंगी
0: हम कहते हैं कि
1: एटलीस्ट,
0: मी टाइम है, वो बहुत जरूरी है
1: या
0: हमारे
1: बहुत
0: लिए।
1: जरूरी है। जी हाँ, तो अगर आपके पास कोई भी शौक है, मैं ये नहीं कहूंगी सिंगिंग ही है, जो भी शौक है उसके लिए मुझे लगता है थोड़ा टाइम तो अपनी इस बिजी लाइफ में से निकालना चाहिए
0: जी
1: और इतना टाइम तो देना चाहिए
0: जी वो
1: जिससे कि आप
0: हमारे
1: अपने
0: सुकून
1: शौक
0: के
1: को
0: लिए
1: जिंदा
0: भी
1: रख
0: बहुत
1: सके।
0: जरूरी है। और
1: जी
0: जी,
1: हाँ
0: जी। आपने अपने एक्सपीरियंसेस, अपने अनुभव, संगीत के प्रति अपने प्रेम और जीवन की खूबसूरत सोच को जो हमारे साथ साझा किया है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी पूरी टीम की ओर से आपका दिल से धन्यवाद।
1: थैंक यू सपना, थैंक यू सो मच। और मुझे बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जयपुर रेडियो का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत
0: जी
1: अच्छा लगा आपसे बात करके।
0: जी हमें भी, और हम यही कामना करते हैं कि आप चिकित्सा के क्षेत्र में इसी तरह सेवा करती रहें और संगीत की मधुर धुनों से सबका दिल जीतती रहें। और हमारे
1: थैंक
0: प्यारे
1: यू।
0: श्रोताओं, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई शख्सियत, एक नई कहानी और नई गीतों के साथ। मैं हूं आरजे सपना देव गुप्ता और मेरे साथ हैं टेक्निकल एक्सपर्ट जगदीश अरोड़ा जी। मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए, रब राखा।
2: डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का ये जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, आपकी आवाज आपकी पहचान। प्रस्तुत है प्रोग्राम संगीते शाम, और संगीते शाम में हमारे आज के मेहमान कलाकार हैं गोविंदगढ़ पंजाब से जगदीश अरोड़ा और यूएसए से अलका लश्करी। आज आप सुनेंगे आप दोनों के युगल गीत, और हम तो यही कहेंगे आइए शोक से गाइए। आप चाहें तो कुछ और कह सकते हैं, जगदीश अरोड़ा और अलका लश्करी संगीते शाम प्रोग्राम में।

0: आइए बैठिए। क्या है आपका नाम? और नाम हम बता देते हैं कि आज संगीत शाम में हमारे साथ जो सिंगर्स हैं उनके नाम हैं गोविंदगढ़ पंजाब के जगदीश अरोड़ा और यूएसए से अलका लश्करी। और जब कहेंगे गुलाम ही हो गए, तो जब कहेंगे तब बैठेंगे, जब कहेंगे तब उठेंगे, जब आप कहेंगे गाएंगे तो हम तो यही कहेंगे कि आप गाइए ना।
1: बैठ जा, खड़े हो जा,

गीतों से भी आप जादू कर सकते हैं। आवाज की जादूगरी आपने देख ही ली, वशीकरण भी है और सम्मोहन भी है। मोहक से गीत हमने सुने जगदीश अरोड़ा और अलका की आवाजों में। आप सुन रहे हैं डिजिटल वॉइस वर्ड का जयपुर रेडियो वर्ड प्रोग्राम संगीत शाम। और जब ऐसा हो जाता है वशीकरण गीतों का, आवाज का, तो फिर सब कुछ भूलना भी पड़ सकता है। इसलिए सावधान रहिए और गाते रहिए। आपकी आवाज आपकी पहचान। अलका लश्करी यूएसए से और पंजाब से जगदीश अरोड़ा। आपकी आवाज आपकी पहचान।

जी हाँ, गीतों की जादूगरी है और एक ही बात है जो कभी भूली नहीं जाती इन गीतों में। हम हर गीत में यही गाते हैं, यही कहते हैं और इसी को पाने की तड़प सी रहती है और इसी की दुश्वारी है, फिर भी हमें आपसे यारी है। आपकी आवाज आपकी पहचान। संगीत शाम प्रोग्राम में आप सुन रहे हैं जगदीश अरोड़ा और अलका लश्करी की आवाजें डिजिटल वॉइस वर्ल्ड के जयपुर रेडियो वर्ल्ड से। आपकी आवाज आपकी पहचान। आइए सुनते हैं अगला खूबसूरत गीत जगदीश अरोड़ा और अलका की आवाजों में।

की गल है जी। हाँ, और इस गल को आप सभी जानते हैं, हमारे सुनने वाले भी जानते हैं, और ये गल, ये बात आप तक पहुंचाई यूएसए की अलका लश्करी और पंजाब के गोविंदगढ़ से जगदीश अरोड़ा। आपकी आवाज, आपकी पहचान, संगीत शाम प्रोग्राम की ये आखिरी पेशकश आप दोनों की आवाजों में।

तुम मिले प्यार से, और हम तो कहेंगे कि आप दोनों आए प्यार से, यानी जगदीश अरोड़ा और अलका लश्करी इस प्रोग्राम में। और इस प्रोग्राम को आपने खूबसूरत बना दिया, बेहतरीन बना दिया अपने गीतों के माध्यम से, और गीत भी चुन चुन के लाए हमारे सभी सुनने वालों को आपके गीत भाए। इसलिए हम लेना चाहेंगे उन लिसनर्स के नाम जिन्होंने आपको लाइक किया है। अनिल जय झुमके वाला मुंबई से, सोनल पारिक जूनागढ़ से, मंदाकिनी शाह वडोदरा गुजरात से, जगदीश तंवर पटियाला पंजाब से, मीता ठक्कर जगदलपुर छत्तीसगढ़ से, सुजाता जस्सानी गुजरात से, अनीता दुग्गड़ नेपाल से, तनु शर्मा हैदराबाद से, मीनू सिंह पंजाबी जयपुर राजस्थान से, महबूब अरमान यूपी से, अलका मदान दिल्ली से, अशोक पगाड़े हिमांशु सिंह जोधपुर से, और श्वेता सूद कनाडा से। आप सबका आभार। बहुत सारे फीडबैक्स मिले हैं, सभी का नाम लेना हमारे लिए संभव नहीं है क्योंकि अलग अलग डिवाइस और व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा आपको शुभकामनाओं के मैसेज मिले हैं। हमारे आज के इस मंच के उपस्थित कलाकार गोविंदगढ़ पंजाब के जगदीश अरोड़ा साहब, और यूएसए से हमारे साथ रही अलका लश्करी। आप दोनों का आभार और शुभकामनाएं। सुनते रहें आपकी आवाज, आपकी पहचान, संगीत शाम का ये सफर यहीं तक। आप सबका आभार।

आओ झूमे गाएं। आप सुन रहे हैं जयपुर रेडियो, आपकी आवाज आपकी पहचान। आओ झूमे गाएं ग्रुप की ओर से जयपुर रेडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर संजय धवन। कुलभूषण पंडित का जन्म 8 अक्टूबर 1926 में बलूचिस्तान में एक कश्मीरी पंडित परिवार में हुआ। 1940 के दशक में वे वहां से चलकर मुंबई पहुंचे और मुंबई पुलिस में एक सब इंस्पेक्टर के तौर पे नौकरी करी। उनके जूनियर्स ने उनकी शख्सियत को और रुतबे को देखते हुए कहा

कि सर आप तो देखने में एक फिल्म स्टार लगते हैं। ये बात उनके मन को भा गई और उन्होंने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में राजकुमार के रूप में अपना कदम रखा। जी हाँ दोस्तों, आज का कार्यक्रम समर्पित है एक यादगार के तौर पे श्री राजकुमार को। राजकुमार की पहली फिल्म थी रंगीली, लेकिन 1957 में नौशेरवाने आदिल और मदर इंडिया के रोल्स में उन्हें बहुत ही सराहा गया। तो आइए आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं मदर इंडिया के इस गीत से, जिसे कि गा रहे हैं मनु मृदुल और आभा माथुर।

बहुत खूबी से निभाया आप दोनों ने इस गीत को। चिनाई सेठ जिनके अपने घर शीशे के हों, वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। जी हां, डायलेक्ट डिलीवरी में राजकुमार ने अपनी एक अद्भुत पहचान बना ली। आज तक लोग उनके डायलॉग्स को याद करते हैं और दोहराते हैं। राजा के गम को किराए के रोने वालों की जरूरत नहीं पड़ेगी चिनाई साहब। 1965 की फिल्म वक्त के ये संवाद बहुत ही लोकप्रिय हुए। तो आइए सुनते हैं इसी फिल्म का एक गीत, आगे भी जाने न तू, पीछे भी जाने न तू, जो भी है बस यही पल है। इसे गा रही हैं जूही सिन्हा।

कोयल सी मधुर आवाज जूही सिन्हा की। न तलवार की धार से न गोलियों की बौछार से बंदा डरता है तो सिर्फ परवरदिगार से। जहां राजकुमार ने तिरंगा और हिंदुस्तान की कसम जैसी फिल्मों में मैचो रोल्स निभाए, वहां पर 1965 की फिल्म काजल में बहुत ही रोमांटिक रूप में पेश आए। तो आइए सुनते हैं फिल्म काजल का ये गीत जिसे कि गा रहे हैं सज्जाद खान।

वाह सजाद जी, बहुत ही खूबी सिखाया आपने इस गीत को। हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, हमसे जमाना खुद है जमाने से हम नहीं। राजकुमार का ये फेमस डायलॉग दरअसल जिगर मुरादाबादी का एक शेर है। तो आगे बढ़ते हैं काजल फिल्म से ही एक और गीत के साथ, जिसे कि ला रहे हैं डॉक्टर आदेश सक्सेना।

वाह ईशु, कितना मधुर गाया आपने। प्यार की बात चली तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि राजकुमार का विवाह एक एंग्लो इंडियन लड़की जेनिफर के साथ में हुआ, जो कि आगे चल के गायत्री के नाम से जानी गई। तो इसी बात पे सुनते हैं एक प्यार भरा गीत, जिसे कि ला रहे हैं अनिल झुमका वाला और सूर्यरेखा। फिल्म का नाम है ही रांझा। गीत की बोल है, मेरी दुनिया में तुम आई।

0: अंधेरे का इशारा समझो, अब तेरा दिल का जलाना होगा।
1: तुम बड़े वो हो, मुझे जाने दो।
0: जा सकोगी?
1: मुझे जाना होगा।
0: जाओ।
1: छोड़ोगी?
0: नहीं
1: छोड़ो ना।
0: आज की रात तो दिल तोड़ो ना।

सच रोमांटिक सॉन्ग, और कितनी खूबसूरती से गाया अनिल जी और सूर्य रेखा जी ने। फिल्म ही रांझा के गाने बहुत ही लोकप्रिय हुए थे, जिन्हें की संगीतबद्ध किया था मदन मोहन ने, और इनके गीतकार थे कैफी आजमी। तो आइए इसी फिल्म का एक और गीत सुनते हैं, ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, जिसे कि गा रहे हैं डॉक्टर नरेश चावला और डॉक्टर सीमा बजाज।

बहुत ही खूबसूरत आवाजें और उतनी ही खूबसूरत गायकी। राजकुमार ना ही केवल अपनी डायलेक्ट डिलीवरी के लिए जाने जाते थे बल्कि अपनी अदाकारी के लिए भी वो काफी फेमस थे। उन्हें 2 बारी फिल्म फेयर अवार्ड से सुशोभित किया गया और 4 बारी फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया। आगे बढ़ते हैं इस गीत के साथ, जिसे कि गा रहे हैं मुकेश चोपड़ा और गायत्री। फिल्म का नाम है लाल पत्थर। गीत के बोल हैं, उनके ख्याल आए तो आते चले गए।

और आप दोनों अपनी आवाजों से हमें लुभाते चले गए। आपके पांव देखे बहुत हसीन हैं, इन्हें जमीन पर मत उतारिएगा, मैले हो जाएंगे। 1972 की कमाल अमरोही द्वारा बनाई हाई बजट फिल्म पाकीज़ा का ये डायलॉग था। इस फिल्म में संगीत दिया था गुलाम मोहम्मद ने, इसके गीतकार थे कैफी आजमी। तो आइए सुनते हैं इसी फिल्म से एक गीत जिसे कि गा रही हैं डॉक्टर मनप्रीत खेमका।

0: बहुत ही मधुर आवाज डॉक्टर मनप्रीत की। तो चलते चलते एक और डायलॉग और उसके बाद एक और गीत।
1: खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी रजा क्या है।
0: इन जोरदार संवादों के बाद में एक बहुत ही मधुर गीत लेके आ रहे हैं वत्सला सिंह और उनके साथ दे रहे हैं ईश्वर। गीत की बोल है सिमटी हुई ये घड़ियां।

0: बहुत ही मधुर और खूबसूरत आवाजें हैं इन दोनों गायकों की। कुदरत का खेल देखिए कि अपनी आवाज और डायलेक्ट डिलीवरी के लिए जाने गए राजकुमार का देहांत 3 जुलाई 1996 में गले के कैंसर की वजह से हुआ। ये प्रोग्राम उन्हीं की यादगार में एक श्रद्धांजलि के रूप में समर्पित था। और इसी के साथ आज का ये कार्यक्रम समाप्त होता है। आओ झूमे गाय ग्रुप की ओर से मैं आपको धन्यवाद करते हुए आपसे आगे लेना चाहूंगा। अगले सप्ताह आज के रोज आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि, शब बखैर, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और सुनते रहें जयपुर रेडियो। आओ झूमे गाए। आप सुन रहे हैं जयपुर रेडियो, आपकी आवाज, आपकी पहचान।
1: डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का ये जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, आपकी आवाज, आपकी पहचान। प्रस्तुत है प्रोग्राम जयपुर रेडियो के आज के कलाकार, और हमारी आज की कलाकार हैं उड़ीसा भुवनेश्वर से गाथा महंती। वेलकम है, स्वागत है और सभी सुनने वालों को आज के दिन की शुभकामनाएं। प्रथम पति, बुद्धि के दाता, भाग्य विधाता, रिद्धि सिद्धि के सिद्ध नायक को प्रणाम है, बारंबार नमस्कार है। कार्यक्रम का आरंभ प्रथम पुत्र श्री गणेश गौरी सुप्रिय महेश।

गौरी सुत प्रिय महेश को सर्वप्रथम प्रणाम नमन और स्मरण करने के बाद प्रोग्राम गीतों की गाथा गीतों में गाथा में आज हमारे साथ हैं भुवनेश्वर से गाथा महंती। अब हरि का स्मरण कर लेते हैं।

अंधेरों में जलते दिए सा सांचा तेरा नाम, तू ही दुख दूर करे। हरे कृष्ण हरे, हरे राम हरे। बिल्कुल, जो हर लेता है दुनिया के दुख दर्द को, उसी को कहते हैं हरे कृष्ण। उसी का नाम है और वही संसार का पालक है। आज के इस प्रोग्राम में गीतों की गाथा, गीतों में गाथा और डॉक्टर गाथा न केवल भजन गाती हैं, न केवल बॉलीवुड के सॉन्ग्स आप तक पहुंचाती हैं। हर तरह के गीत गाने की क्षमता है आप में, चाहे वो क्लासिकल हो, सेमी क्लासिकल हो, गजल हो, उन सबको अपनी आवाज देती हैं और बहुत खूबसूरत गाती हैं। डॉक्टर होते हुए भी गीतों के साथ इतनी आस्था, इसीलिए हम कहते हैं गीतों की गाथा, गीतों में गाथा। आइए सुनते हैं कुछ और सॉन्ग डॉक्टर गाथा से। ओडिशा भुवनेश्वर से हमारे साथ, आपकी आवाज आपकी पहचान। जयपुर रेडियो वर्ल्ड सुन रहे हैं आप।

पहली बार प्यार हुआ, दिल को पहली बार प्यार हुआ। और पहला पहला जो प्यार होता है वो हमेशा याद रहता है, जिंदगी भर याद रहता है। और हर काम, जब हम पहली बार स्कूल जाते हैं तो वो याद रहता है, जब हम पहली बार गाते हैं वो भी याद रहता है, और हम पहली बार किसी से मिलते हैं तो वो भी इम्प्रेशन हमारे दिमाग में होता है। पहली बार का बहुत जीवन में महत्व होता है। हमारे जीवन की पहल पहले प्यार से होती है और प्यार की समझ तो धीरे धीरे आती है। आप सुन रहे हैं आज के कलाकार प्रोग्राम में, जिसका नाम है गीतों की गाथा, गीतों में गाथा। और हमारे साथ डॉक्टर गाथा अपने खूबसूरत गीतों के साथ। अब गाथा हमारे साथ तो है नहीं, नहीं तो हम पूछते कि पहली बार आपने गीत कब गाया। बहरहाल हम सुनवा देते हैं आपका अगला गीत। आपकी आवाज, आपकी पहचान। आप सुन रहे हैं डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का, जयपुर रेडियो वर्ल्ड।

पहली बार जब कोई हमसाया सा हम सफर मिल जाता है तो शायद यही कहते हैं मेरी क्या खता है। होता है ये भी, जमीन को जैसे आसमां मिल गया, तुम जो मिल गए हो ये जहां मिल गया। ये बहुत खूबसूरत गीत है और इस खूबसूरत गीत को और ज्यादा खूबसूरत बनाने के लिए हम डॉक्टर गाथा को शुक्रिया कहेंगे कि आपने अपना अंदाज देके, अंदाजे बयां देके इसको और ज्यादा खूबसूरत, इसकी जो स्पीड थी उसमें और ज्यादा इसको गति दे दी आपने, उसके लिए बहुत शुक्रिया। बहुत खूबसूरत गायकी रही इस गीत की और एकदम नया नवेला सा गीत बन गया। इस गीत के लिए हम आपको कहेंगे बहुत शुभकामनाएं, आपने इसको एक नए अंदाज में प्रस्तुत किया इस मंच पर। आपकी आवाज आपकी पहचान, आप सुन रहे हैं डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ल्ड, गीतों की गाथा, गीतों में गाथा।

वाह, सुरीली गजल गजल में कहा था, माना के मोहब्बत को छुपाना है मोहब्बत, छुपके से किसी रोज जताने के लिए आ, रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए आ। बेहद खूबसूरत सुरीली गजल हमने सुनी, जी करता है इसे सुनते रहें, बार बार सुनते रहें। एक पुकार है इस गजल में और बहुत खूबसूरत अदायगी डॉक्टर गाथा की, आपकी आवाज आपकी।

0: जाने दो मुझे, बहुत खूबसूरत अदायगी रही इस गीत की, अपना अंदाज और अपनी गायकी से लबरेज डॉक्टर गाथा ने इसकी प्रस्तुति दी। और इससे पहले हमने जो गजल सुनी उसमें भी यही था, किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम, तू मुझसे खपा है तो जमाने के लिए आ, रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए आ। लेकिन हमारा दिल दुखाने के लिए नहीं, दिल को लुभाने के लिए हमारी आज की सिंगर आई। और एक ऐसी वर्सटाइल सिंगर हैं डॉक्टर गाथा, जिन्होंने हर तरह के गीतों को, हर तरह के गजलों को अपना अंदाज दिया है गायकी का। इसके लिए हम आपको कहेंगे बहुत शुक्रिया, बहुत शुभकामनाएं देंगे। यूं ही गाते रहें और जयपुर रेडियो पर बराबर आते रहें। आज के इस सुंदर से सुरीले सफर के लिए आपका शुक्रिया, धन्यवाद। सुनते रहें आपकी आवाज, आपकी पहचान।
1: डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का ये जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, आपकी आवाज आपकी पहचान। आज के कलाकार प्रोग्राम में आज हमारे संग है, हमारे साथ हैं नरेंद्र सिंह गोहिल। वेलकम है नरेंद्र जी। और हमारे श्रोता आपके गीत सुनते हैं बराबर और जानते हैं आपका नाम जयपुर रेडियो के सिंगर के रूप में। आइए सुनते हैं आपका पहला गीत और इस प्रोग्राम को देते हैं एक स्पीड।

अब है कौन है सच्चा कौन है झूठा, हर चेहरे पे नकाब है। जरा सोचो जरा समझो जरा संभल के रहियो जी, जरा सोचो जरा समझो जरा संभल के रहियो जी। दो जासूस करे महसूस के दुनिया

0: सोचो जरा समझो जरा संभल के रहियो जी। दो जासूस करे महसूस कि दुनिया बड़ी खराब है, कौन है सच्चा कौन है झूठा हर चेहरे पे नकाब है। जरा सोचो जरा समझो जरा संभल के रहियो जी। जरा सोचो जरा समझो जरा संभल के रहियो जी। दो जासूस करे महसूस कि दुनिया बड़ी खराब है, दुनिया बड़ी खराब है, दुनिया बड़ी खराब है।
1: कह देना बहुत आसान है कि दुनिया बहुत खराब है, पर दो जासूस महसूस करते हैं तो कुछ सोचना पड़ेगा, कुछ समझना पड़ेगा। और ये खूबसूरत गीत गा रहे थे नरेंद्र सिंह गोहिल गांधीनगर गुजरात से, और आपका साथ दे रहे थे आपके सहगायक अजय पाठक। आप सुन रहे हैं वो गीत जो दो गाने हैं और मुकेश जी ने जिन गीतों को गाया है। अगले गीत की ओर चलते हैं और देखते हैं नरेंद्र सिंह गोहिल क्या लेके आए हैं, क्या अफसाना है, क्या कहानी है, क्या फसाना है।

काला लेख लाए हैं नरेंद्र सिंह गौहिल गांधीनगर गुजरात से, और इस गीत में साथ दे रही थी जसवीर कौर। प्यार का आगाज मुकेश जी के वो गीत जिन्हें दो गानों के रूप में आप सुनते हैं, और उन्हीं गीतों को उन्हीं गीतों का एक संकलन लेके आए हैं नरेंद्र सिंह गौहिल, हमारे आज के कलाकार। आपकी आवाज आपकी

आप सुन रहे हैं जयपुर रेडियो वर्ल्ड, आपकी आवाज आपकी पहचान। और इस गीत में आपका साथ दे रही थी, यानी नरेंद्र सिंह गोहिल का साथ दे रही थी, सीमा कदासिया। आइए सुनते हैं युगल गीत माला का अगला सॉन्ग।

ले जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप उसी दुनिया में हैं जिसका नाम है जयपुर रेडियो वर्ल्ड और जिसे सुनती है पूरी दुनिया। नरेंद्र सिंह गोहिल का साथ दे रही थी इस गीत में हेमांगिनी, आपकी आवाज आपकी पहचान।

सुन रहे हैं वो गीत जिन गीतों को आवाज दी थी मुकेश जी ने, और आज वो आवाज नरेंद्र सिंह गोहिल दे रहे हैं अपने को सिंगर्स के साथ।

सजदों में तुम्हें नजारों में, और ये दो गाना गा रहे थे तमन्ना और नरेंद्र सिंह गोहिल। और आइए भावना के साथ नरेंद्र सिंह गोहिल, मुकेश जी का ये खूबसूरत गीत भावना अवस्थी और नरेंद्र सिंह गोहिल लेके आए हैं ये सुरीला सॉन्ग।

ये प्यार का अफसाना सुना रहे थे अपने गीत से नरेंद्र सिंह गोहिल और भावना अवस्थी। आइए सुनते हैं प्रोग्राम का ये आखिरी गीत। इस गीत में साथ दे रही हैं सीमा

0: तुम प्यार से प्यारे हो और प्यार से प्यारा है जयपुर रेडियो वर्ल्ड, जहाँ से सुनते हैं आप अपने सुरीले सॉन्ग। आपकी आवाज आपकी पहचान का ये मंच, और आपने सुना अभी नरेंद्र सिंह गोहिल के साथ सीमा कदासिया का युगल स्वर। इसी के साथ ये प्रोग्राम यहीं तक। बहुत धन्यवाद कहेंगे, आभार कहेंगे नरेंद्र सिंह गोहिल को कि आप इतने सुरीले सॉन्ग लेके इस मंच पर आए। बहुत शुक्रिया, बहुत आभार। सुनते रहें जब रेडियो बार बार आपकी आवाज आपकी पहचान।
1: आओ झूमे गाए। आप सुन रहे हैं जयपुर रेडियो, आपकी आवाज आपकी पहचान।

जीवन की इस आपाधापी में सभी व्यस्त हैं, न जाने किस दौड़ में शामिल है और न जाने ये दौड़ कब खत्म होगी। दोस्तों, कहीं ऐसा ना हो ये जीवन रेत की तरह आपकी मुट्ठी से फिसल जाए और आपको पता भी न लगे। तो जनाब, ढूंढ लीजिए कुछ मनोरंजन के साधन और जी लीजिए अपनी जिंदगी। मनोरंजन की बात चली है तो मेरे अनुसार मनोरंजन का एक सशक्त माध्यम है फिल्में। अब ये फिल्में हो सकती हैं बॉलीवुड की, टॉलीवुड की या फिर हॉलीवुड की फिल्में, और वो भी संगीत प्रधान फिल्में। तो भाई क्या बात है। वो कहते हैं ना, खाने में यदि नमक ना हो तो वो बेस्वादी सा लगता है। इस तरह से जीवन में संगीत ना हो तो फिर क्या जीना यारो। अनदेखी अनजानी मस्तानी पहचानी और थोड़ी सी दीवानी तनु का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ डांसिंग दिवा ऑफ बॉलीवुड। आज के मेरे गीतों के पिटारे को खोलने से पहले आप सबको एक वादा करना होगा, और वो भी पक्का वादा, क्योंकि आज का हमारा कार्यक्रम समर्पित है डांसिंग दिवाज ऑफ बॉलीवुड को। तो जब आओ झूमे गाए समूह के सदस्य अपने खूबसूरत गीतों को प्रस्तुत करें तो आप भी उनके साथ थिरकिएगा जरूर। पक्का वादा? ठीक है, तो लीजिए पेश खिदमत है आज की इस खुशनुमा सांझ का पहला गीत संचप्पा सुंतारा दीपशिखा और डॉक्टर गिरीश की मधुर आवाजों में।

चंपा और तारा ने तो एक दूसरे की बात सुन ली है, पर मैंने आपकी तालियों की गड़गड़ाहट नहीं सुनी। कंजूसी नहीं चलेगी जनाब, चलिए बजा भी दीजिए तालियां हमारे हुनरमंद कलाकारों दीपशिखा और डॉक्टर गिरीश के लिए। दोस्तों, कुछ गाने जब हम गाते हैं तो हम नहीं, हमारी खामोशियां गुनगुनाती हैं। ये गाने हमें प्यार की धुन पर नाचने के लिए मजबूर सा कर देते हैं, और यही वो गीत है जो हमें संगीत के नशे में हमेशा बहकाए रखते हैं। चलिए लुफ्त उठाते हैं अगले गीत का, जिसे प्रस्तुत करने आ रही हैं संगीता और तान्या। गीत के बोल होठों पे ऐसी बात, और फिल्म का नाम है ज्वेल थीफ।

संगीता और तान्या, आपने होठों पे जो बात दबा कर रखी थी वो जग जाहिर नहीं हुई है। इस खूबसूरत प्रस्तुति के बाद आपका तारुफ कराना चाहती हूँ ऐसे दो कलाकारों से जिनका कहना है कि मेरे पैरों में घुंघरू बंधा दो तो फिर मेरी चाल देखना। तो आइए देखते हैं उनकी चाल। नाना मेरा मतलब है, सुनते हैं ये गीत।

अभी जो ये गीत आपने सुना वो था फिल्म संघर्ष से, जो प्रदर्शित हुई थी 1968 में। अगला गीत जो मैं आपकी नजर करने जा रही हूँ, दरअसल वो एक रिजेक्टेड गीत था। जी हाँ जनाब, आपने ठीक सुना, रिजेक्टेड। तो हुआ यूं कि ये गीत पहले देवानंद साहब की फिल्म के लिए रिकॉर्ड किया गया था, पर देवानंद साहब को ये कुछ खास पसंद नहीं आया, जिसके चलते गीत के कंपोजर जयकिशन साहब ने इस गीत को सुरक्षित रखा। एक दिन यूं ही उन्होंने एक पार्टी में इस गीत को बजाया और पार्टी में उपस्थित शमी कपूर साहब इस गीत से बेहद मुतासिर हुए। उन्होंने जयकिशन साहब से इस गीत को उनकी फिल्म ब्रह्मचारी में सम्मिलित करने की गुजारिश की। जयकिशन साहब जी ने उनकी गुजारिश सहर्ष मंजूर कर ली और इस तरह से ये प्लेटिनम गाना सम्मिलित हो गया फिल्म ब्रह्मचारी में, और आगे जो हुआ वो एक इतिहास ही है। आइए सुनते हैं ये प्लेटिनम गाना प्रशांत जी और मनीषा की सुमधुर आवाजों में।

आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे। दोस्तों, बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि यह गीत लता दीदी ने गाया है। वैसे सच तो ये है कि यह गीत मोहम्मद रफ़ी साहब ने गाया था और उनके सुर में सुर मिलाया था सुमन कल्याणपुर जी ने। इश्क वालों से न पूछो कि उनकी रात का आलम तन्हा कैसे गुजरता है, जुदा हो हम सफ़र जिसका वो उसको याद करता है, ना हो जिसका कोई वो मिलने की फरियाद करता है। आपकी नज़र अगला गीत अनजान साहब की जादुई कलम से, जो कि सराबोर है इश्क प्यार मोहब्बत के पाक और पाकीज़ा एहसास से। अगला गीत फिल्म मुकद्दर का सिकंदर से, जिसे फिल्म में गाया था लता दीदी और किशोर दा ने, और हमारे लिए यह लेके आ रहे हैं बिमल जी और कविता।

भाई क्या बात है। दोस्तों आप सभी से करबद्ध प्रार्थना, आप एकांत में बैठ जाएं और ईश्वर की ओर अपना ध्यान लगाने का प्रयत्न करें, क्योंकि कार्यक्रम का अगला गीत भक्ति रस से ओतप्रोत जो है, और भक्ति रस का रसपान कराने आ रहे हैं संजय जोशी जी और उनका साथ दे रही है रति।

जय जय शिव शंकर। बेहतरीन प्रस्तुति। और ये लिया गया था फिल्म आपकी कसम से। वैसे फिल्म आपकी कसम के लगभग सारे गीत बेहद मशहूर हुए थे, फिर वो सुनो कहो हो या फिर जिंदगी के सफर में या फिर करवटे बदलते रहे। दोस्तों आपने कहावत तो जरूर सुनी होगी, दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। उसी तरह से मैं कहती हूँ गाने गाने पर लिखा होता है फिल्म का नाम। कार्यक्रम की अगली पायदान पर जो गीत मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो किसी और फिल्म के लिए बनाया गया था लेकिन बजाया गया किसी और फिल्म में। तो ये फिल्म थी कसाब और फिरोज खान ने इस फिल्म के लिए एक बेहद ही पैरों को थिरकाने वाला गीत बनाया लेकिन ये गीत सम्मिलित हुआ फिल्म कुर्बानी में और इसने सफलता के परचम लहरा दिए। बुलाना चाहूंगी दोनों लैलाओं को, माफ कीजिएगा दोनों गायिकाओं को, अनुजा और प्रियंका को। स्वागत है।

गुलुक गुलु गुलुक गुलु।

वाह भाई वाह, धूम मचा दी आप दोनों ने। दोस्तों बात है उस समय की जब चार दिग्गज एन चंद्रा, लक्ष्मीकांत जी, प्यारे लाल जी और जावेद अख्तर साहब, ये चौकड़ी एकत्रित हुई थी एक गाने को खूबसूरत स्वरूप देने के लिए। लेकिन निर्देशक एन चंद्रा साहब चाहते क्या थे वो बता नहीं पा रहे थे, जिसके चलते जावेद साहब मीटिंग छोड़कर चले गए। दूसरी मुलाकात हुई एन चंद्रा और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी की। एन चंद्रा साहब ने एक मराठी धुन सुनाई और इस गीत पर जो बोल उन्होंने गाए वो थे डिंग डोंग डिंग, डिंग डोंग डिंग डोंग। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने तुरंत अपना हारमोनियम लिया और इसी गीत को रिकॉर्ड किया गया। और पता है डमी बोल क्या थे? वो बोल थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। साहब ने जब ये डमी बोलों को सुना तो उन्हें ये बोल बहुत अच्छे लगे और उन्होंने इन बोलों को ऐसे ही उस गीत में उतार दिया और इस तरह से उत्पत्ति हुई एक बेहद ही मशहूर चार्टबस्टर गीत की। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं बात कर रही हूँ फिल्म तेजाब की, उस मशहूर गीत की। आइए सुनते हैं यही गीत।

दोस्तों, आपको याद है ना, आपने वादा किया था अपने पैरों को थिरकाते रहने का। इतनी मधुरता से गिनती सिखाने के लिए गगन माथुर और डॉली जी का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, जब हम किसी से मिलते हैं तो सबसे पहले हमारा ध्यान कहाँ जाता है? जी हाँ, आँखों पर, आँखों की खूबसूरती पर। और यही कारण है कि आँखों की खूबसूरती पर शायर रीझ ही जाते हैं। इनके चार हो जाने से इश्क का मौसम जो आ जाता है जनाब, और जब इन आंखों में कचरा लगा दिया जाए तो मानो आसमान पर अटखेलिया करते बादल घेर आते हैं। कचरारे नैनों का बखान करने के लिए आमंत्रित कर रही हूँ मुकेश चोपड़ा जी को, और उनके सुर मिलाने का सौभाग्य मिल रहा है मुझे, यानी तनुजा मुंदड़ा को।

0: कचरा रे कचरा रे तेरे कारे कारे नैना। इस गीत के लिए अलीशा चनाई जी को फिल्म फेयर का सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका का अवार्ड मिला और साथ ही साथ वह भी मर्चेंट को सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफर का अवार्ड मिला था। जयपुर रेडियो सुन रहे हैं आप और मैं हूँ तनु जमुंदड़ा आपके साथ, लेकर आई हूँ डांसिंग दिवा ऑफ बॉलीवुड। पेश है कार्यक्रम का अंतिम लेकिन बेहतरीन गीत, जो कि लिया गया है मेरी पर्सनल फेवरेट फिल्म ये जवानी है दीवानी से। इस फिल्म का प्रत्येक चरित्र आत्म प्रेम, स्वयं की स्वीकृति और सपनों पर विश्वास करना सिखाता है। स्वागत कीजिए वीसी किशोर और प्रेरणा का, जो कि लेकर आ रहे हैं दिल्ली वाला घाघरा।
1: साहेबान कदरदान मेहरबान, दिल थाम के बैठिए क्योंकि अब आपके सामने तशरीफ ला रही है आगरा की अजीम फनकारा मलिका हुस्न नूर नजर मोहतरमा मोहिनी

0: वाह, मौसम बदल दिया। दोस्तों, घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि समय हो चला है आपसे विदा लेने का। अपनी सखी तनुजा को इजाजत दीजिए, फिर मिलूंगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और हाँ, सुनना ना भूलिएगा जयपुर रेडियो। भक्ति प्रभा, भजनों की सरिता, आप सुन रहे हैं जयपुर रेडियो, आपकी आवाज आपकी पहचान।
1: नमस्कार मित्रों, मैं लक्ष्मी बालचंद्रन आप सभी श्रोताओं का स्वागत करती हूं हमारे कार्यक्रम भजनों की सरिता में। मित्रों, हमारे यहाँ कई ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने मानवता को एक अलग दिशा दिखाई है। इन महापुरुषों के विचारों ने समय समय पर हमें नई ऊर्जा और सोच का अनुभव कराया है। ऐसे ही सकारात्मक ऊर्जा से भरे और प्रेरणापद विचार रखने वाले महापुरुषों में एक हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। आज का ये कार्यक्रम

उस महान कवि को समर्पित है। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि जब तुलसीदास जी ने राम गाथा लिखना शुरू किया तो दिन के दौरान उनके द्वारा लिखे गए सभी छंद अगले दिन तक गायब हो जाते थे। एक सप्ताह तक लगातार ऐसा होता रहा, जिसके पश्चात भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिया और उन्हें संस्कृत के बजाय एक स्थानीय भाषा में लिखने का निर्देश दिया। तो चलिए, इस पावन माह में गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित शिव रुद्राक्ष स्तोत्र से शुरुआत करते हैं। इसे प्रस्तुत करने आ रहे हैं अनूप शर्मा जी, संजय फड़के जी, संजय हरने जी, एस महर्षि जी, ललिता कृष्णमूर्ति और

आप सुन रहे हैं जयपुर रेडियो। मित्रों, कहते हैं कि तुलसीदास जी जन्म के समय रोए नहीं थे, बल्कि राम शब्द का उच्चारण किया था और इसलिए उन्हें राम बोला के नाम से जाना जाता था। तुलसीदास जी रामानंद वैष्णव संप्रदाय के वंशज थे, जिन्होंने खुद को भगवान राम की पूजा के लिए समर्पित कर दिया था। भगवान राम जी उनके व्यक्तित्व में इतने सम्मिलित थे कि तुलसीदास जी ने एक गीत की रचना की मानो जैसे वे खुद वहां उपस्थित थे। वह दृश्य था भगवान राम का जन्म और उनकी बाल्यावस्था। किलकी किलकी उठत धाय, गिरत भूमि लटपटाए, धाय मात गोद लेतु दशरथ की रानिया, ठुमक चलत रामचंद्र। इसे प्रस्तुत करने आ रहे हैं प्रेरणा जकादार, शोमा चटर्ज रॉय और दीपा गणेश।

मित्रों, गोस्वामी तुलसीदास जी की अनेक रचनाएं हैं, जिनमें से एक विनय पत्रिका है। कई देवी देवताओं के स्तुति गीत इसमें शामिल है, हालांकि प्रमुख स्थान भगवान राम जी को दिया गया है। इस दिव्य रचनावली से एक मशहूर भजन सुनते हैं, जिसे मूल रूप में लता मंगेशकर जी ने प्रस्तुत किया है। जयपुर रेडियो के लिए प्रस्तुत करने आ रहे हैं विद्या शंकर, गायत्री जगन्नाथन, आभा माथुर, शर्मिष्ठा सारंगी और स्वयं मैं।

यमुना तट टीले रेतीले, घास फूस का घर डंडे पर, गोबर से लीपी आंगन में, तुलसी का बिरवा घंटी स्वर, माँ के मुंह में रामायण के दोहे चौपाई रस घोले, आओ मन की गांठें खोले। ये पंक्तियां हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविता आओ मन की गांठें खोले में से हैं। मित्रों, हम और आप एक पल हमारे अतीत में जाए तो एक चीज हमारे बीच स्वरूप होगा और वह है रामायण। हम सभी ने हमारी दादी नानी से रामायण की कहानियां जरूर सुना है। तुलसीदास जी को महर्षि वाल्मीकि, जो संस्कृत में मूल रामायण के लेखक थे, उनका अवतार माना जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा अवधि भाषा में रचित हनुमान चालीसा श्री हनुमान जी पर एक अति प्रिय भजन है। उत्तर भारत में अधिकांश घरों में इसका रोजाना पाठ होता है। नियमित रूप से इसका जाप करने से हमें अनेक लाभ प्राप्त होते हैं, जैसे तनाव से मुक्त होना, हमारे सभी प्रयासों में बाधाओं को दूर करना और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने में मदद करता है। आइए सुनते हैं भगवान राम जी के भक्त हनुमान जी को समर्पित 40 चौपाई की यह माला। इसे प्रस्तुत करने आ रहे हैं अनूप शर्मा, ललिता कृष्णमूर्ति, मुकेश चोपड़ा, संजय हरने, एमडी त्यागी, चारुल सक्सेना, तनुजा मोंद्रा, रमावी और मैं लक्ष्मी बालचंद्रन।

0: सियावर रामचंद्र की जय।
1: जय
2: पवन सुत हनुमान की जय।
3: तुलसी साथी विपत्ति के, विद्या विनय विवेक, साहस सुकृति सुसत्य व्रत, राम भरोसे एक। तुलसीदास जी कहते हैं कि किसी भी विपदा से ये सात गुण आपको बचाएंगे। विद्या विनय विवेक साहस आपके भले कर्म, सत्यनिष्ठा और भगवान के प्रति आपका विश्वास। आइए हम इन सभी सकारात्मक विचारों का अनुभव करें। जाते जाते मैं लक्ष्मी बालचंद्रन आप सभी श्रोताओं का धन्यवाद करती हूँ। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। धन्यवाद।
0: भक्ति प्रभा भजनों की सरिता, आप सुन रहे हैं जयपुर रेडियो, आपकी आवाज आपकी पहचान।
4: आपका तहे दिल से अभिनंदन है। आपकी सखी तनुजा मुंदड़ा पुनः उपस्थित है एक भक्ति में प्रस्तुति के साथ। दोस्तों, सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति एवं संहार के अधिपति देव है शिव भोलेनाथ। जिस प्रकार इस ब्रह्मांड का न तो कोई आरंभ है और न कोई अंत, उसी प्रकार शिव अनादि हैं, अनंत हैं। संपूर्ण प्रकृति शिव के अंदर समाहित है। कार्यक्रम का प्रारंभ कर रहे हैं शिव स्तुति के साथ। शिव भक्त वीरेंद्र मिश्रा जी की इस प्रार्थना के साथ भोर भई अब जा

बेहद खूबसूरत प्रस्तुति। दोस्तों, सतयुग द्वापर युग में ईश्वर प्राप्ति के लिए तप, तपस्या, अनुष्ठान, आराधना की जाती थी, लेकिन कलयुग में ईश्वर नाम मात्र से ही मानव जीवन तर जाता है। इसलिए हमें जहाँ भी मौका मिले ईश्वर सुमिरन का मौका चूकना नहीं चाहिए। कबीरदास ने भी क्या खूब कहा है, कबीर सुमिरन सार है और सकल जंजाल, कबीर सुमिरन सार है और सकल जंजाल, आदि अंतमति सोधियो, आदि अंतमति सोधियो, दूजा देखा काल। यानी ईश्वर का ध्यान सुमिरन ही मुख्य है, बाकी सब तो मोह माया है, जंजाल है। शुरू में, अंत में और मध्य में यदि जांच परख कर देखा जाए तो सुमिरन के अलावा बाकी सब कुछ दुख मात्र है। अगली प्रस्तुति नाम की महिमा को बताती हुई, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं संजय हरने जी, नाम हरि का जप ले।

दोस्तों, हिंदू धर्म में माता दुर्गा की पूजा बड़ी ही आस्था के साथ की जाती है। ऐसा माना जाता है कि माँ दुर्गा जिस भी भक्त से प्रसन्न होती हैं, उसके जीवन के सभी कष्टों का नाश कर देती हैं। दुर्गा जी की तुलना परम ब्रह्मा से भी की जाती है। दुर्गा को आदिशक्ति, प्रधान प्रकृति, गुणवती माया, बुद्धि तत्व की जननी और विकार रहित बताया गया है। कहते हैं माँ दुर्गा अपने भक्तों को अंधकार और अज्ञानता से बचाती है। माता दुर्गा के आदि शक्ति स्वरूप की आराधना करने हमारे समक्ष आ रहे हैं मुकेश चोपड़ा जी।

बहुत खूब। दोस्तों, आदिशक्ति को सनातन, निराकार, परब्रह्म जो कि ब्रह्मांड से भी परे एक सर्वोच्च शक्ति के रूप में माना जाता है। यह शक्ति मूल रूप से निर्गुण है, परंतु निराकार परमेश्वर जो न स्त्री है न पुरुष ने जब सृष्टि की रचना की तो इस आदि पराशक्ति को बल से भरपूर बना दिया। हमारी अगली प्रस्तुति एक भक्त की गुहार जो पग पग ठोकर खाने के बाद आदि शक्ति से मांग रहा है, शक्ति दे मां, शक्ति दे मां। प्रस्तुत करने आ रहे हैं महेश साठे।

आदिशक्ति से प्रार्थना, इस कठिन समय में जो भी लोग मझधार में डूब रहे हैं उन्हें अपनी शक्ति से उबारे। दोस्तों, प्रभु का रास्ता बड़ा ही सीधा है और उतना ही उलझा हुआ भी। जी हाँ, बुद्धि से चलें तो बहुत उलझा हुआ और भक्ति से चलें तो बहुत सीधा, विचार से चलें तो बहुत दूर और भाव से चलें तो बहुत पास, नजरों से देखें तो कण कण में और यदि अंतर मन से देखें तो जन जन में। देरी है तो सिर्फ सुमिरन की, उसको पुकारने की। तो हमारा अगला भजन लेकर आ रही हैं चारुल, प्रभु तेरो नाम।

बेहतरीन प्रस्तुति। दोस्तों, आप सभी के जीवन में कभी ना कभी तो ऐसा क्षण अवश्य आया होगा जब आपने अपने अंतर्मन के तार उस अलौकिक आदर्श शक्ति से जुड़े हुए महसूस किए होंगे। कुछ ऐसे ही अनुभूति ये भजन सुनकर आपको अवश्य होगी, जिसे लेकर आ रहे हैं संजय गुप्ता जी।

जी हाँ, सत्य ही तो है, ईश्वर सदा हमारे साथ। ईश्वर वंदना एक माध्यम खुद को ईश्वर के और निकट ले जाने का। फिर उपस्थित होंगे एक और भक्तिमय प्रस्तुति के साथ। तब तक जपते रहिए हरि का नाम और सुनते रहिए जयपुर रेडियो।

नमस्कार मित्रों, भजनों की सरिता में मैं लक्ष्मी आप सभी श्रोताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देवी दुर्गा को सबसे शक्तिशाली देवता माना जाता है। चलिए इनकी आराधना में इस गीत को सुनते हैं, जिसे मूल रूप से लता मंगेशकर जी ने गंगा की लहरें फिल्म के लिए गाया है। इस गीत के लेखक थे मशरूर सुल्तानपुरी और इसके संगीतकार थे चित्रगुप्त जी। हमारे लिए प्रस्तुत करने आ रही है।

वाह ललिता जी, बेहद खूबसूरत प्रस्तुति। मित्रों, विश्व माता जगद्धात्री ही जगदम्बा माता है। देवी महात्म्य अच्छाई और बुराई के बीच एक लड़ाई का वर्णन करता है, जहां देवी दुर्गा राक्षस महिषासुर के खिलाफ सद्गुणों का नेतृत्व करती है और बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। आइए सुनते हैं जगदम्बे माँ की गुणगान इस भजन में, जिसे मूल रूप से अनूप जलोटा जी ने गाया है। इसके लेखक हैं राजेश जौहरी और जयपुर रेडियो के लिए

आपने तो एकदम से माहौल ही भक्तिमय बना दिया है। मित्रों, संतोषी माता या संतोषी माँ, इन्हें संतुष्टि की माँ के रूप में सम्मानित किया जाता है। संतोषी माता की पूजा विशेष रूप से उत्तर भारत की महिलाएं करती हैं। संतोषी माँ व्रत महिलाओं द्वारा लगातार 16 शुक्रवार करने से ऐसा माना जाता है कि देवी की कृपा प्राप्त होती है। आइए संतोषी माता की आरती सुनते हैं, जिसे मूल रूप से उषा मंगेशकर जी ने गाया है। इस गीत के लेखक थे कवि प्रदीप और इसके संगीतकार थे सी अर्जुन। इसे जयपुर रेडियो के लिए प्रस्तुत करने आ रही हैं मुंबई से विद्या शंकर जी।

बेहद खूबसूरत विद्या जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, पुराणों में दुर्गा देवी को पुरुष देवताओं की सहायता करने, राक्षसों को मारने के लिए सक्रिय करने के रूप में चित्रित किया गया है। दुर्गा देवी अपने आप में भी सक्रिय है महिषासुर के साथ उसकी लड़ाई में। दुर्गा माता को कई भुजाओं के साथ वर्णित किया गया है, जिनमें से प्रत्येक के पास एक हथियार है और एक भयंकर सिंह की सवारी भी है। हालांकि एक विजयी योद्धा दुर्गा जी को एक सुंदर रूप में भी चित्रित किया जाता है और कभी कभी उन्हें माँ भी कहा जाता है, जो इस देवी के बहुआयामी स्वरूप को प्रदर्शित करती है। आइए सुनते हैं इनकी आराधना में एक और भजन, जिसे प्रस्तुत करने आ रहे हैं।

0: वहाँ संजय जी, हम तो भाव गदगद हुए। मित्रों, हम नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा करते हैं। वास्तव में नवरात्रि आपकी आंतरिक शक्ति का जागरण और प्रकटीकरण है। ये जीवन की विनाशकारी और अस्थायी प्रकृति का प्रतीक है। माँ दुर्गा के अनुयायी ये भी मानते हैं कि माँ दुर्गा पृथ्वी पर और उसके बाद के जीवन में उनकी रक्षा करती है जो उन्हें सर्वस्व मानते हैं। चलिए हम उस देवी माँ की आराधना में ये प्रसिद्ध आरती सुनते हैं। इसे जयपुर रेडियो के लिए प्रस्तुत करने आ रहे हैं डॉक्टर लवलेश पुरुषोत्तम, मोनिका दास, शोमा रॉय और तनुजा मुंद्रा।
1: बोल साचे दरबार।